सफर फिल्म से ये गीत आपने सुना, मन्ना डे का गाया हुआ। इंदिवर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। गीतों की श्रृंखला भी ऐसे ही चलती रहती है, कभी खुशी के पल होते हैं तो हम खुशी के गीत बहुत अच्छे महसूस करते हैं, और कहीं जब हमारे जीवन नैया किनारे पर लग जाती है तो हम उन्हीं धाराओं में चलते रहते हैं।

जीवन धारा फिल्म से ये गीत आपने सुना, सुरेश वाडेकर और आशा भोंसले का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत एक फूल चार कांटे फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

जब वही सहारा बन गया तो दुनिया वालों से क्या काम हो सकता है। और कार्यक्रम की आखिरी रचना झूठा कहीं का फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, गुलशन बाबरा के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत।

और इस गीत के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चुक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आश्विन मास की चौथी तिथि तदनुसार 26 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण आप सुनेंगे 6:10 से 6:44 तक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी सुनीता चौहान की।

चरित मानस कांड के अंतर्गत अयोध्या कांड भाग 65 सुनवाया जाएगा 6:44 से 6:55 तक। पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 हिंदी में समाचार होंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे। सात बजकर दस मिनट से 7:30 तक गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम होगा। इन कार्यक्रमों में आपके साथ रहेंगी सुनीता चौहान। सात बजकर तीस मिनट से 8 तक आज सवेरे कार्यक्रम होगा। 8 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: उर्दू में आप सुनेंगे समाचार 8:30 पर। म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम लेकर आपके लिए हाजिर होंगी 8:45 पर सुनीता चौहान और 9:00 कार्यक्रम 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे। ये था आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं और 6:00 में कुछ ही पल बाकी हैं, आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं।

कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। 6:11 और 52 सेकंड हो चले हैं। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का समय है। आज मैं हूं आपके साथ सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

भगवान महावीर ने कहा कि हर मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होता है और इसलिए वो गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकता है।

मदर टेरेसा ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना दिया, बल्कि ये जरूरी है कि आपने कितने प्रेम से दिया।

श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो सभी प्राणियों में समान रूप से परमात्मा को देखता है, नश्वर में अविनाशी को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः

0: प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर। 6:34 और 20 सेकंड हो चुके हैं और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुनीता।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव ना होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

अभी आपने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ये अंश सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय हो चला है कि हम जाने देश दुनिया का हाल। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में अब सुनेंगे आप समाचार। समाचारों के बाद ठीक 7:10 पर फिर से मैं सुनीता रहूंगी आपके साथ और प्रोग्राम रहेगा गोल्ड सुप्रभात। और आज का ये गोल्ड सुप्रभात बहुत ही खास होने वाला है। अब क्यों खास होने वाला है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। तो आप सोचिए कि क्यों खास होगा। फिलहाल खास खबरें जानते हैं समाचारों में। अब सुनते हैं समाचार।

0: सुरक्षा सर्वैः नागरिकैः प्रशासनेन उद्योगैः च सहभागितां विधाय एव साध्यते इति जलशक्ति मन्त्रिणा सी आर पाटिलेन सबलं प्रोक्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां नवम भारत अन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समापन सत्रे सम्भाषमाणेन मन्त्रिणा एतत् ख्यापितम् यत् जल संरक्षणाय जनसहभागिता अतीवावश्यकी वर्तते। मन्त्रिणा सविशेषं प्रोदीरितं यत् वैश्विक सहयोगेन एव जल सम्बद्ध समस्यानां परिहारः सम्भविष्यति। जल संरक्षणं न हि केवलं एकस्य कर्तव्यं प्रत्युत प्रत्येकस्य उत्तरदायित्वं इत्यपि असौ सबलं न्यगादीत्। उत्तरप्रदेशे प्रादुर्भूतया अतिवृष्ट्या जनजीवनं संजातं अस्तव्यस्तम्। आसन्नां भीषण वृष्टिं विलोक्य प्रशासन पक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवात प्रभावेन राजधान्यां लखनऊ नगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्व्योत्तर प्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः विद्युत्पातः तीव्र समीरश्च सम्भविष्यति इति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञान विभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेद स्पर्धायां कमलजीत सुरुचि युग्मेन स्वर्णं गुलवीर सिंहेन च रजत पदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेत्री क्रीडकेभ्यः वर्धापन संदेशं अयच्छन्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर रेप्चर्स एंड रैम्पर्ट्स बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बरबुडा की ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर अभियान के आरंभ होने का स्वागत किया है। इस अभियान की घोषणा 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के नाविकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क

0: आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी श्रृंखला में हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi asked the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. External Affairs Minister S. Jayashankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jayashankar was addressing the inaugural meeting of the Groups of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. The External Affairs Minister announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers.
2: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier, MV Cape Dow, was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks. Colleagues,
1: External Affairs Minister S. Jayshankar is scheduled to deliver India's national statement during the afternoon session of the United Nations General Assembly General Debate.

देवरन साहब पर फिल्माया गया ये गीत गाया हेमंत कुमार जी ने, जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर। 1989 में 26 सितंबर को ही उन्होंने अंतिम सांस ली। दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हेमंत दा को वॉइस ऑफ गॉड कहा जाता था। फिल्म 20 साल बाद से ये अगला सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ। शकील बदायूनी के बोल है, संगीत और आवाज दोनों हेमंत दा की है।

0: हम भी लौटेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का प्रोग्राम आज सवेरे अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन उससे पहले ये बता दूं आपको कि ठीक 10:30 बजे आप सुन पाएंगे प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स। 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम होगा जिसमें आज इंदौर मध्य प्रदेश की तस्वीर होगी। और 1:20 पर आज आप सुन पाएंगे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल जिसमें देवानंद साहब की, जी हाँ, एवरग्रीन सदाबहार देवानंद साहब की बातें होंगी। उनकी जिंदगी की, उनके फिल्मी जीवन की सारी बातें होंगी कलाकार बेमिसाल में। तो फिलहाल म्यूजिकल दिल्ली की लेकर 8:45 पर मैं फिर मिलूंगी आपसे। लेकिन अब समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का वक्त हो चला है, तो आप ये प्रोग्राम सुनिए और मैं भी छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, चाय पीती हूँ, वापस आती हूँ।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपाज है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो, सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा गिरी अटूट हो, मगर सदा सबल रहो। कमी कहाँ पे रह गई, विचार इस पे तुम करो। ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन। उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो। उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी इन ओजस्वी पंक्तियों में मानस के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं या लोग आपका कितना भी विरोध क्यों ना करें, इंसान को अपने स्थान पर अडिग और अटल रहना चाहिए। बुरा और कठिन समय आने पर भी उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और शक्तिशाली तथा साहसी बने रहना चाहिए। जिस तरह सोना तपकर ही चमकता है, ठीक उसी प्रकार ही इंसान भी कठिनाइयों का सामना करके ही सफलता और असली चमक हासिल करता है। चारों तरफ दुख का अंधकार होने पर भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता के मार्ग पर, बंधुता के मार्ग पर, मनुष्यता के मार्ग पर। दिनकर आगे कहते हैं कि यदि कर्तव्य पथ पर कभी असफलता भी मिले तो मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए, बल्कि ये विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे प्रयास में क्या कमी रह गई थी और उस कमी को दूर कर दोबारा उसी पथ पर एक नई सोच और ऊर्जा के साथ यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो श्रोताओं, इन्हीं सद्विचारों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: आपको भी मेरा नमस्कार मुकेश। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू टिल 8 AM। सो स्टे विद अस एंड ग्रैब ऑल द इंफॉर्मेशन। टुडे इज 26th ऑफ सितंबर 2026 एंड हियर कम्स द सैटरडे। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव बीन वेटिंग for the weekend because Saturday and Sundays are the best days of every working person. जी. So let's begin our program with the news headlines.
0: बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया है। इस संवाद से जुड़ी और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पायल शर्मा।
2: जी धन्यवाद मुकेश। सेवा यात्रियों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में

0: भारत में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में हुए उल्लेखनीय सुधार पर उन्होंने कहा कि देश भर में महिलाएं भी अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर भी बल दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि वडनगर ने उन्हें वे मूल्य दिए जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया, जबकि काशी ने उन मूल्यों में सेवा के अनगिनत रंग भर दिए। संवाद के दौरान सेवा यात्रियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेवा संकल्प यात्रा के दौरान कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें।
1: धन्यवाद पायल इस तमाम जानकारी के लिए। इसके अलावा श्रोताओं, रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने को भी मंजूरी दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी प्रदान की है।
2: External Affairs Minister S. Jaishankar will address the high-level session of 81st United Nations General Assembly UNGA in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly brings together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states who will outline their priorities and positions on major international issues. According to the United Nations, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the sustainable development goals, and also promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. The External Affairs Minister announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and also seafarers.
1: और तन्वी अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं कुछ खेल से जुड़ी खबरों की। तो फिडे शतरंज ओलंपियाड में विश्व चैंपियन डी गुकेश के निर्णायक जीत के साथ भारत ने पुरुष ओपन वर्ग के 9वें दौर में जर्मनी को हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और खिताब की दौड़ में मजबूत स्थिति में है। जर्मनी के खिलाफ आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी और निहाल सरीन के बराबरी पर छूटे, लेकिन गुकेश ने भारत के लिए जीत दर्ज की। महिला वर्ग में बी सविता श्री की लगातार 7 जीत का सिलसिला रुक गया है, लेकिन उज्बेकिस्तान की करीमोवा गुलदाना के खिलाफ मैच बराबर होने के कारण वे अब भी अजेय बनी हुई हैं। कोनेरू हम्पी की अगर बात करें तो उन्होंने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख और विंतिका अग्रवाल ने अपने मुकाबले जीतकर भारत को 3-1 से जीत दिलाई। भारत 9 दौर में 15 अंकों के साथ कजाकिस्तान और मंगोलिया के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है।
2: And in Asian Games 2026, India's men's and women's kabaddi teams will play their final matches today in Aichi, Nagoya, Japan, with both sides aiming to defend the gold medals they won at the 2022 Asian Games in Hangzhou. Both Indian men and women teams will face Islamic Republic of Iran in their respective finals today. The women's final will start at 9:30 a.m. India time and the men's final at 2:30 p.m. Indian time. Two-time Olympic medalist PV Sindhu begins her singles campaign and will carry India's hopes in badminton after Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty's shock exit from the men's doubles. Lakshya Sen will also be in men's singles action but will have a former world champion to contend with in Singapore's Lo Ki-yeol. In athletics, Gulveer Singh returns to the track a day after his 10,000 meter silver

0: aiming to reach another final through the 1500 meter heats. Parul Chaudhary lines up in the 1500 meter final alongside compatriot Pooja.
1: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का, तो इस कड़ी में शुरुआत दिल्ली से जुड़े समाचारों की। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने एक विशेष बैठक में कंसेशनर यानी किसी निजी कंपनी के जरिए संविदा पर रखे हुए बस ड्राइवरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। ये बैठक बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ की गई। इस बैठक में ड्राइवरों द्वारा उठाई गई मांगों के समाधान के साथ राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माण तथा मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली और भवन उपनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान भी जारी है। एमसीडी ने दोहराया कि निगम के क्षेत्राधिकार में अनाधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और श्रोताओं, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित वर्ल्ड सेफ्टी 2026 सम्मेलन में रोड सेफ्टी कैंपेन हेलमेट पहनने के परिणाम के लिए आधिकारिक रूप से ऑनरेबल मेंशंस से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान सेफ्टी सम्मेलन 2026 अल्ट्रा शॉर्ट वीडियो श्रेणी में प्रदान किया गया है। और चेन्नई से आपके पास क्या है तन्वी?
0: ओके, द तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन TNPDCL विल एंगेज मैन पावर ऑफ अ थर्ड पार्टी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स टू रीड मीटर्स एंड ओवरकम द इरेटिक असेसमेंट ऑफ पावर कंजम्पशन व्हिच लीड्स टू रॉन्ग एंड इन्फ्लेटेड पावर बिल्स एंड टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ असेसर्स। आउटसोर्सिंग ऑफ द टास्क विल कम इन टू इफेक्ट इन अक्टूबर। देर आर अराउंड 3.5 करोड़ लो टेंशन सर्विसेज इन Tamil Nadu, including 2.5 crore domestic consumers. The sanctioned strength of assessors is 7,565 to record power consumptions once in 2 months and generate invoices. However, there are only 3,063 assessors, while 4,502 posts, nearly 60, remain vacant. While retired TNEB personnel were so far engaged to assess electricity consumptions at doorsteps, TNPDCL has decided to outsource it to meet the shortage and to ensure prompt, accurate and timely meter readings. TNPDCL executive engineers can float limited tenders for a period of 6 months for the additional required manpower, and the same will be vetted by the superintendent engineers concerned.
1: और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मथाड़ी कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नवी मुंबई में 50 साल पुराने कृषि उपज बाजार समिति बाजार के पुनर्विकास की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मथाड़ी नेताओं से परामर्श किया जाएगा। इसके अलावा श्रोताओं, ठाणे जिला परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं की स्थिरता का मूल्यांकन, सत्यापन और संवर्धन करने के लिए स्वच्छ सेवा आकलन का शुभारंभ किया है। स्वच्छ सेवा आकलन ग्राम पंचायत स्तर पर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया एक वार्षिक डिजिटल स्व मूल्यांकन प्लेटफॉर्म है। और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में कुल गिरफ्तारी 11 लोगों तक पहुंच गई है।
0: Moving towards Bangalore, Karnataka Minister for Health and Family Welfare, U.T. Khader, has informed that the government holds a firm resolve to bring maternal deaths down to zero across the state. He was speaking at the state-level workshop on Surakshit Matritva Ashwasan or Suman Roadmap 2030 in Bangalore, organized by his department. The minister, speaking after inaugurating the workshop, said that several focused and effective measures will be initiated, reaching out to the remotest villages to achieve the goal of zero maternity deaths. The minister informed that 60% of deliveries of babies in Karnataka take place in government hospitals. He specifically mentioned that the Wenlock District Hospital in Mangaluru and the Vani Vilas Hospital in Bangalore handle baby births more than those put together in the private hospitals. The causes of maternal deaths vary district-wise, and hence specific local causes of the maternal mortality will be identified by the district-level team of officers and take corrective measures. A dedicated state-level unit will be established for this purpose, with a designated officer to coordinate and monitor the interventions and outreach campaigns. The early identification and continuous tracking of high-risk pregnancies will also be strengthened. The birth waiting homes will be established at a district and taluka levels, where the high-risk pregnant women will be identified well in advance and, depending on their clinical needs, admitted to the birth waiting home about a week before the expected date of delivery for intensive care. The awareness campaigns at the Gram Panchayat level will promote maternal health and preventive measures for maternal deaths. And moving towards Hyderabad, the annual Ganesh Idol immersion process across Hyderabad concluded peacefully on a grand scale, highlighted by the successful immersion of the iconic 69-foot Sri Panchmukh Sankathar Mahaganpati at Grain No. 4 along NTR Mark in Hussain Sagar yesterday. Relief and joy swept through the crowd as police officers, civic authorities and committee members celebrated the event's safe execution along the banks. Telangana State Minister Poonam Prabhakar, following an aerial inspection of the procession routes with senior leaders, stated that the state government made elaborate arrangements to ensure the grand festival passed off peacefully. He advised remaining organizers to clear their routes quickly to finish all immersions ahead of predicted rainfall. Director General of Police C.V. Anand shared that statewide portal registrations for idols reached 1.24 lakh this year, up from 1.15 lakh previously, with total installations including homes and private premises estimated to 3.5 to 4 lakh.

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है मौसम की बात करने का। तो इधर राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर मुंबई में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। शहर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगर बात की जाए कोलकाता की तो वहां आज बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और अगर हम बात करें चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के मौसम की तो वहां भी आज कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब पलटते हैं श्रोताओं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को आपको बता दें, यानी कि आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूक करना और सुरक्षित तथा स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना है। ये दिवस शुरू कैसे हुआ, तो इसका उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण महासंघ यानी IFEH ने 26 सितंबर 2011 को इंडोनेशिया में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस भी है। इस दिवस की स्थापना परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता को होने वाले खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना है।
1: And Mukesh, just the way you mentioned that Chennai, Bangalore and Hyderabad all have somewhat cloudy skies. So let me just read it out for all our listeners. Chennai is likely to have partly generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between the minimum of 28 degrees and maximum of 36 degrees Celsius. Bangalore is forecast to experience generally

0: Cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with moderate rain. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 30 degrees Celsius. And as you were mentioning about the history, what exactly has happened on 26th of September. So let's talk about the year 1580, when Francis Drake completed his circumnavigation of the world, sailing into Plymouth, England, aboard the Golden Hind.
1: और अगर बात करें बरस 1872 के बारे में, तो न्यूयॉर्क सिटी में इसी तारीख को आज ही के दिन पहला मंदिर बनाया गया था।
0: एंड इफ वी टॉक अबाउट 1932, गांधी जी ब्रोक फास्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिज डिमांड रिगार्डिंग हरिजन्स।
1: 1960 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच बहस का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण भी आज ही की तारीख को हुआ था।
0: इन 1985 पीटी उषा हैड सेट रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर वुमेन इन 11.39 सेकंड्स एट जकार्ता।
1: 1984 की अगर हम बात करें तन्वी, तो यूनाइटेड किंगडम हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत भी आज ही की तारीख को हुआ था।
0: एंड इफ वी टॉक अबाउट 1991, ऑर्डिनेंस टू अमेंड मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP एंड द कंपनीज एक्ट टोटली रिमूव्ड प्री एंट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यू इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस।
1: इसके कुछ सालों बाद यानी कि 2009 में पूजा श्री वेंकटेश ने रश्मि चक्रवर्ती को हराकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब भी आज ही के दिन अपने नाम किया था। और इसके दो बरस बाद यानी कि 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया था। और अब समय है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों और जन्मदिन के बारे में बात करने का। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर के बारे में। आज इनकी पुण्यतिथि है। ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक रहे। किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक थे। वे विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई में अध्यापक के रूप में भी उन्होंने काम किया। लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर जी ने एक साइकिल की दुकान से अपने व्यवसायी जीवन की शुरुआत की और जीवन पर्यंत इतनी विशेष सफलताएं उन्होंने हासिल की।
0: And the person that I am going to talk about is Uday Shankar. Today is his death anniversary, an Indian dancer and choreographer best known for creating a fusion style of dance, adapting European theatrical techniques to Indian classical dance, imbued with elements of Indian classical, folk and tribal dance, which he later popularized in India, Europe and the United States back in 1920s and 1930s. He was a pioneer of modern dance in India. In 1962, he was awarded by Sangeet Natak Academy, India's National Academy for Music, Dance and Drama, with its highest award, the Sangeet Natak Academy Fellowship for Lifetime Achievement. And in 1971, the Government of India awarded him its second highest civilian award, the Padma Vibhushan. Let's hear an interview of his recorded version for Kolkata Doordarshan in English.
2: Oh, that was in, I think, 1920, when I was a student in London. And I used to dance for the students and all that. When Lady Durabji Tata, she got to know about me. And we had a sort of India Day in Wembley exhibition. I have to dance a dance. I did not know what I was going to dance on. But something came in my hand, I'll do Dance of Shiva. But it was great success.
0: In this interview, he explained how he ended up from studying miniature paintings to dance. He started his own revolution first in London, then in Paris, back to India and then to the entire world. His ensemble included his brothers, cousins and few Europeans who saw him as something exotic. He had to train his troupe not just dancing but how they need to behave. He asked them not to get into political discussions at all back in 1920s and 1930s.
1: श्रोताओं, भी आपने सुना उदय शंकर का ये एक साक्षात्कार। तो अगर हम बात करें उनकी, तो उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइफ, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध नाम से नवीन नृत्यों की भी रचना की थी। ये उनके बारे में एक विशेष जानकारी है। और इसके अलावा इनमें वेशभूषा, संगीत यंत्र, ताल और लय

0: आदि चीज़ें उन्हीं के द्वारा रचित की गई थी। अब हम बात करते हैं टीबी कुन्हा के बारे में। जी हाँ, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। वे गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करके गोवा को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डॉक्टर टीबी कुन्हा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट सहकर गोवा को वर्ष 1961 में स्वतंत्रता दिलाई। 1953 में भारत वापस आने के बाद टीबी कुन्हा ने मुंबई में गोवा एक्शन कमेटी का भी गठन किया था।
1: And we are talking about T.S. Eliot today. Today is his birth anniversary, a poet, essayist and playwright. He was a leading figure of modernist poetry in the English language, where he altered the art through his use of pessimistic language, writing style and verse structure. Awarded the 1948 Nobel Prize in Literature, he is considered one of the greatest poets of the English language. He is also noted for his critical essays, which often he re-evaluated long-held cultural beliefs. His writings include The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Wasteland, The Hollow Men, Ash Wednesday, Four Quartets, Murder in the Cathedral, The Cocktail Party and many, many more.
0: आज ही के दिन पुण्यतिथि है हिंदी फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार मुखोपाध्याय की। वे हेमंत दा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जिनके गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन भी किया। अगर हम बात करें तन्वी उनकी मुख्य फिल्मों के बारे में जिन्होंने उनमें संगीत का निर्देशन किया, तो उनके नाम हैं अनारकली, नागिन, प्यासा, गंगा जमुना, फरार, बात एक रात की, कोहरा, झनक झनक पायल बाजे, 20 साल बाद, साहब बीबी और गुलाम

श्रोताओं, देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत उनकी जिंदगी को अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए काफी है। देवानंद का नाम हिंदी सिने जगत में स्टाइल गुरु बनकर जगमगाता है। सदाबहार अभिनेता देवानंद को लोग एवरग्रीन देव साहब कहकर भी पुकारते थे। देवानंद पर फिल्माए गए ये कुछ और गाने आपके समक्ष अब पेश हैं।

0: So we are remembering Devanand today, and along with him we are also talking about Linda Hamilton. Today is her birthday, an American actress. Apart from that, today is the birthday of Anand Gandhi, an Indian filmmaker, entrepreneur, media producer, innovator and much more. His debut feature film, Ship of Theseus, that came in 2013, won the National Film Award for Best Picture and also was premiered at the Toronto International Film Festival. Let's hear one of the tracks by this song.
1: Naham janami kampi devam na devam.
0: This song from his award-winning film Ship of Theseus explains the essence of Jainism. The lyrics were apparently written in Gujarati first by Anand Gandhi and then translated to Prakrit by Chandrasen. And this is a wonderful song. Maybe you're not understanding the language, but this is deep.
2: तो श्रोताओं, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी खूबसूरत नगमे के साथ दीजिए इजाजत मुकेश और तन्वी को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के नौवें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
4: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता की साक्षी हैं।
5: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यवसाय

0: सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
1: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
0: ये चार श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जल भराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात

0: और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है गृह मंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says gap between cities and villages in India has narrowed significantly over past 12 years. Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasised the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realised only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colours of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colours of service.
5: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
3: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. In Uttar Pradesh, heavy and incessant rain has thrown life out of gear in many districts. Schools till 12th will remain closed in several districts due to heavy rain alert. Many districts, including state capital Lucknow, are witnessing heavy rain due to cyclonic conditions from last 24 hours. Normal life disrupted badly and road traffic also affected due to heavy rain. Many rain-related accidents have also been reported from different parts of the state. In eastern Uttar Pradesh,
6: a warning of very heavy rainfall has been issued, along with heavy rainfall, thunder and lightning and strong winds. In western Uttar Pradesh as well, heavy rainfall and thunder and lightning are likely till 27th September. Heavy to very heavy rainfall is likely at several places in Uttarakhand today and tomorrow. The meteor

0: Cities and villages in India has narrowed significantly over past 12 years. Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Japan, and Lee Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में पिछले 12 साल के दौरान खातिरख्वाह कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब अलर्ट जारी किए जाने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 2 दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। भारत ने खलीज, बहरे अहमर और बहरे अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तश्वीश का इजहार किया है। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है, और डी गोकेश ने समरकंद में फीडे शतरंज ओलंपियाड के 9वें राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 साल के दौरान भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में खातिरख्वाह कमी आई है। उन्होंने गांवों के बुनियादी ढांचे में काबिले जिक्र बेहतरी को उजागर किया और कहा कि मुल्क भर की खवातीन भी लगातार खुद इन्हिसार और इक्तिसादी तौर पर बाख्तियार बन रही हैं। जनाब मोदी ने यह रायजनी सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल वसीले से बात करते हुए की। ये यात्री सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे थे। उन्होंने समाजी खिदमत, समाजी इसलाह और मुस्बत तब्दीली को उजागर किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत को हकीकी शक्ल उसी वक्त दी जा सकती है जब इसमें हर एक का तआवुन और शिरकत हो। जनाब मोदी ने खास तौर पर कहा कि वडनगर ने उन्हें ऐसी अकदार अता की हैं जिनसे उनकी जिंदगी को एक शक्ल मिली, जबकि काशी ने नकदार को मुख्तलिफ किस्म के खिदमात के बेशुमार रंग अता किए। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि नौजवान इन खिदमात से सफर को और ज्यादा अहम बना रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: यात्रियों ने बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात का इजहार किया। जनाब मोदी ने यात्रियों से जोर देकर कहा कि वो एक डायरी रखें और इसमें यात्रा के अपने तजुर्बात लिखें। उत्तर प्रदेश में मुसलसल जारी शदीद बारिश के सबब कई अजला में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। शदीद बारिश के अलर्ट की वजह से कई अजला में 12वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रियासत की राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में तूफान की सूरत हाल के पेश नजर गुज़िश्ता 24 घंटे से शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आमद रफ्त में रखना पड़ा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हादसे भी पेश आए। रियासत के राहत रसानी के काम से मुतालिक कमिश्नर डॉ ऋषिकेश भास्कर यशवंत ने मौसमी सूरत हाल और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ अजला के जिला मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने अफसरान को फील्ड में सरगर्म रहने, मकामी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दी है। भारतीय महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इसी तरह की मौसमी सूरत हाल आज और कल भी जारी रहेगी। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लिए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश में भी 27 सितंबर तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। शदीद बारिश के सबब अंद्रावती, महानदी

0: और शिवनाथ समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। कई शहरों और कस्बों के नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। वजीर आला विष्णु देव साई ने सैलाब और पानी भरने की सूरत हाल के तनाजुर में बचाव और राहत रसानी की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टरों को चौकसी बरतने की हिदायत जारी की है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो पानी की सतह में इजाफे या सैलाब के खतरे की सूरत हाल में लोगों को फौरी तौर पर खबरदार करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। उत्तराखंड में आज और कल मुतअद्दिद मकामात पर शदीद से मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और सयाहों से इस दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। अलबत्ता चार धाम यात्रा फिलहाल जारी है। शदीद बारिश की सूरत हाल में यात्रियों को करीब तरीन महफूज मकाम पर रोका जा सकता है। पेश एक रिपोर्ट।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के कुछ मकामात पर आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, टेहरी, हरिद्वार और पौड़ी के कुछ इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के तनाजुर में कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान मकामी लोगों और सयाहों से मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: उधर शिमाली छत्तीसगढ़ और मुलहका इलाकों में मौजूद हवा के कम दबाव का निजाम बदस्तूर उड़ीसा के मौसम को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बेतरानी और जलाका दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है और शिमाली उड़ीसा में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। मिट्टी के तोदे गिरने और पानी जमा होने के सबब सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। एहतियात के तौर पर भद्रक जिले के 7 ब्लॉकों में 399 स्कूलों समेत कटक, मलगानगिरी, नवरंगपुर और नौपाड़ा के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेलवेज ने गुजरात में भुज और बिहार में बरौनी के दरमियान एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस का आगाज किया है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। ये नई रेलगाड़ी गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के अहम मकामात को जोड़ते हुए 2532 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये नई रेल सर्विस समाख्याली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधवपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, इज्जतनगर, पीलीभीत और दीगर अहम स्टेशनों समेत दीगर कमर्शियल अहमियत के हामिल स्टेशनों का अहाता करेगी। रेलवे की वजारत के मुताबिक भुज बरौनी सर्विस पीर, बुध और शनिचर को चलाई जाएगी, जबकि बरौनी भुज रेल खिदमात मंगल, जुमेरात और शनिचर को दस्तयाब होंगी। वजारत ने मजीद कहा है कि नई रेल सर्विस मुल्क के मगरबी और मशरकी हिस्सों के दरमियान रेल के सफर का एक इजाफी मुतबादिल फराहम करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी फराहम करेगी। रेलवे की वजारत ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक तोसी दिए जाने की भी मंजूरी दी है। इस तोसी से झांसी, आगरा और मथुरा के दरमियान रेल के सफर में मजीद सहूलत फराहम होगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत आज पटना में मुतासरीन के हकूक से मुतालिक विक्टिम राइट्स मरकज का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर कई दीगर सहूलियात का भी आगाज करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुल्क में अपनी तरह का पहला मुतासरीन के हकूक का मरकज कायम किया गया है, जो बिहार रियासती कानूनी खिदमात के महकमे के इहाते में कायम किया गया है। यह मरकज मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम पर कानूनी हकूक और जरूरी मदद फराहम करेगा। यह मरकज पटना जिले में एक साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है, जो बाद में रियासत के सभी जिलों में कायम किया जाएगा। इस मौके पर मुखन्नस अफराद के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने खलीज, बहर अहमर और बहर असवद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार किए जाने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। किया है। उन्होंने कहा कि हमलों को अब मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के दौरान जहाजरानी और जहाजियों की हिफाजत और सलामती पर दोस्तों के ग्रुप की पहली मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद तवज्जो हासिल करने के लिए भारत और लाइबेरिया दोनों की तरफ से किए जाने वाले नए इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत जहाजियों का एक बड़ा वसीला है और लाइबेरिया जहाजरानी की दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। ये दोनों मुल्क समुद्र में हिफाजत और सलामती को मुस्तहकम बनाने के मकसद से यकजहत हुए हैं। इस कदम का मकसद समुद्र में मजीद हिफाजत के लिए एक मशावरती फ्रेमवर्क कायम करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि इस शोबे के तहत किए जाने वाले मुज़ाकरात में अहम फरीकीन की और ज्यादा अहमियत है। उन्होंने खलीज अमान में एंटीगुआ और बरबुदा के परचमबरदार एक बड़े जहाज MV केप दाओ पर हालिया हमले की तरफ इशारा किया जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। जनाब जयशंकर ने पनामा के परचमबरदार तेल टैंकर एल गया का भी जिक्र किया जिस पर आबनाए हुरमुज में हमला किया गया था जिसके नतीजे में भारतीय जहाज के अमले का एक रुकन लापता बताया गया था। वजीर खारजा ने MV ओमरोफी और MV गोल्डरलियो समेत बहर अस्वद में शहरी जहाजों पर किए गए हमलों की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई।
3: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier MV Cape Dow was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
0: वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। यह इजलास एतमाद की बहाली, तब्दीली के अमल का मौसर इंतजाम, एक ऐसी अक़वामे मुत्तहदा जो सबके लिए मौसर खिदमात अंजाम दे के मौजू के तहत मुनाक़िद किया जा रहा है। UN जनरल असेंबली अपने सभी 193 मेंबर ममालिक के सुदूर वज़रा आज़म और आला नुमाइंदों को यकजा होने का मौका फराहम करता है जो अहम बैनुल अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ पेश करते हैं। भारतीय मैराथन रनर सावन बरवाल ने एशियन गेम 2026 में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने इस खेल में पोडियम फिनिश के भारत के 44 साल तवील इंतजार को खत्म किया। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का वक्त लेकर न सिर्फ जाती बेहतरीन स्कोर दर्ज किया बल्कि मर्दों के मैराथन फाइनल में कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। वो जापान के यामाशिता से पीछे रहे जिन्होंने ये दौड़ जीतकर सोने का तमगा हासिल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आईजी नागुआ में एशियाई खेलों में मर्दों के 10,000 मीटर दौड़ के मुकाबले में गुलवीर सिंह के चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि गुलवीर सिंह ने इससे कबल कांसे का तमगा जीतने के बाद एक बार फिर मुल्क को फख्र का एहसास दिलाया है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी ये कामयाबी पूरे भारत में लंबी दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवान एथलीट्स के लिए बाई से तरगीब होगी। वजीर आजम ने एशियाई खेलों 2026 में शॉटपुट में कांसे का तमगा जीतने पर मनप्रीत कौर को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी असरंगेज कारकर्दगी की तारीफ की और मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम ने बेरानिका एलेंगोवन को अपने पहले एशियाई खेलों में खवातीन के पोल वॉल्ट में कांस्य का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की। फीडे शतरंज ओलंपियाड में दिफाई आलमी क्लासिकल शतरंज चैंपियन डीगो केश ने फैसलाकुन जीत हासिल करते हुए भारत को मर्दों के ओपन जुमरे के 9वें राउंड में गुज़िश्ता मुश्तरका सरफहरिस्त टीम जर्मनी के खिलाफ 2.5 और 1.5 से कामयाबी दिलाई। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शहजाद।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने मेक इन इंडिया पहल के 12 साल मुकम्मल होने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने इस मौके पर वजीर आजम मोदी के इस बयान को खास तौर पर शाये किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस पहल से मुल्क में पैदावार, सरमायाकारी और बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। रोजनामा प्रताप ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में मुनक़दा सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज की इख्तितामी तकरीब से वजीर तालीम प्रहलाद जोशी के खिताब को भी अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार सुर्खी है, जोशी ने अख्तरा को सेवा के जज्बे से जोड़कर हकीकी जिंदगी के मसाइल की शिनाख्त करने की अपील की। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर की सुर्खी लगाई है, वजीर आजम की पॉलिसियों के सबब यूपी में सरमाकारी का साजगार माहौल।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है

कि भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में पिछले 12 साल के दौरान खातिरख्वाह कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब अलर्ट जारी किए जाने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दो दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। भारत ने खलीज, बहर अहमर और बहर अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तश्वीश जाहिर की है। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। और डी गोकेश ने समरकंद में फीडे शतरंज ओलंपियाड के नवे राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: एंजॉय कर रहे हैं हम मौसम के हल्के से बदलाव को, थोड़ी सी अलसाई शनिवार की सुबह को, और उन बातों और गानों को जो आपको और हमें एक दूसरे के और करीब लाते हैं। ये है आपका दोस्त, आपका हमसफर, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। म्यूजिकल दिल्ली के लेकर साथ हूं मैं सुनीता। शुरुआत रिजवानुद्दीन साहब के एक खूबसूरत शेर के साथ की, फरमाइशें तुम्हारी हैं ये जो ख्वाहिशें तुम्हारी हैं, फरमाइशें तुम्हारी हैं ये जो ख्वाहिशें तुम्हारी हैं, निखरा हूं इनसे, निखरा हूं इनसे ये जो आजमाइशें तुम्हारी हैं।
1: जान मेरी रूठ गई

0: की आवाज में ये खूबसूरत गीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिरिक्स, राजेश रोशन का संगीत, 1977 की फिल्म दूसरा आदमी थी ये। समय है अब छोटे से विराम का।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
7: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
8: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
11: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
12: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: बजकर 53 मिनट और 26 सेकंड आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली और साथ हूँ मैं सुनीता।

आज की फिल्म के इसी गाने के साथ जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण जी ने, सुनीता लेगी अब आपसे इजाजत। अगले सैटरडे फिर मिलूंगी आपसे, बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुद्दों, खाड़ी संकट और ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग पर चर्चा की। भारत ने इसी महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने भाग लिया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में सेवा यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी सवेरे कल 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्र, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह कदम गैर कानूनी है और इससे शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्सों की कमी और बढ़ जाएगी। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमरीकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित कर दिया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीम अपने अपने फाइनल

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरहत नाज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
3: शुक्रिया फरहत।
1: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
2: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
1: जी।
2: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
1: जी सर।
2: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से एक रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
1: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
3: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
1: सर ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गांव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
3: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट

0: आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है। पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है और युवाओं को ये समझ आया है कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
1: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं। आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई, तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट SYNCOM 3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
1: जी।
2: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में INSAT-1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके, और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है, जो उपग्रह का उपयोग करके ये सब काम कर सकते हैं
1: जी। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
0: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे हम, मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहां आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल हासिल कर सकती है, मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को, और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट।
1: राजरमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
0: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए, पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है, और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी, विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल राजा रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
3: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की

0: में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है। देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
1: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
2: एक तो जब हम हाथ से काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा। तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी दो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
2: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं है। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम

0: करना है वो, और तभी से 40 साल हो गए अभी, सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है। और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काईरूट का जो Vikram-1 जो उन्होंने लॉन्च किया
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है, और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से, उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था। तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर, वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: और अब राजारमन जी आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
2: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया।
1: हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
2: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो। और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही और अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
1: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
2: वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है, हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गाँव को सुधारना चाहते हैं।
1: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
0: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो
1: जी।
0: और जब उसको लॉन्च किया Vikram-1 को, सतीश स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था, जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
1: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
0: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
1: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजारमन जी,
2: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियंस पैदा करें, शिक्षक जो कोचेस हैं, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
1: तो राजारमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
2: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो

0: मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रहे थी क्योंकि ये तो स्टूडेंट थे, उनके 3-4 साल पूरे हो जाने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
1: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
0: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से, फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
1: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी। तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है। वो सूट पहले आप इंपोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया ये। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
1: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
2: 1970 में कमलजीत संधु पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं, बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं, दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
1: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
2: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है, और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है। अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
1: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद बेहद जरूरी है। तो अगर बात

0: की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने को मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
1: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब एसएलबी का काम करना चालू कर दिया, तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे, वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर से, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये। और इसी लिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है।
0: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
2: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है। एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाए, और बेहतरी हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते।
0: और अगर बात अब 2047 की करते हैं, तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
1: कि जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
0: जी राजा रमन जी,
2: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया है कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा। और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
0: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
1: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनके फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
0: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
1: हमने जब इनसेट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने

0: इनसेट 1B का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतने हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है, ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
1: जी राजारमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर ले, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है
1: जी।
2: जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
1: राजारमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है, तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
2: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं, 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है, सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू के हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल है जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का भला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स।
1: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा, मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। तो श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
0: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो, तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
1: राजारमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
2: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते

0: आते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
1: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना।

अगर बात चलने की हो रही है तो हमें एक चलना यहाँ पर अलग तरह का दिखाई दे रहा है। सेवा संकल्प अभियान चल रहा है हमारे देश में, आपको मालूम है ना, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? मेन मोटिव ये है कि मतलब जो भी केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, अलग अलग जन सेवाओं में, जन कल्याणकारी योजनाओं में, विकास में, वो सबको पता लग पाए। और स्कूलों में, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो स्कूलों में मेरे सपनों का भारत, इस विषय पर चित्रकला प्रदर्शनी हो, निबंध लेखन हो, वाद विवाद हो, भाषण प्रतियोगिताएं हो, और इसके साथ साथ पीएम ई विद्या योजना भी, जिसमें जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको डिजिटल इंडिया और साथ में स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन सबको शिक्षा के साथ जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, ये है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य। तो कब से कब तक चल रहा है हमारे देश में ये? 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन।

0: प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक बार फिर स्वागत है आपका आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz। प्रोग्राम का नाम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं आपके साथ भावना। आज है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, यानी विश्व गर्भ निरोधक दिवस। ये दिन मनाया जाता है ताकि सुरक्षित गर्भ निरोध, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सबको पूरी जानकारी मिल सके, ताकि कोई भी जो है वो अपने हिसाब से अपने निर्णय समय पर ले सके। और आज ही के दिन मनाया जाता है 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। क्यों हमें जरूरत है न्यूक्लियर वेपन की, जब हम एक दूसरे से बातें करके समस्या को सुलझा सकते हैं, और न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है हमारी मानव प्रजाति पर पूरी, इसका उदाहरण तो हमने जापान में जब हुआ था तो देख ही लिया एक बार, और अब तो इतने बड़े बड़े बन गए हैं, तो उनको बिल्कुल हटा दिया जाए, उनको बिल्कुल मानवता के लिए एक तरह वो खतरा है, ये सबको बताने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। यानी केवल प्यार ही मानवता को बचाए रख सकता है।

इसी के साथ अभी म्यूजिकल दिल लगी से स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: सर पर्सनल लोन ऑफर है।
1: पुनः ब्लॉक करूं टाकतो।
0: सर फ्री ट्रिप टू दुबई।
1: यार हे सुद्धा ब्लॉक। यार कितीदा ब्लॉक करू?
2: फक्त फोन वरती ब्लॉक करून स्पॅम थांबणार नाही। प्रत्येक वेळी नवा नंबर येतो।
1: मग काय करू?
2: कॉल उचल आणि मग ट्राय डीएनडी ऍप वर रिपोर्ट कर। कॅटेगरी सिलेक्ट कर, बँकिंग, ट्रॅव्हल, इन्शुरन्स आणि सबमिट। बस फक्त काही सेकंदांचं काम।
1: म्हणजे सगळे स्पॅम कमी होतील?
2: हो, रिपोर्ट झाल्यावर लगेच ऍक्शन सुरू होते। फक्त ब्लॉक नाही, रिपोर्ट करणं आवश्यक आहे। TRAI डीएनडी ऍप प्ले स्टोअर किंवा ऍप स्टोअर वरून आताच डाऊनलोड करा आणि रिपोर्ट करणं चालू करा।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

तुमका भलता तिरथार हर सकरता आभार तुमका भलता तिरथार हर

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: सर पर्सनल लोन ऑफर है,
3: पुनः ब्लॉक करूं टाकतो।
2: सर फ्री ट्रिप टू दुबई,
3: यार हे सुद्धा ब्लॉक, यार कितीदा ब्लॉक करू,
4: फक्त फोन वरती ब्लॉक करून स्पॅम थांबणार नाही, प्रत्येक वेळी नवा नंबर येतो,
3: मग काय करू,
4: कॉल उचल आणि मग ट्राय डीएनडी ऍप वर रिपोर्ट कर, कॅटेगरी सिलेक्ट कर, बँकिंग, ट्रॅव्हल, इन्शुरन्स आणि सबमिट, बस फक्त काही सेकंदांचं काम,
3: म्हणजे सगळे स्पॅम कमी होतील।
4: हो, रिपोर्ट झाल्यावर लगेच ऍक्शन सुरू होते, फक्त ब्लॉक नाही रिपोर्ट करणं आवश्यक आहे। TRAI DND ऍप प्ले स्टोअर किंवा ऍप स्टोअर वरून आताच डाऊनलोड करा आणि रिपोर्ट करणं चालू करा।
5: ऐकायचंय गीत माहितीच्या मनोरंजनाचा गोड तराणा,
6: FM गोल्ड ट्यून करा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक

0: प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences, and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers on the Group of Seven.

0: 27. At the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for collective efforts to enable the Global South to move from being rule takers to rule shapers. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Poorna Salila Srivastav, reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society, which covers a wide range of potential health emergencies. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Keralam today. Mr. Shah will inaugurate women's empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara in the late afternoon. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony at Amritapuri in Kollam district. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said Dr. Singh spent many years in public life and served the nation with dedication. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand today. The IMD has said that due to the depression over South Chhattisgarh and adjoining South Interior Odisha, very heavy rainfall is likely to prevail at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand. The Met Department has also predicted heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the day. The Indian women's kabaddi team clinched gold after beating Iran. The Indian women went on an unbeaten run throughout their campaign. This historic victory marked India's third gold medal of the ongoing Asiad competition, following earlier triumphs by the women's cricket team and the shooting duo of Suruchi Singh Phogat and Kamaljeet in the 10-meter air pistol mixed team event. India won the silver medal in the women's 50-meter rifle three positions team event at the Asian Games today. The trio of Tilotama Sen, Vidarsha Vinod and Ashi Chokse scored 1,763 points, finishing behind China, which secured gold with the game's record 1,773 points. Meanwhile, Indian squash players delivered a strong performance at the Asian Games, with teenager Anahat Singh reaching the women's singles final after a remarkable comeback against Japan's world number 6 Satoma Watanabe. With this, India stands on 12th position with a total of 27 medals, including 3 gold, 11 silver and 13 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.
2: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ. इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत. इस संवाद का संचालन कर रहे हैं राकेश पंत.
3: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज हमारे साथ खास मेहमान है बसंती देवी, जो महान पर्यावरणविद है और प्रकृति की संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है. बसंती देवी उत्तराखंड की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है. उन्होंने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर कोसी नदी को बचाने के साथ ही जंगलों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 5 के जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम चलाई. उनके इसी काम को देखते हुए सन 2016 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान और 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया. तो बसंती देवी जी से बात करते हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी. तो आपसे जानना चाहूंगा, कोसी नदी और उसके जलागम क्षेत्र को बचाने की आपकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, तब क्या परिस्थितियां थी, आपने किस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ाया?
4: पहले तो उस नदी में बहुत पानी था, खेतों में भी इतना अच्छा जमीन में पानी और सब खेती पाती होती थी. धीरे धीरे जब जंगल पूरा काट दिया महिलाओं ने, जंगल काट के तो पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए और इसलिए बहुत परेशानी होगी. तब लोग कहने लग गए अब हम पानी भी कहाँ से पिए, खेती में भी हमारे खेतों में भी पानी नहीं आ रहा है. तब मैं गांव-गांव में जाकर मैंने महिला संगठन बनाया. मैंने कहा जब पानी नहीं आएगा तो तुम्हारे यहाँ तो इतनी अच्छी खेती होती थी और इतना ज्यादा पानी आता था और नदी में और सब कुछ था। जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से पियोगे पानी, कहाँ से खेती होगी।

0: और कैसे हम जिंदा रहेंगे, तो इसके लिए तो तुम सब सोचो। मैंने कहा जंगल जब पूरे पेड़ काट दे रहे हो और फिर वो सड़ जाते हैं तो उनको फिर तुम जला देते हो, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि जब जंगल बचेगा, पानी आएगा, तब खेती भी अच्छी होगी, अपने लिए भी, हमारे पानी पीने के लिए और रुपाई करने के लिए, खेती पाती सब ठीक करने के लिए भी, तब अच्छा होगा, तब हम जिंदा रहेंगे। नहीं तो हम जिंदा ही कैसे रह सकते हैं। मैं फिर 6-7 दिन के बाद जंगल के रास्ते गई तो महिलाओं से कहा, बैठो आप, मैं तुमको सब बात सुनाती हूँ। जब जब पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेंगे, खेती कैसे होगी, और ये तो तुमको सोचना ही चाहिए। मैं आज तुम्हारा संगठन बनाती हूँ, तुम अभी जंगल से अब घर को चलोगे, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, सब जगह जाकर मैं सबका संगठन बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए। जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया धीरे धीरे।
1: भक्ति, जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास, आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े हैं, नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीजें?
0: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी, जब वहाँ प्रकृति ऐसी हो गई, जब पानी खत्म हो गया और खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और में लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा जब सब घर घर में ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी। तो यही, इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी, तो यही मेरा काम होता है।
1: बसंती दी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आई?
0: चुनौतियां तो बहुत आई, और सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके। कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं और तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है, ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गांव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया, तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह, तो ऐसे करके गांव गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया, तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से, मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है, जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है, तो बालवाड़ी खोली हमने भी आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का, और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने। जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, हाँ। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखते हैं बसंती जी,
0: हाँ।
1: आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी ध्यान देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला, तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गाँव गाँव में, सब जगह, और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर दिया, और लड़कियों को भी जब हमने और

0: बालवाड़ी में एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो ऐसा वातावरण बन गया तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए। तो और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगे।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है। आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ, तब मैंने कहा, तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो महिलाएं मिल गई। मैंने उनसे कहा कि तुमने इतना जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियोगे, कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संदीप जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके, क्या उनसे कहना चाहेंगी आप?
0: तो उनसे भी तो वही कहना है, नशा मत करो, वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा बनाओ, आगे की पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश भारत वर्ष अच्छा होगा। उत्तराखंड देव भूमि को मैं यही कहती हूँ कि महान बनाना है, जब सब लोग परिवार परिवार में, गांव में, इलाके में सब अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले होंगे और अच्छा वातावरण होगा तो सब खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे राकेश पंत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

कई फिल्मों के निर्माण के बाद देवानंद ने प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा। हालांकि उस समय इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया था, लेकिन आज इसे क्लासिक्स में गिना जाता है। इसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा, हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, देश परदेश, लूट मार, स्वामी दादा, हम नौजवान और आनंद जैसी फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। देवानंद हमेशा समय के साथ चलते थे। अपने आखिरी दिनों तक वो फिल्म निर्माण में लगे रहे। उनकी आखिरी फिल्म अमन के फरिश्ते थी, जो उनके निधन के बाद 2016 में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2011 को 88 बरस की उम्र में लंदन में हार्ट अटैक के कारण देवानंद की मृत्यु हो गई और इसी के साथ सिनेमा के एक युग का अंत हो गया।

साल 2002 में भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से देवानंद को सम्मानित किया गया। 2001 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इससे पहले उनकी बहुचर्चित फिल्म गाइड को भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में हिंदी की तीसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान मिला। इनके अलावा और भी कई पुरस्कार उनके नाम हैं। 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर देवानंद के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया और इसी साल उनके ऑटोग्राफ के साथ बांद्रा में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था।

गाइड फिल्म के इस गीत के साथ कलाकार बेमिसाल से फिलहाल रजनी को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे उर्दू में खबरें और उसके बाद जारी रहेगा एफएम गोल्ड पर दूसरे प्रोग्राम्स का सिलसिला। फिलहाल समय है समाचारों का।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने मसनूई जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कानात तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी अमन सलामती के पस मंजर में मसनूई जहानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुस्तरका सदारत की। जनाब जयशंकर आज दोपहर न्यूयॉर्क में 81वीं अक्वामी मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अक्वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में फौरी इस्लाहात की अपील की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। ईरान ने अमरीका की जानिब से शराइत मान लिए जाने की सूरत में 7 दिन के अंदर आबनाए हुरमुज दोबारा खोलने से मुतालिक तजवीज पेश की है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय कबड्डी टीम ने ईरान को शिकस्त देते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं भारत ने खवातीन के निशानेबाजी और मर्दों के मैराथन में भी चांदी के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉक्टर जयशंकर ने मसनूई जहानत AI से हासिल इम्कानात को बरूए कार लाने और उसके असरात का अंदाजा लगाने और खतरात को कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने एक प्रोग्राम के दौरान ये तबसरा किया। ये प्रोग्राम बहरी सलामती पर खसूसी तवज्जो के साथ बैनुल अक्वामी अमन सलामती के तनाजुर में AI के मौजू के तहत मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर और यूनान के उनके हम मनसब जॉर्ज गेरा पेट्राइटस ने मुश्तरका तौर पर की। डॉक्टर जयशंकर ने अक्वामी मुत्तहिदा में इस बात का इयादा किया कि मसनूई जहानतें आए और बहरी सलामती भारत की अहम तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नई दिल्ली एलामिये में इकतसादी तरक्की और समाजी फलाह बहबूद के लिए AI के वसाइल की सभी के लिए दस्तियाबी, महफूज और काबिल एतमाद निज़ाम की तामीर, इंसानी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और AI से इस्तफादा करने पर जोर दिया गया है। वजीर खारजा जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। यह इजलास एतमाद की बहाली, बदलाव का इंतजाम, सभी के लिए कारआमद अक्वामे मुत्तहिदा के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली 193 रुकन ममालिक के सुदूर, उजराए आजम और सीनियर नुमाइंदों को यकजा करती है, जो अहम बैनुल अक्वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौकिफ वाजह करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके योम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जनाब सिंह ने अवामी जिंदगी में बहुत साल गुजारे और मुल्क के लिए खुद को वक्फ करते हुए खिदमात अंजाम दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज केरलम पहुंचेंगे। जनाब शाह आज दोपहर 2 बजे कुंद्रा में इमदाद बाहिमी के शोबे में खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाली पहल का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद मरकजी वजीर दाखिला अमृता पुरी में अमृता कीर्ति पुरस्कार तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब सदर CP राधाकृष्णन कल केरलम का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अजीम बंगाली समाजी मुसले ईश्वर चंद विद्यासागर को आज उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। जनाब शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विद्यासागर ने तालीम को समाजी तब्दीली का ताकतवर जरिया बनाया। उन्होंने कहा कि बरना परिचय के जरिए विद्यासागर ने नए बंगाली हरूफ तहजी पेश किए और बेशुमार बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे खोले। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी और सनाती तहकीक की काउंसिल CSIR के 85वें योम तासीस के मौके पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और आसामी जबान में 5 नए मशहूर साइंसी जरीदों का आगाज किया है। इन जरीदों की अशात CSIR और साइंसी कम्युनिकेशन और पॉलिसी रिसर्च के भारतीय इदारे की जानिब से की गई है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात की फौरी जरूरत पर जोर दिया है, ताकि इस इदारे में तरक्की पजीर मुल्कों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर G77 वज़राए खारजा की 50वीं सालाना मीटिंग के मौके पर भारत की तरफ से बयान देते हुए जनाब मिस्री ने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में ज़ाबतों पर अमलावरी करने वाले मुल्कों के बजाय ज़ाबते तश्कील देने वाले मुल्क बनाने की खातिर मुश्तरक इकदामात पर जोर दिया है। उन्होंने आवाम पर मरकूज और तरक्की पर मबनी कसीर रुखी निज़ाम में G77 की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने की तैयारी और कार्रवाई के तई भारत के आज़म का इआदा किया। मीटिंग से खताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने हुकूमत और समाजी सतह पर वबाई बीमारियों की रोकथाम और कार्रवाई के तई भारत के मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया, जिसमें सेहत से मुतालिक मुमकिन तौर पर कई हंगामी हालात का इहाता किया गया है। उन्होंने सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल से मुअस्सर तौर पर निमटने के मकसद से निज़ाम को सहूलियात से आरस्ता करने की खातिर लेबोरेटरी नेटवर्क, हंगामी हालात में तालमेल, तिब्बी अफरादी कुव्वत और तिब्बी निगहदाश्त की सलाहियत के सिलसिले में भारत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में बताया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने आज दिन में बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ मकामात पर दरमियानी दर्जे से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। महकमे मौसमियात IMD ने आज कई जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: बिहार के कई जिलों और पड़ोस में वाकई नेपाल के कुछ इलाकों में चार दिन से जारी बारिश के सबब रियासत के कोसी, गंडक और बागमती समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सुपौल में वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। ये कोसी दरिया में पानी की सतह में इजाफे के तनाजुर में एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। इस दौरान मगरबी चंपारण में गंडक दरिया में पानी की सतह में इजाफा होने से नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। गुज़श्ता चार दिन के दौरान पटना और कई दीगर इलाकों में लगातार बारिश के सबब मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हुए हैं। कई मकामात पर पानी भरने की इत्तला मिली है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए कौनैन हैदर।
0: छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीज़न और वस्ती इलाकों समेत रियासत के कई अजला में तीन दिन से जारी शदीद बारिश के सबब

0: दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंद्रावती दरिया खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रहा है। धमतरी जिले में गंगरेल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमेरिका ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे, ईरान की तेल की फरोख्त पर से बंदिशें हटा ले और लेबनान समेत जंगबंदी पर अमल करे तो वो आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल देगा और 7 दिन के अंदर अंदर अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू कर देगा। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में कबड्डी में खवातीन की भारतीय टीम ने सनसनीखेज फाइनल मैच में आज ईरान को 34 के मुकाबले 37 से शिकस्त दी। इस तरह भारत ने अपना 3रा सोने का तमगा हासिल किया। इससे पहले भारतीय मैराथन खिलाड़ी सामन बारवाल ने मर्दों के मैराथन जुमरे में 44 बरस के वक्फे के बाद भारत के लिए चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम की। भारत ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मुकाबलों में आज चांदी का तमगा जीता। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशि चौकसी की 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने 1763 पॉइंट के साथ ये कारनामा अंजाम दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीतने पर सावन बारवाल को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वाश में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नौम्र भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आलमी नंबर 6 जापान की सातोमी वातानाबा के खिलाफ मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मसनू जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कान तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैन अवी अमन सलामती के पस मंजर में मसनू जहानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुश्तरका सदारत की। जनाब जयशंकर आज दोपहर न्यूयॉर्क में 81 में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तरक्की पदीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अकवाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में फौरी इस्लाहात की अपील की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jayashankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by AI, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security with an emphasis on maritime security alongside Foreign Minister of Greece George Yerapetrates. During the event, Dr. Jayashankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India at the United Nations. He highlighted that the New Delhi Declaration emphasizes democratic access to AI resources, building secure and trustworthy systems, investing in human capabilities and harnessing AI for economic growth and social good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers of the Group of

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक

0: और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अक्वापदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर

0: पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारती वेव्स ओटीटी प्लैटफॉर्म और न्यूज ऑन एआईआर ऐप सहित 558 किलोहर्ट्ज वर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेत, वेळ झाली नादब्रह्म कार्यक्रमाची। आज या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत जयदेव मेनन यांचं कर्नाटक शैलीतील गायन, राग रुद्रप्रिय, पंतू बराली आणि सिंधू भैरवी। त्यांना व्हायोलिन साथ कृष्ण नटराजन यांची तर मृदंगम संगत NS कल्याणरामन यांची। ऐकूया जयदेव मेनन यांचं कर्नाटक शैलीतील गायन, राग रुद्रप्रिय, पंतू वराली आणि सिंधू भैरवी।

0: मेड़े
1: हे मेड़े मेड़े मोरा लड़ी हे ले चली
2: मेड़े मेड़े मोरा लड़ी
3: हे ले। मित्रों आजे छे भादरवी पूनम अने भादरवी पूनम एटले के पूनमनु श्राद्ध तो होय ज, परंतु साथे साथे भादरवी पूनम एटले उत्तर गुजरातना बनासकांठा जिल्लाना अरवली पर्वतोनी घाटमां आरासुर डुंगरना नैऋत्य खूणे आवेला अंबाजी धाममां भादरवी पूनमनो मेळानुं आयोजन थतुं होय छे। अने आ मेळो नोमथी पूनम सुधी चाले छे, एटले के पूरा सात दिवस। अने आ वर्षे एटले के 2026 20 सप्टेम्बर थी 26 सप्टेम्बर सुधी भादरवी पूनमनो मेळो अंबाजीधाममां जाम्यो छे अने आजे एनो अंतिम दिवस छे। मित्रों अंबाजीधाम माँ अंबेना जय जयकारथी गूंजी उठे छे। अने आ मेळानुं मुख्य आकर्षण जो कोई होय तो लाखों भक्तो अहीं पग पाळा पद यात्रा करीने हाथमां ध्वजा पताका माथे गरबो अने होठ उपर मुख उपर माँ अंबेनो जय जयकार करता अंबाजीधाम पहोंची जता होय छे।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना अने न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लिकेशन पर कार्यक्रम गीत गुर्जरी। मित्रों, अंबाजी धाम में पहला माताजी नु मंदिर ए बैठो मंदिर नानकड़ू मंदिर हतु जे आजे सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंची गयु छे। मित्रों, गर्भगृह में गोख में यंत्र ने ए रीते वस्त्रों अलंकार आभूषणों थी ए रीते गोठववामां आवे छे के जे भक्तों दर्शन करवा माटे आवे छे एमने माताजी जाने के वाक पर सवार होय एवी प्रतीति थाय छे के अहीं माताजीनी मूर्ति होय एवी प्रतीति थती होय छे। मित्रों, अहीं बे अखंड ज्योत हमेशा प्रगटती रहे छे। मंदिरना चौकमां हमेशा होम हवन थतुं रहे छे अने एमां मंदिरमां गम्मे त्यां प्रसादीमां होय के होम हवनमां गम्मे त्यां तेलनो उपयोग जराय थतो नथी, मात्र घीनो ज उपयोग थाय छे अने भादरवी पूनमे जे भक्तो अहीं आवे छे एमने मोहन थाळनो खास प्रसाद आपवामां आवे छे अने 2026 लगभग 210 करोड़ रुपियानो मोहन थाळ बनावामां आव्यो छे।

मित्रों 2025 में भादरवी पूनमना मेला में लगभग 400 जेटला ड्रॉन थी लाइट शो करवामा आव्यो हतो अने आकाश में जय माताजी एवं लखवामा आव्यो हतो। मित्रों एटलू ज नहीं, माताजी ना बधा ज प्रतीकों त्रिशूल अने माताजीनु आ रूपाळू मंदिर पण आपणे आकाश में आ ड्रॉन नी मदद थी लाइट शो थी जोई शकता हता। परंतु अत्यारे 2026 में केवी व्यवस्था करी छे एनी मने जाण न होवाथी आपणे हुं नथी जणावी शकती, परंतु 2025 में आवी व्यवस्था करवामां आवी हती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हिमालय क्षेत्र में आई विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ के बाद जलवायु लचीलापन तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के संबोधन में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देश उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति नेपाल की गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, इन्हें एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन न होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। उधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बिहार में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी की है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Chief Justice of India Suryakant said that drug abuse among children should be viewed not only as a public health issue but also as a matter of child protection. He was speaking at a seminar on restoring childhood, preventing drug abuse and reintegration of children in need of care and protection in Patna today. The Chief Justice stressed the need to ensure that children affected by substance use are provided safety, treatment, counseling, rehabilitation and opportunities to resume education and family life. Highlighting the importance of early intervention, he said families, schools, teachers, health professionals and community workers can play a crucial role in identifying signs of vulnerability before they develop into a crisis. Justice Suryakant highlighted the importance of educational continuity, safe family environments and aftercare in the rehabilitation process. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by AI, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Gerapetridis. During the event, Dr. Jayashankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India at the United Nations. He highlighted that the New Delhi Declaration emphasizes democratic access to AI resources, building secure and trustworthy systems, investing in human capabilities, and harnessing AI for economic growth and social good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly, UNGA, in New York this afternoon. According to UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Punya Salila Srivastav, reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society, which covers a wide range of potential health emergencies. She stressed the need to translate the lessons of the COVID-19 pandemic into sustained investment, institutional capacity and resilient health systems. US President Donald Trump has reportedly rejected an Iranian proposal to reopen the Strait of Hormuz and end hostilities in the region, even as Iran awaits an official US response to its plans. An American newspaper reported about Trump's views, quoting US officials. Iran had earlier proposed a 7-day process under which hostilities would end on all fronts, while the US would lift its blockade on Iranian ports, release frozen Iranian funds, and waive off oil sanctions. The Strait of Hormuz would then be reopened as per this proposal. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 in Japan. The Indian men's kabaddi team clinched gold, beating Iran 40-34 at the 2026 Asian Games. The Indian women's team also edged out Iran in a tense final clash, winning the contest by a 37-34 margin. India has made a strong medal haul at the Asian Games today, adding 4 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. Now, India are currently placed 10th in the medal standings and its overall tally has reached 28, with 4 gold, 11 silver and

सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। वक्त नोट कीजिए 4:11 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और आइए साथियों, अब बहुत खूबसूरत दो अपने समय के मशहूर फिल्मी गीत सुनते हैं, एक 60 के दशक का और दूसरा 80 के दशक का। फर्क है, गाने में फर्क है, तासीर में फर्क है, लेकिन सुर वही है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। एक गीत आपने सुना है और अब एक दूसरी तासीर का गीत आप तक पहुंचाते हैं। ये आशा जी का गाया हुआ है।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Directorate of Extension Department of Agriculture and Farmers Welfare invites applications for various posts on deputation basis, including short-term contract, namely Photographic Officer 1, Senior Translator 1, Assistant Extension Officer 5 posts, Stenographer Grade 1, 1 post, Photographer 3, Upper Division Clerk 2, Driver Grade 2, 9 posts. The posts carry pay levels 7, 6 and 4 as applicable. Eligible officials from central, state governments, UT, administrations, PSUs, universities, recognized research institutes, semi-government, autonomous and statutory organizations may apply as per the prescribed recruitment rules. Applications must be sent through proper channel along with attested RPARs for the last 5 years and other required documents should reach the prescribed authority within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility and application particulars are available on the Directorate Department website, that is at www.krishivistar.gov.in. Gliders India Limited, a Government of India undertaking under the Ministry of Defence, Kanpur, invites applications from eligible professionals for 7 posts of fixed-term employment basis. The vacancies include DGM Information Technology, DGM Marketing International, DGM Finance and Accounts, and Senior Manager Information Technology and Senior Manager Marketing International, with 1 post each and 2 posts of Manager Supply Chain Management and 1 post of a Manager Administration. The annual CTC ranges from 5.40 lakhs to 14.40 lakh, including gratuity wherever applicable. Only retired executives from defense public sector undertakings are eligible for the Manager Administration position. The number of vacancies may be reduced or cancelled. For eligibility, application procedure and terms and conditions, kindly visit the website, that is at www.glidersindia.in. Unique Identification Authority of India invites applications on deputation on foreign service terms for 1 post of Assistant Account Officer at its regional office, Bengaluru. The post is open to eligible government officers and private candidates are not eligible. Applications in the prescribed performer should be forwarded to the Director HR UIDAI Regional Office, Bengaluru. The last date for receipt of applications is 29 September 2026. Detailed eligibility, deputation terms and application procedures are available on the UIDAI Opportunities Portal. Kindly refer to www.career.uidai.gov.in. IRCON Renewable Power Limited invites applications for 2 posts on contract basis at fixed monthly remunerations. The vacancies are 1 Finance Assistant requiring BCom or MCom with at least 55% marks or CA or CMA intermediate qualifications with a minimum of 3 years post-qualification experience and maximum age of 35 years carrying 45,000 rupees per month and 1 Company Secretary requiring associate membership of the Institute of Company Secretaries of India with at least 2 years experience and maximum age limit being 30 years. Salary of 55,000 rupees per month. The last date for receipt of applications is 28 September 2026 at the IRPL Registered Office, New Delhi. Details and the prescribed application forms available on the website, that is at www.ircon.org. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, invites applications for the post of Professor, 9 posts, Associate Professor, 7, and Assistant Professor, 43, in the Academic and Research Departments. The posts carry Academic Level 14, 13A, and 10, respectively. Eligible candidates may apply online within 30 days from publication of this advertisement in the Employment News. Hard copies of applications will be accepted up to 3 days after the last date for online submission. Details regarding qualifications, experience, fee and application procedure is available on the website, that is at www.cihts.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन में डिप्लोमा प्रशिक्षु के पद के लिए एसटी बैकलॉग रिक्तियां भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत डिप्लोमा प्रशिक्षु का एक पद भरा जाना है और इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी देखिए वेबसाइट पर। वेबसाइट का पता है careers.ntpc.co.in/recruitment। मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र पश्चिम में विभिन्न सिविलियन पदों पर प्रत्यक्ष आधार पर भर्ती की जा रही है। पद नाम है स्टोर कीपर ग्रेड 2, इंजन ड्राइवर लश्कर, CMTD, MTS और MTS वॉचमैन। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति के तहत भारत के किसी भी हिस्से में सेवा करने की बाध्यता है। विस्तृत जानकारी आप हासिल कर सकते हैं 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में, अथवा आप देख सकते हैं भारतीय तटरक्षक बल की वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in। आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ में श्रम कल्याण अधिकारी का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आयु न्यूनतम 27 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष हो सकती है। नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ddpdoo.gov.in। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सहायक अधिकारी सचिवीय के 10 पद रिक्त हैं। इनमें से 6 पद अनारक्षित हैं, 1 पद एससी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1 तथा पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता, नियम शर्तों, अन्य मापदंडों, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट पर। और इसके अतिरिक्त आप 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट है www.rcfltd.com www.rcfltd.com। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कार्यालय में वरिष्ठ प्रशिक्षक पर्वतारोहण का एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट www.recruitment.ssb.gov.in अथवा SSB की मुख्य वेबसाइट www.ssb.gov.in पर भी आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
2: हेलो Jaya, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very, very fresh episode of Parikrama. And yes, as always, we bring you an amalgamation of not just news, but also since the name of the show is Parikrama, so we'll do the Parikrama of the country. Yes, we'll go to different parts and see what interesting stories our correspondents have in store for you. All this over the next 30 minutes. But first, let's start with the headlines, Jaya.
1: Bilkul. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की।
2: Mr. Jayshankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon.
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया।
2: Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.
1: ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया।
2: एंड इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम क्लिंचेस गोल्ड, बीटिंग ईरान एट एशियन गेम्स, विंस 2 सिल्वर मेडल्स इन वुमेन्स शूटिंग एंड मेन्स मैराथन। And today, as always, we begin our show with our special segment, Dateline India. And today we're going to talk about 12 years of Make in India and, of course, International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons.
1: बिल्कुल। और कभी किसी भारतीय कारखाने की मशीनों की आवाज को अगर ध्यान से सुनिए तो उसमें सिर्फ धातु की खनक नहीं, भारत के बदलते आत्मविश्वास की धड़कन भी सुनाई देती है। पिछले 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ने निर्माण को एक विचार से आगे बढ़कर एक जन आकांक्षा का रूप दिया है। भारतीय हाथों ने उत्पाद बनाए, भारतीय प्रतिभा ने तकनीक गढ़ी और भारतीय सपनों ने नई ऊंचाइयों को छुआ।

0: Yes, today as the world turns its gaze towards it, it is not merely the numbers that stand behind this transformation, but the strength of millions of hard-working hands, the energy of our youth, and the confidence of an entire nation. This is the story of 12 years of Make in India.
1: और साल 2014 में 25 सितंबर को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बहुत बड़ा था, भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का ग्लोबल हब

0: Home production alone has risen about 32 times, reaching around 6.3 lakh crore rupees. So from being a market for mobile phones, India has now become the world's second largest mobile phone manufacturer by volume.
1: और कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है. भारत ने 2024-25 में 3 करोड़ 10 लाख से अधिक गाड़ियां बनाई. और जहां तक बात दवाओं की है, भारत दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है. दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है.
0: Well, so how far has this manufacturing journey traveled? Take steel, for example. Production here has risen from 81.7 million tons to 170 million tons in these 12 years.
1: और अगर मैं रेलवे की बात करूं तो सिर्फ एक दशक में भारतीय रेलवे ने 54,800 से ज्यादा कोच बनाए.
0: And Jaya, there is one more transformation worth noticing. That is, of course, in defense manufacturing. India's indigenous defense production has risen dramatically from 46,429 crore rupees to a record 1.78 lakh crore rupees in just 12 years.
1: लेकिन यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प होती है सायरा, क्योंकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी सिर्फ उन चीजों को असेंबल करने से कहीं ज्यादा है जिन्हें पहले से कहीं और डिजाइन किया जा चुका है.
0: Absolutely, Jaya. It is about developing the components, materials, machinery and technologies that lie at the heart of modern manufacturing. And that is where India's manufacturing journey takes a fascinating turn.
1: भारत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर सेल, विमान, रेलवे और यहाँ तक कि परमाणु उपकरणों के लिए भी स्वदेशी तकनीकें विकसित कर रहा है.
0: That's right. ISRO and Semiconductor Labs have developed Vikram 3201 and Kalpana 3201 microprocessors designed for space applications.
1: इसके साथ ही भारत ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक पायलट प्लांट भी स्थापित किया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है.
0: And solar manufacturing has also seen a remarkable expansion. Module manufacturing capacity has risen from 2.3 gigawatts to 192 gigawatts in this journey of 12 years.
1: जैसा कि मशहूर अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि एक साथ आना शुरुआत है, साथ बने रहना तरक्की है और साथ मिलकर काम करना सफलता है. एक इकोसिस्टम बनाने की वही भावना यहाँ भी दिखाई देती है.
0: Absolutely. And now, well, the production linked incentive schemes or PLI schemes, they have become another catalyst in this journey, giving industries an incentive to manufacture more in India and compete more strongly in the global market.
1: अब PLI स्कीमों की बात हो रही है तो बताएं कि इसमें 14 सेक्टर शामिल हैं. इस साल जून तक इनमें से 2,60,000 करोड़ रुपए का निवेश आया और 23,80,000 करोड़ रुपए का निर्माण और विक्रय हुआ है.
0: And this scheme also supports more than 15.5 lakh crore rupees in exports and contributed to 14.6 lakh jobs.
2: आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूं तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार के बदलाव लाना है, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले ताकि गरीब से गरीब परिवार गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शहर का कदम है, ये लाइन का स्टेप मेक इन इंडिया.

0: अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत कितना निर्माण कर सकता है, बल्कि अब ज्यादातर सवाल ये है कि भारत कितना डिजाइन डेवलप कर सकता है, और इसका जवाब भारतीय टेक्नोलॉजी स्किल्स और क्षमताओं के जरिए सामने आ रहे हैं।
1: Absolutely, Jaya. Smartphones, semiconductors, railway coaches and the intricate components, solar modules and clean energy technologies, defense equipment,

0: यूथ ग्रुप्स। फोर परिक्रमा केन्यूम आंगो आकाशवाणी ईटानगर।
1: हर जगह फेस्टिवल्स की बात चल रही है सायरा, तो काफी एक्साइटमेंट वाला मोमेंट है। इसी बीच हम आपको लिए चलते हैं श्रोताओं झारखंड की तरफ, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है और झारखंड चूंकि वहां के लोग जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं ऐसा कहा जाता है, तो जब भी हम पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं तो झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति सदियों से इसकी पथ प्रदर्शक रही है। अभी हाल में ही झारखंड में प्रकृति का पर्व कर्मा बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जो हमें पेड़ों की रक्षा और धरती की सेहत का संदेश देता है। सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट हमारी संवाददाता से।
2: धानक गाछे झूमर लागल कर्मा गाछे झूमर, मांदर की इन्हीं सुरीली थापों के साथ अभी तीन दिन पहले ही झारखंड की माटी ने प्रकृति पर्व कर्मा मनाया है, जहां कर्म वृक्ष की डालियों को आंगन में रोपकर उनकी पूजा की गई। आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के मौके पर झारखंड की यही अनूठी परंपरा आधुनिक विज्ञान के जन स्वास्थ्य संदेश को मजबूती दे रही है। पलामू के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रोहित पांडे का भी मानना है,
3: आज चिकित्सा विज्ञान भी यही कह रहा है कि बढ़ता प्रदूषण एवं आबो हवा सांस की बीमारियां, एलर्जी और मानसिक तनाव बढ़ा रही है। अगर हम अपने पारंपरिक संस्कारों को अपनाएं, पेड़ लगाएं, कचरा प्रबंधन दुरुस्त रखें और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें, तो हम अपने समुदाय को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं।
2: झारखंड की लोक संस्कृति में जल जंगल और जमीन की सुरक्षा केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवन शैली है। कर्मा पर्व में बोया जाने वाला जावा अनाज और पौधों के प्रति इसी वैज्ञानिक और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। राज्य के पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल कहते हैं,
4: हमारे पूर्वजों ने कर्मा पर्व के जरिए हमें पेड़ों को भगवान मानना सिखाया है। आज इस पर्यावरण स्वस्थ दिवस पर हमारा यही संकल्प है कि हम सिर्फ त्योहार पर ही नहीं बल्कि साल भर अपने शहर को साफ और हरा भरा रखें।
2: स्पष्ट है कि जहां एक ओर आधुनिक विज्ञान पर्यावरण को बचाने के रास्ते सुझा रहा है, वहीं झारखंड की मिट्टी ने सदियों पहले कर्मा जैसी परंपराओं से इसकी राह दिखाई है। आज का ये दिन विज्ञान और परंपरा के इसी खूबसूरत मेल से एक स्वस्थ और निरोगी समाज बनाने की याद दिलाता है। परिक्रमा के लिए कुंदन वर्मा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
5: And now from Jharkhand, we go down south to Andhra Pradesh, where Indian traditional handicrafts play a significant role in the nation's economy and promote social empowerment. A premier example of this is the Etikopaka toy craft from the Anakapalli district of Andhra Pradesh, where local artisans are widely recognized for their deep commitment to preserving this rich heritage through eco-friendly practices. Let's hear more from our correspondent.
6: The craft of making Etikopaka toys is being practiced as a specialized skill by numerous rural artisans within the Varaha River Basin region. The local population, particularly the traditional families of the village, are acquiring this craft from generation to generations since four centuries and are engaging in sustainable self-employment. The toys are unique because they are environmentally friendly, made using all natural colors like kurkuma, raw turmeric roots for yellow or orange, jaffra seeds for red and leaves for color green, which makes the toys toxin free for children to play. Consequently, exporters and e-commerce platforms continue to dispatch these eco-friendly toys to international markets, catering to the growing global demand for sustainable playthings. The toy industry in Etikopaka has reached notable achievements such as obtaining a J tag in 2017. Currently, the sector employs hundreds of artisan families and produce a wide variety of items including traditional toys, utility boxes and home decor. The making of this art is known as turned wood lacquer craft, also called as Lakkabomalu. It was exhibited virtually in the India Toy Fair 2021 during COVID. Etikopaka toys are recognized by the Craft Council of India, Asian Heritage Foundation, and they are also exported internationally to Italy, Germany, France, Pennsylvania, and Canada. The artisans who make the craft also honored with several awards like National Innovation Foundation, UNESCO CCI, Seal of Excellence for Handicrafts, and others. To modernize the industry, the government, along with handicraft development boards, is offering design intervention training, introducing contemporary shapes and enhancing digital market linkages to ensure these timeless wooden creations thrive in modern retail. With the inputs from Ruchita, this is Satyanarayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
1: श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल।
7: The Indian women's kabaddi team clinched the gold medal defeating Iran 37-34

0: Today we are of course remembering an actor who refused to age, Jaya. Yes, Jay. India's very own Gregory Peck. We are talking about Dev Anand, whose birth anniversary is today.
1: बिल्कुल. और जब बात होती है पहले पर्दे केस जादूगर की, तो इनके नाम के बिना महफिल अधूरी होती है.

0: तो देवानंद साहब ऐसे एवरग्रीन स्टार है हमारे, जिनकी झुकी हुई गर्दन, अनोखा हेयर स्टाइल और आंखों पर चश्मा और तेज तेज बात करने का अंदाज आज भी सिनेमा प्रेमियों को दीवाना बना देता है। आज उनकी जयंती है। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ में एक मध्यम वर्गीय वकील परिवार में जन्मे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद ने जब मुंबई का रुख किया तो उन्होंने रोमांटिक अभिनय की एक नई परिभाषा गढ़ दी।
1: That's right. Considered as one of the greatest and most successful actors in the history of Indian cinema, through a career that spanned over 6 decades, he worked in more than 100 films. And जया मजे की बात ये है कि usually देखा जाता है कि जो actors उम्र के जब उम्र की ढलान पे होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा method acting करने लगते हैं या थोड़े serious किरदार निभाते हैं। But देवानंद का record है, उन्होंने कभी भी बाप का किरदार निभाया ही नहीं। He always was the hero of his films, even when he was, not so young, you can say, but he was always young at heart. और किसी ने एक अरे अच्छे से इंटरव्यू में उनसे पूछा था, if you have to sum up your life, then what would be that line? तो he actually remembered that song के मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि देवानंद साहब केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे जिंदगी को जिंदा दिल से जीने का एक खूबसूरत फलसफा थे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि मुश्किलें कैसी भी हो मुस्कुराते रहना चाहिए, जैसा कि अभी आपने इस गाने में भी बताया। तो आइए सुनते हैं उनकी इसी एवरग्रीन मुस्कान को नमन करते हुए उन्हीं की फिल्म हम दोनों का यह कालजयी गीत, जो उनके पूरे जीवन के दर्शन को बयां करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

0: देवानंद साहब के इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2001 में देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और साल 2002 में सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया था।
1: And now, before we move on to the next personality, सबसे पहले उनकी आवाज सुनते हैं और फिर उनका जो है नाम लेंगे, right?
0: बिल्कुल।

तो ये मखमली और दर्द भरी आवाज किसी और की नहीं बल्कि हिंदी और बांग्ला सिनेमा के दिग्गज गायक और संगीतकार हेमंत कुमार यानी हमारे प्यारे हेमंत मुखर्जी जी की है और आज उनकी पुण्यतिथि है। 26 सितंबर 1989 को इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हेमंत दा का जन्म पवित्र नगरी वाराणसी में हुआ था और उनका लालन पालन कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने साहित्य की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि अपना पूरा जीवन संगीत के चरणों में अर्पित कर सके। हेमंत दा केवल एक बेजोड़ गायक नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक संगीतकार भी थे। फिल्म नागिन के कालजयी संगीत और उनकी अमर बीन धुन के लिए उन्हें साल 1956 में प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार से नवाजा गया था।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए मुझे यानी जया और सायरा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का।
1: नमस्कार, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। पंजाब पुलिस ने आज फिरोजपुर में पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन और हथियार गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि पंजाब पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें एक चेकिंग प्वाइंट पर रोका गया था। मामले की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंचे लहरें उठने की आशंका के कारण आज से 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केओंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदिशा विनोद और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।

5:11, 24:25, 26 ये तो मैं कहती रहूंगी, लेकिन प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 और शुरुआत में आपकी दोस्त सीमा वर्मा आपको बहुत सारी दुआएं दे रही है, नमस्ते कह रही है और साथ में आपसे पूछ रही है कि कैसे हैं आप साहब, कैसा सैटरडे अभी तक का आपका गुजरा है। कार्यक्रम का पहला गीत बिल्कुल तैयार है, लेकिन उससे पहले तू फकत तू नहीं, तू फकत तू नहीं, नूर है मेरी आंखों का, तू ना होता तो मेरे ख्वाबों ने मर जाना था।

जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आपने शुरू कर दिया है सुनना, गाते गुनगुनाते आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ में सीमा वर्मा।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: हीरो नंबर वन फिल्म से हमने आज गाते गुनगुनाते प्रोग्राम की शुरुआत की और शुरू में ही इतने मौज मस्ती वाले गीत के साथ जब हम शुरू करते हैं तो इस मौज मस्ती को बिल्कुल कायम रहना चाहिए और ऐसे ही अब हमने आगे बढ़ना है। हमने आपका हालचाल पूछा और अब हालचाल हम बताते हैं आपको मौसम का। आपने नोट किया होगा आज सुबह से, इनफैक्ट कल रात से मौसम में एक हल्की सी तब्दीली जो है वो आई है। अब देखिए कुदरत भी क्या कमाल करती है, मौसम भी किस तरह से अपनी करवट बदलता है। अब सितंबर महीना ख़त्म होने को है, अक्टूबर महीना आ ही रहा है और नवंबर महीने से सर्दी जो है वो शुरुआत तो हो जाती है उसकी, तो कहीं ना कहीं वो वार्म अप हो रहा है इस समय और मौसम बहुत सुहाना हो गया। पिछले कल भी अच्छा लगा शाम को और आज तो सुबह से बहुत डिफरेंट सा कुछ लग रहा है और जब ऐसा कुछ होता है तो जी करता है कि कहीं जाया जाए, बिल्कुल जाया जाए, कहीं घूमने जाया जाए, अपनों के साथ जाया जाए, कहीं किसी दोस्त के पास जाया जाए। यानी हमारी ज़िंदगी में ये जो मौसम ने करवट ली है, आप बस ये विश कीजिए ये मौसम जो है ऐसा ही सुहाना रहे और हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, साथ मौसम भी हमारा साथ दे, है ना? क्योंकि ज़िंदगी में जो आता है उसका वर्ग

साथियों, जिसने जिंदगी में जितने दिन तक रहना होता है बस वो रहना होता है, और हमें बस सिर्फ इतना करना होता है कि हमें जब बाहर आए तो उसकी खुशी मनानी होती है और इसकी खुशी को दिल में एक गिफ्ट की तरह रखकर आगे बढ़ना होता है ना। और अगर जिंदगी हमें कुछ ऐसा देती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो चली जाती है, तो हमें एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि जो मुस्कुराहट हमारी छीन लेती है जिंदगी कुछ समय के लिए, याद रखिए कुछ समय के लिए, तो ये जो समय है इसमें हमने खुद को संभालना है, आगे भी बढ़ना है, रुकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है वो रुकने का नाम नहीं है। अब खटास, मिठास, अच्छा बुरा, ये पूरा का पूरा पैकेज है जीवन का। हम आगे बढ़ते हैं, कई बार आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ पाते, है ना। कई बार मीठे की उम्मीद होती है लेकिन

कड़वा मिलता है। ये सारा जिंदगी का एक पैकेज है जो हमें मिलता है, और ये हमारी समझदारी कहती है कि हम इस पैकेज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जिसको समझा था जीत मैं अपनी, जिसको समझा था जीत मैं अपनी, हाँ वही शख्स हार के आया हूँ मैं, इसीलिए चाय खूब पीता हूँ, ये मेरा आखिरी सहारा है। ये तो एक पंक्ति ने कह दिया, लेकिन समय देखिए जरा कितना हुआ है, कितना हुआ है, 5:25 और लीजिए पूरे 40 सेकंड। चाय का समय तो हो ही गया है, तो आप चूल्हे पे चढ़ाइए चाय और मैं यहाँ पर आप तक पहुँचाती हूँ बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे मधुर गीत, ताकि चाय की चुस्कियों के साथ आप संगीत का भी मजा ले सकें।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूँ?
9: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

समय में हम शुरू कर देंगे और फिर त्यौहार दिवाली, दशहरा, फिर दिवाली, बड़ा कुछ है अभी करने के लिए। यानी ये जो मौसम बदला है ना, ये इशारा दे रहा है कि फेस्टिव सीज़न अब आएगा और जैसे हम फेस्टिवल्स मनाते मनाते एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे जब हम कहेंगे अरे साल तो

अपने तरह से जिम्मेदारी तो निभाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी होती है। जो बच्चे होते हैं उनकी अलग एक्साइटमेंट होती है, जो बड़े होते हैं उनकी टेंशन भी होती है कि बड़ा सारा काम है, क्योंकि शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अच्छा खासा उसमें काम होता है, मेहनत होती है, रिश्तेदारी आती है, किस तरह से हम सब करते हैं। और ऐसे में फिर ये होता है कि भाई हम बिल्कुल डिफरेंट लगें, ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल डिफरेंट लगें और जो हम पहने वो सब देखें। ये एक बात अपने आप में बड़ी ख़ास है, और ख़ास करके जो माएँ होती हैं, चाहे लड़की की माँ हो, लेकिन लड़की की माँ हो, एक तमन्ना होती है। कई बार आपने सुना होगा अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हुए, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, कि मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पहनूंगी, मेरे बेटे की शादी होगी मैं ये। यानी अपनों के लिए हम किस तरह से सपने सजाते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो फैमिली बॉन्डिंग है वो और मज़बूत होती है ना।

इस गीत को सुनने के बाद वो सारी की सारी जो फीलिंग्स हैं वो एकदम तरोताज़ा हो गई। घर पर रिश्तेदारी में किसी के भी जब आसपास यानी जो हमारे क्लोज रिलेशंस में होते हैं उनके घर भी शादी होती है तो पूरा का पूरा जो परिवार होता है वो इतना बिजी हो जाता है और हर कोई

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा।

0: इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
0: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। 5:48 और अब समय हो ही गया है, 48 सेकेंड हो गए। ऐसा समय है कि आप तक एक आध गाना और पहुंचाऊंगी मैं, आप एफएम के साथ तो हैं ही। आज जितने गीत हमने आपकी नज़र किए, काफ़ी हद तक फुट टैपिंग नंबर्स थे, खुशियों की चादर में लिपटे हुए। एक फुट टैपिंग नंबर और लेकर आई हूँ, आजा मेरी जान फिल्म से, जो 1993 में पर्दे

ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म आजा मेरी जान, अनुराधा पौडवाल और एसपीबी साहब बाला सुब्रमण्यम साहब, हम बड़े प्यार से उन्हें एसपीबी पुकारा करते थे, आज भी पुकारते हैं, क्योंकि इतना कुछ उनकी जो आवाज़ है वो गीतों के माध्यम से हमारे बेहद करीब है। और इसमें कहा कि पागल दिल मेरा तुमसे ये कह रहा, तो हमने भी आपसे यही कहना है कि अब जो वक्त हो रहा है, वक्त ऐसा है जी कि 5:55 होने को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं, और हमारा दिल भी ये कहता है कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, और इस बात में पूरी सच्चाई से हम कह रहे हैं, एफएम गोल्ड अपने परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। आप वहाँ हमें सुनते हैं, यहाँ पर हम इस उम्मीद से गीत आप तक पहुँचाते हैं कि आपके दिल को भाएंगे, आपको मुस्कुराहट देंगे, कभी ऐसा कुछ मूड हो तो गीत आपका सहारा बनेंगे, यानी जीवन के साथ ये गीत इसी तरह आगे बढ़ते रहें। एफएम गोल्ड के साथ आपका साथ इसी तरह आगे बढ़ता रहे, प्यार बढ़ता रहे, और क्या चाहिए बताइए इस छोटे से दिल को कुछ।

तो नहीं, तो चलिए फिर सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम के आखिरी गीत के आपके आपको उसके हवाले ही छोड़ के जा रही हूँ। इसके साथ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नूपुर स्टूडियो में आ गई है, सुनते हैं जाबाज फिल्म का ये

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के

0: अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: on the ECINET platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by the Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The Commission also said if a hearing is required, the elector may authorize any adult member of their family to appear on their behalf. SIR has already been completed in 20 states and UTs, including Bihar and West Bengal. The Commission reiterated that the order for the SIR was issued for all the states and UTs with the unanimous approval of the Commission. The Commission said any person whose name has been left out during SIR and wants to include their name can apply to the concerned Electoral Registration Officer. Chief Justice of India Suryakant has said that drug abuse among children should be viewed not only as a public health issue but also as a matter of child protection. He was speaking at a seminar in Patna today on restoring childhood, preventing drug abuse and reintegration of children in need of care and protection. The Chief Justice stressed the need to ensure that children affected by substance use are provided safety, treatment, counselling, rehabilitation and opportunities to resume education and family life. Chief Justice of India, Justice Suryakant, today inaugurated the country's first victim rights centre in Patna. The first of its kind victim rights centre in the country has been established on the premises of the Bihar State Legal Services Authority. The centre will provide legal rights and essential assistance under one roof to victims of various crimes, including invisible victims.
1: Address is one important barrier by helping a person navigate entitlements that already exist. But there is another barrier that arises even earlier. A person may not even know where to run, where to turn, or the justice system may simply not reach them. The initiative we have launched today seek to address that wider gap. They take justice closer to people who too often struggle to access to it.
0: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said the blue economy holds immense potential for Kerala's future and the cooperative sector must be able to tap into it. He was speaking while inaugurating various development initiatives under the aegis of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundara in Kerala. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. US President Donald Trump has shared a map depicting the Strait of Hormuz as Trump Strait after rejecting an Iranian 7-day framework aimed at reopening the strategically vital waterway. According to media reports, Mr. Trump reiterated that Iran would not be allowed to acquire a nuclear weapon. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 in Japan. The Indian men's kabaddi team clinched gold, beating Iran 40-34. The Indian women's team also edged out Iran in a tense final clash, winning the contest by a 37-34 margin. India has made a strong medal haul at the Asian Games today, adding 6 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. India currently placed 10th in the medal standings and its overall tally has reached 29 with 4 gold, 12 silver and 13 bronze. In athletics, Tajinder Pal Singh Toor won the silver medal in the men's shot put with a throw of 20.64 metres. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है मैं हूं सरफिरोजी श्रोताओं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत सामान्य हो गया है। बाजार से सामान लाने से लेकर खाने पीने की चीजों की पैकिंग तक प्लास्टिक हमारे आसपास दिखाई देता है, लेकिन इस्तेमाल के बाद यही प्लास्टिक जब बिना अलग किए कचरे में चला जाता है तो उसके प्रबंधन की चुनौती बढ़ जाती है। पिछले एक दशक में भारत में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं। इसी क्रम में 1 जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध भी लागू किया गया, लेकिन प्लास्टिक कचरे की चुनौती का समाधान केवल नियम बनाने या प्रतिबंध लगाने से नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसे फेंकने की हमारी आदतों में भी बदलाव आए। देश के अलग अलग शहरों और समुदायों में किए जा रहे कुछ स्थानीय प्रयास बताते हैं कि प्लास्टिक कचरे को कम करने से लेकर उसे दोबारा उपयोगी बनाने तक कई स्तरों पर काम किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि प्लास्टिक कचरे से निपटने का तरीका जमीन पर कैसे दिखाई देता है। इसके लिए हम कुछ ऐसी पहल और कहानियों को देखेंगे जो प्लास्टिक की पूरी यात्रा को 5 शब्दों में समझाती है, रिड्यूस, रीयूज, रिटर्न, रिकवर और रिक्रिएट। आइए अब इन 5 पहलुओं को अलग अलग उदाहरणों के जरिए समझते हैं।
4: प्लास्टिक कचरे को रिड्यूस करने की शुरुआत वहीं से हो सकती है जहां उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा दिखाई देता है, यानी बाजार। तमिलनाडु के त्रिची में नगर निगम ने वर्ष 2022 में बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए टेनूर, के नगर और वोरायूर के 3 किसान बाजारों को चुना गया। इन बाजारों में 220 विक्रेताओं के साथ काम किया गया और उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। इसका असर भी दिखाई दिया। टेनूर बाजार में एक वर्ष में 2200 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचा गया। वहीं के नगर में 4 महीने में 620 किलोग्राम और वोरायूर में 6 महीने में 300 किलोग्राम प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचाव हुआ। लेकिन जब किसी विकल्प को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना हो तो उसका आसानी से उपलब्ध होना भी जरूरी है। महाराष्ट्र के विटा शहर में नगर परिषद ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 5 थैला ATM लगाए हैं। ये मशीनें आम वेंडिंग मशीन की तरह काम करती है। ग्राहक सिक्का या नोट डालकर कपड़े का थैला ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कदम यानी रिटर्न की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस्तेमाल किए गए दूध के पाउच वापस लेने के लिए बायबैक पहल की शुरुआत की गई। लोगों को इस्तेमाल किए गए पाउच तय संग्रह केंद्रों पर जमा करने के बदले ताज़ा दूध और छूट जैसे प्रोत्साहन दिए गए। इसके बाद आता है रिकवर, यानी इस्तेमाल हो चुका प्लास्टिक को कचरे के ढेर में जाने से पहले निकालना और उसे दोबारा उपयोग लायक बनाना। बेंगलुरु में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट पृथ्वी के अंतर्गत 2019 में सफाई साथियों के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी स्वच्छता केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ प्लास्टिक कचरे को अलग किया जाता है और फिर उसे श्रेडिंग और बेलिंग के जरिए आगे रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन प्लास्टिक की कुछ किस्मों को दोबारा इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता है। चॉकलेट, बिस्किट और चिप्स के पैकेट या शैम्पू के छोटे पैकेट जैसे मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक में अलग अलग तरह की सामग्री की कई परतें होती हैं। इसलिए इन्हें अलग करना और रिसाइकल करना आसान नहीं होता। पंजाब के पटियाला में ऐसे प्लास्टिक को एक नया उपयोग देने के लिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी स्थापित की गई। यहाँ कम मूल्य वाले प्लास्टिक को अलग करके साफ किया जाता है और छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। इसके बाद इन्हें चिपबोर्ड में बदला जाता है। इससे तैयार सामग्री का इस्तेमाल फर्नीचर, छत और अस्थायी ढांचे बनाने में किया जा सकता है। यानी रिक्रिएट का अर्थ है ऐसे प्लास्टिक को भी नए उपयोग में लाना जिसे पहले दोबारा इस्तेमाल करना मुश्किल माना जाता था।
3: श्रोताओं, प्लास्टिक कचरे से निपटने के ये प्रयास ये दिखाते हैं कि बदलाव की शुरुआत स्थानीय स्तर पर हो सकती है, लेकिन स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की चुनौती केवल प्लास्टिक तक सीमित नहीं है। घर से निकलने वाले कचरे से लेकर शहरों में जमा पुराने कचरे तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है। इसी सोच के साथ अब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन को एक व्यापक व्यवस्था के रूप में मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। इसमें कचरे को अलग अलग अलग करने, उसके सही संग्रह और वैज्ञानिक तरीके से निपटने के साथ साथ पुराने डंप साइट को साफ कर उस जमीन का दोबारा उपयोग करने पर भी ध्यान है। आइए अब समझते हैं कि इन प्रयासों

0: के जरिए शहरों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को किस तरह बदला जा रहा है।
1: ठोस कचरे के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 महत्वपूर्ण है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए और वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं। इनका उद्देश्य कचरे के संग्रह से लेकर उसके प्रसंस्करण और निपटान तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। नए नियमों में कचरे को 4 अलग अलग हिस्सों में रखने पर जोर दिया गया है। पहला है गीला कचरा, दूसरा सूखा कचरा, तीसरी श्रेणी है सैनिटरी वेस्ट और चौथी श्रेणी है स्पेशल केयर वेस्ट। लेकिन शहर की चुनौती केवल आज पैदा हो रहे कचरे की नहीं है, कई शहरों में वर्षों से जमा पुराने कचरे के बड़े ढेर मौजूद हैं। यहीं से लक्ष्य जीरो डंप साइट की जरूरत सामने आती है। देश में करीब 2479 पुराने डंप साइट की पहचान की गई। इनमें करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है और ये लगभग 15,000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इन पुराने डंप साइट के उपचार के लिए बायो माइनिंग जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें पुराने कचरे को निकालकर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। मिट्टी जैसी सामग्री, धातु, रिसाइकलिंग योग्य सामग्री और ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को अलग किया जाता है। इन प्रयासों के जरिए अब तक 60% से अधिक पुराने कचरे को प्रोसेस किया जा चुका है। पुराने कचरे को हटाने का असर केवल सफाई तक सीमित नहीं रहता। डंप साइट से कचरा हटाने के बाद उस जमीन को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। शहर में करीब 40 एकड़ का क्षेत्र लंबे समय तक कचरा डालने की जगह के रूप में इस्तेमाल होता रहा। करीब 7 वर्षों तक ये शहर का प्रमुख कचरा निपटान स्थल था। यहाँ जमा कचरे का बायो माइनिंग के जरिए उपचार किया गया। हर दिन करीब 400 टन कचरे को प्रोसेस किया गया और उससे कचरे से तैयार ईंधन, काली मिट्टी और रिसाइकलिंग योग्य सामग्री अलग की गई। धीरे धीरे कचरे का ढेर हटता गया और इसी 40 एकड़ जमीन को अब कचरे से कंचन राप्ती इको पार्क के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ हरे मैदान, पैदल और जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह, खुला जिम, योग क्षेत्र, सौर प्रकाश और जल संरक्षण की सुविधाएं हैं। स्थानीय आजीविका के लिए भी जगह बनाई गई है। महिला स्वयं सहायता समूह शक्ति की रसोई यहाँ एक रेस्टोरेंट चलता है। रोज करीब 500 लोग पार्क पहुँच रहे हैं। दिल्ली के भलसवा डंप साइट पर भी पुराने कचरे का उपचार जारी है। नागपुर के भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में भी पुराने कचरे का उपचार किया गया है। कर्नाटक के रायचूर में भी करीब 35 एकड़ के याकलपुरा डंप साइट को वैज्ञानिक तरीके से बदला जा रहा है। यहाँ करीब 62,252 मीट्रिक टन कचरे का उपचार किया गया है और लगभग 22 एकड़ शहरी जमीन को दोबारा उपयोग में लाया जा चुका है। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
0: श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा किसी एक अभियान या एक दिन तक सीमित नहीं है, इसे लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्रोत पर कचरे को अलग करना, घर घर से कचरा संग्रह, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और उपयोगी सामग्री की रिकवरी, इन सभी पर एक साथ काम किया जा रहा है। प्लास्टिक की कहानी भी इसी बदलाव का हिस्सा है। आगे की चुनौती इन प्रयासों को रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बनाने की है। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस यात्रा में अलग अलग शहरों की ये कहानियाँ एक बात सामने रखती है, बदलाव हमेशा बड़े कदम से शुरू नहीं होता। कई बार इसकी शुरुआत एक थैले, एक पाउच, कुछ किलोग्राम प्लास्टिक या एक पुराने कचरे के ढेर से होती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है दानिश जैदी।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई माध्यमेन निर्मितानां अवसराणां उपयोगाय सम्बद्ध संकटान् निवारणाय आहूतवान्। न्यूयॉर्क नगर

0: Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with markets, business or economy. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीटी कोड 011 भी डायल करें. चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन. शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: A warm welcome to both of you.
2: Thank you.
3: Thank you.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स Iran 7-day proposal to reopen the Strait of Hormuz. Indian stock market remains under control of bears for 7th consecutive week. And Wall Street wraps up week with notable gains.
1: America ne Hormuz Jaldamru Madhya ko khole jane wale Iran ke 7 divasiya prastav ko kharij kiya. भारतीय शेयर बाजार पर लगातार सातवें सप्ताह मंदड़िये हावी और वॉल स्ट्रीट ने बढ़त दर्ज करते हुए सप्ताह का अंत किया.

0: opening as well as the next big market thing. And at the same time, we also have to remember that the inflation number in India is also going to be high. So that high frequency economic indicator, if we talk about India per se, that is also not a good news. So that is why I believe that coming 15 days or a month or so will not be so good in terms of Indian economy.
1: Now we are entering the holiday season, or rather the festival season, from October. What do you think? How will the markets take it? How will the economy take it?
0: That's the only good news which are coming, because when you have Navratri from 11th of October, of course we are going to have good purchase, but more purchase will come only in the month of November when we'll have Deepavali. So combination of these two festivals starting from October 11th to for the 9th November, I believe Deepavali is there. So 7th is the Dhanteras. So combination of these three will bring some cheers to the FMCG market, to the electronic market.
1: Hopefully.
0: Yeah. But the only concern at this moment is that the price rise, because many of the companies have indicated that they are going to increase the price. So that may dampen the sentiment. So I may be sounding very pessimist at this moment, but the reality is that the good news are very scarce to find.
1: So Puneet, inflationary trends coming up, as Shishir said, is worrisome.
2: Absolutely, Rajesh. And inflation is technically, it really kills demand. And that's what we've seen, in fact. If you, while you look at the numbers, the GDP numbers might be slightly higher. But it definitely dampens the mood for consumption. Going forward, like you mentioned, there's going to be festive season. We expect the demand to be better. But I think it will be below what most market expectations were. In fact, one of the first indications was the gold sales in this in the last few days, and we've seen a decline in gold sales because of higher prices. So clearly price is a mood buster as far as demand is concerned.
3: Is beech hamare sath Mumbai se Ratnakar jud gaye hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochiye.
4: Hello
3: ji, apna sawal poochiye.
4: हाँ, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि अभी जो मार्केट में एआई रिलेटेड बहुत कॉम्पिटिशन, नहीं तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपील होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने में आदमी का कितना नुकसान नहीं तो फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल एक है कि अभी जो एकादा स्क्रिप्ट शेयर स्क्रिप्ट आईपीओ की इश्यू होने के बाद जब भी पहले लिस्टिंग होता है, अच्छा कंपनी का समझो लिस्टिंग हो गया, तो वो ग्लोबली रिनाउंड होने के लिए कितना समय लगेगा, और तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो ग्लोबली ऑथेंटिकेट कैसे हो जाएगा?
0: देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है कि एआई रिलेटेड कंपनीज का, अगर आप बीते सप्ताह का देखें या उसके पहले सप्ताह में देखें, हमने दो तरीके का ट्रेंड देखा. एक बार हमने देखा कि जब जो एआई बेस्ड कंपनीज थी या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, उसमें बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि एआई को लेकर के जो दुनिया की कंपनियां, उन्होंने कहा था कि उसकी रफ्तार को कम करना है. और उसके पहले ये कहा गया था कि जो एआई कंपनीज हैं उनको अपनी सुविधाएं विकसित करने के लिए आईटी कंपनियों की मदद की जरूरत है. तो इस समय मुझे लगता है कि एआई कंपनी को लेकर के उत्साह रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए. आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये शेयर में लगाने के लिए है, तो आप 10 रुपये या 15 रुपये अगर आप एआई में लगाते हैं, और एक कहते हैं ना कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलें, तो वो बेहतर होगा. तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है. दूसरा आपका प्रश्न जो था, वो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीओ के बाद जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन होने में कितना समय लगता है. देखिए, ये कोई समय तय नहीं है. एक कंपनी अगर अच्छी है तो उसको वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आईपीओ की ज़रूरत नहीं होती, उसे अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उसे अपने सामान की ज़रूरत होती है, अपनी सेवाओं की ज़रूरत होती है. आईपीओ एक तरीके से निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश है, निवेशकों को एक उम्मीद जगह, मतलब निवेशकों के बीच एक उम्मीद ये देता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी. तो दो अलग अलग पहलू हैं, और कंपनियां, कई कंपनियां हैं अगर आप देखें आईटी क्षेत्र में, जो कि वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी अच्छा नाम कर रही हैं, और वो आईपीओ में भी उनको आए हुए काफ़ी समय हो गया, उनके शेयर प्राइसेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं.

0: यानी 0.9% की गिरावट के साथ 23,141 पर स्थिर हुआ। पिछले सप्ताह में दोनों प्रमुख सूचकांकों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.8% की गिरावट आई। बाजार में उतार चढ़ाव का संकेतक इंडिया विक्स सप्ताह के दौरान 6.7% बढ़कर 12.16 पर बंद पहुंच गया। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी लगभग 2.5%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.5% और निफ्टी एनर्जी में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी रियल्टी 3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और FMCG सूचकांकों में भी करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 6 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत, लगातार 7वें सप्ताह की गिरावट अगर हम देखें, किस दिशा में हमारा बाजार अब रुक करके बैठा है?
1: देखिए, जैसे शिशु ने शुरुआती दौर में ही प्रोग्राम में बताया था कि 4 फैक्टर्स हैं इस वक्त जो बाजार को दबाव में ला रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो वॉर का माहौल है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है भारत के बाजारों पर। US बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर चली गई हैं, उससे भी हमारे जो इन्फ्लोज हैं, जो लिक्विडिटी है, वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चौथा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लगातार सेलिंग चल रही है। इस महीने भी करीब करीब 20,000 करोड़ का नेट सेलिंग FIIs ने किया है। और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि घरेलू बाजारों को देखें तो एक तो महंगाई, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, और जो एक तांता लगा था IPOs का, उसने भी काफ़ी लिक्विडिटी बाजार से करी है। जब तक ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, खास तौर से जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से क्रूड कच्चे तेल की कीमतों पर, उसी से इन्फ्लेशन पर, US बॉन्ड यील्ड, ये सभी उससे अफेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब माहौल बदलेगा तभी कोई बड़ी हम यहाँ से बदलाव देख सकते हैं। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में लगातार 7 सप्ताह से बाजार गिरा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा यहाँ से पुल बैक हम देखेंगे और बाजार में शायद अगले सप्ताह हम थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू बाइंग होगी डेफिनेटली। पर मुझे कोई सस्टेंड बाइंग या सस्टेंड अप ट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये फैक्टर्स में बदलाव नहीं आएगा।
0: फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाहता था कि लगातार 2 साल से ये निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे सर? ये तो बिल्कुल भी, हमें तो बैंक जो FD जो रिटर्न मिलता है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, नेगेटिव में जा रहे हैं जितने।
1: सुभाष जी नमस्कार। आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले 2 वर्षों का हम आंकड़े देखें तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली है। हालांकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर है वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट आए हैं, लेकिन जो लार्ज कैप्स हैं और इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ और वर्षों जाएं, यानी हम अगर आप 5 वर्ष से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स को वो काफ़ी रहे हैं। 9 से 10% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिली है। तो इसका जो मैं कहूँगा कि मैसेज है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म में मत घबराइए, ऐसा रहता है। हमने बहुत बार देखा है पिछले कई वर्षों में, 2-3 दशकों में हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी रिटर्न नहीं आती है। लेकिन यदि आप यहाँ बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 4-5 वर्ष में या उससे ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न आएगी। और हमारे पिछले कई वर्षों के, अगर 40-50 साल के हम डेटा देखते हैं, तो ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अबव 5 ईयर्स, उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी। आप इससे परेशान न हो, आप मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहें तो बेहतर है।
3: Moving on, US stock markets ended higher yesterday, supported by gains in AI-related technology stocks. However, elevated crude oil prices and a recent surge in US Treasury yields kept investors on edge. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, while the S&P 500 and NASDAQ Composite rose 0.5% each. For the week, Nasdaq rose over 2% after it notched a record high close on Tuesday. The S&P gained 1.2% and the Dow added 0.3% over the week. Meanwhile, U.S. President Donald Trump said he had a very productive meeting with Chinese President Xi Jinping following a

0: 3-day summit that showcased personal diplomacy rather than major breakthroughs in economic relations.
1: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: जी धन्यवाद। मैं ये दो सवाल है मेरे, एक तो
1: जी अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार, हेलो।
0: हाँ, बोलिए।
1: अपना सवाल पूछिए।
2: जैसे कि जीएसटी घटना के बाद कंपनियों ने अब क्या नई ट्रिक अजमाई है कि जो रेट थे वो कुछ उनके अपने एमआरपी बढ़ा दिए और वो रेट के रेट वैसे कि इनके वैसे ही चलते आ रहे हैं, ये कुछ चीजों में हमने चेक किया। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे कि हमने पहले एक व्हाइट सोना खरीदा हुआ है तो ये इसकी जानकारी चाहिए कि व्हाइट सोने का रेट मार्केट से में सुना है कि येलो सोने से महंगा है।
3: मेरे ख्याल से जीएसटी के मामले में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, कंपनी के एक ये भी आप बात आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कच्चे सामान के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं, कच्चे माल के, और उसका असर आपकी कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ जिनके दाम जो है वो बढ़े हैं, लेकिन अगर फिर भी जो अध्ययन किए गए हैं उस अध्ययन में ये है कि जीएसटी की कटौती जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे उसके बाद दाम में जो कमी आई, अभी बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो कमी पूरी तरह से हम कहें कि खत्म हो गई है वो अभी उचित नहीं है, ये अध्ययन में सामने आया है, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है वाइट गोल्ड का, मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये चर्चा होती है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि अलग अलग गोल्ड की भी बात की जाती है, कहीं पिंक गोल्ड की बात की जाती है, रेड गोल्ड की बात की जाती है, तो ये वो सोना है जो कि हम जिस गोल्ड मेटल की बात करते हैं, जिस सोना धातु की बात करते हैं, वो ये नहीं है, ये मिश्रित धातु है। और वाइट गोल्ड एक अलग तरीके का, आप जैसे प्लैटिनम का, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि वो उसके दाम अलग हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी मांग काफी ज्यादा है, और बाकी जो आप अलग अलग सोना देखते हैं वो सोना जो है वो मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखें।
0: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिस्प्लेड मिक्स्ड ट्रेंड दिस वीक। Brent crude November futures rose 0.4% to settle at $104.32 per barrel. West Texas intermediate crude November futures tanked 3.8% to end at $92.41 per barrel over the week. However, oil prices eased over the last few trading sessions as markets grew hopeful of a phased truce between the US and Iran, with both sides reportedly in touch through mediators on the sidelines of the UN General Assembly meeting. Now, we read in the headline story about US rejecting Iran's 7-day proposal to reopen Strait of Hormuz. In such a scenario, Puneet, how should India be navigating the growing crude oil prices, especially if they continue to persist on a northern side?
4: So Rajesh, clearly for India the challenge is enormous, because not only do we have to contend with rising crude oil prices in international market, we have limit because we are the world's second largest importer of crude oil, so clearly we need very large supplies also. However, what geopolitical tensions are dictating to us, and particularly the latest trade tariff a threat by the US on imports from Russia, I think India has really its task cut out in a sense, because we need to import energy from Russia because there is no other large supply of energy like Russia, and therefore I think while we have we are looking at Brent crude about $100-$105, we really need to be cautious

0: and going forward need to maintain supplies also to see that they are economic in nature.
1: शिशिर, इस संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक दबाव पड़ता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो या और भी कोई अन्य आपूर्ति की जो चीज़ें हैं जो हर देश को जिसकी ज़रूरत है, दबाव पड़ता है। ऐसे में किस तरह से हम आगे आने वाला भविष्य देख रहे हैं?
2: देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि आप विविधीकरण करते हैं कि आप चलो आप एक जगह से तेल ना लेकर के आप चार जगह से और तेल लेते हैं
1: जी।
2: और हमारे लिए ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए केवल ब्रेंट का प्राइस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं इंडियन बास्केट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो स्रोत हैं वो शामिल होते हैं। तो अभी की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जो कुछ घटना चल रही है, जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसमें एक रूस का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टैरिफ ज़्यादा देना पड़े। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि जब जयशंकर साहब की रवियो साहब से बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और यूएस की ओर से, अमेरिका की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि राष्ट्रपति के पास वो विशेषाधिकार है कि किसी एक देश के प्रति यदि वो कुछ कमी या रियायत दे सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बातचीत का सार्थक नतीजा निकलेगा और हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितनी हम आशंकित हैं।
1: नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो मैम, नमस्ते सर को भी नमस्ते। मैं आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मैंने सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं 29 एज है मेरी और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है अभी, जैसे हमारी एफडी ब्रेक होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो हम किस कौन हमें गाइड करेगा, कैसे मतलब हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन बता पाएगा हमारे को अच्छी मतलब नॉलेज उसके लिए?
2: आकाश, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो शेयर बाजार ना जाएं। बाजार रातों रात आपको एक, जिसे कहते हैं ना, क्या एक आपको निवेशक नहीं बना सकता है। तो आपके लिए अभी बेहतर यह है कि अभी थोड़ा समय इंतज़ार करिए, पहले समझिए बाजार को। बहुत सारे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत हैं, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, वहाँ पे आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें। अभी के समय में मेरी सलाह है ना जाएं, बेहतर होगा।
1: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अंतर्गत ₹2,000 तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रतिशत के बजाय एक समान यानी फ्लैट MDR लागू होगा।
4: Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for a greater adoption of technology and innovation.
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए
2: धन्यवाद।
4: Thank you, gentlemen, for being with us. And before we close the headlines once again, United States rejects Iran's 7-day proposal to reopen Strait of Hormuz. Indian stock markets remains under control of bears for 7th consecutive week, and Wall Street wraps up week with notable gains. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा

0: बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और संथल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Election Commission today said that booth-level officers or BLOs will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision or SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by the Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The Commission also said that if a hearing is required, the elector may authorize any adult member of their family to appear on their behalf. SIR has already been completed in 20 states and UTs, including Bihar and West Bengal. The Commission reiterated that the order for the SIR issued for all the states and UTs with the unanimous approval of the Commission. The Commission said that any person whose name has been left out during SIR and wants to include their name can apply to the concerned electoral registration officer. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today launched the IIT Madras Unicorn Venture Fund at the IIT Madras Alumni Meet Sangam in Bengaluru today. Interacting with the audience, Ms. Sitharaman highlighted India's transformation from a fragile five economy to the world's fastest growing large economy, attributing it to structural reforms, institutional strengthening and targeted policy measures. She also released the book Cashless Nation, How UPI Changed the Nation, authored by Dr. Santhan Paul and B. Sambamurthy. The fund launched by IIT Madras in partnership with Unicorn India Ventures will provide 5 to 20 crore rupees to early stage startups. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, today laid the foundation stone for a 150 tons per day capacity e-methanol plant at Deendayal Port Authority in Kutch district. Addressing the gathering, Mr. Sonowal highlighted that the commencement of this plant will create numerous employment opportunities across the country. The 207th birth anniversary of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar is being observed across Tripura with various programs along with the rest of the country. Addressing a tribute program in Agartala today, organized by the Directorate of School Education and the Information and Cultural Affairs Department, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha described Vidyasagar as a pioneer, social reformer and beacon of humanity. Manipur Chief Minister Y.K. Singh today said that the ideas and vision of freedom fighter Lamyanta Heja Mirawat, who worked tirelessly to unite the people of different communities residing in different parts of Manipur and bring them together as one, should continue to guide the people of the state today. The 75th death anniversary of Lamyanta Irawat was observed today across the state, remembering the pioneering visionary leader, communist politician and social activist of Manipur. Shri Khemchand said that Irawat had raised his voice against the oppressive British rule and the prevailing social and political conditions from the 1930s onwards. He said that the valuable legacy left behind by the great leader should be carried forward by the present generation. The Char Dham Yatra in Uttarakhand has been suspended till tomorrow in view of adverse weather conditions. Disaster Management Secretary Vinod Kumar Suman said the decision has been taken in the interest of pilgrims' safety. Pilgrims have been advised to keep track of the weather conditions and follow the guidelines issued by the administration. Mr. Suman said the pilgrimage will resume only after the weather conditions improve. Meanwhile, heavy rainfall has been forecast at several places in Uttarakhand till tomorrow. And on to sports now. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 in Japan. The Indian men's kabaddi team clinched gold, beating Iran 40-34 at the Asian Games. The Indian women's team also edged out Iran in a tense final clash, winning the contest by a 37-34 margin. India has made a strong medal haul at the Asian Games today, adding 7 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. Now India currently placed 10th in the medal standings and its overall tally has reached 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. And that's the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: नमस्कार। एक बेटी जो कभी स्कूल की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाई, एक माँ जिसके लिए रोजमर्रा के जीवन में रसोई का धुआं एक अहम स्थान बन गया था, एक ग्रामीण महिला जिसकी मेहनत परिवार की ताकत तो थी लेकिन उसकी पहचान सिर्फ चार दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। महिलाओं की यह बेरंग तस्वीर साल 2001 साल 2002 के आसपास बहुत ज्यादा नजर आने लगी थी। उसी समय अपनी रचनात्मक सोच और दूरदर्शिता से तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने महिलाओं की इस बेरंग तस्वीर में रंग भरने की शुरुआत की। गुजरात से शुरू हुई कन्या केलावणी और शाला प्रवेश उत्सव जैसी योजनाएं आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, लखपति दीदी, सेल्फ

0: हेल्प ग्रुप और ड्रोन दीदी तक पहुंच गई। और यही नहीं रुकी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें या तीन तलाक से जुड़ा सुधार, सबकी कोशिश यही थी कि बेटियों को शिक्षा मिले और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब बेटियों और महिलाओं को बेहतर करने की सोची तो उसके पीछे की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक नारी की प्रगति से सिर्फ एक नारी का विकास नहीं होता, बल्कि एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र की तरक्की की शक्ति प्रदान होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आधारित आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के आज के एपिसोड की थीम है नारी से नारायणी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तकरीबन 25 साल पहले गुजरात में लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्थिति बेहतर नहीं थी और जो बच्चियां पढ़ने जाती भी थी स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा थे। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां के आईएएस अधिकारियों के साथ गांव के सरपंच मुखिया को लेकर गर्मी की चिलचिलाती धूप में गांव तक गए और परिवारों को बोला कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए, और स्कूल में उनका स्वागत किया गया, उनको उपहार दिए गए, उन्हें ऐसा फील कराया गया कि आप एक विशेष जगह पर आई हैं। और फिर आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 99% ड्रॉप आउट रेट कम हुए। गुजरात में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम था शाला प्रवेश उत्सव। क्या थी योजना, किस सोच के साथ शुरू हुई और क्या रहे इसके परिणाम, आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
2: गुजरात में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने और बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए हर साल शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इसके तहत राज्य के मंत्री, अधिकारी और स्थानीय प्रशासन गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल के साथ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवड़ी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहें। खास तौर पर पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान जन प्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों और उनके परिवारों से सीधे संवाद करते हैं। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने और स्कूल में दाखिले को लेकर उनकी झिझक दूर करने की कोशिश की जाती है। गुजरात के समग्र शिक्षा पोर्टल के अनुसार राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों की बड़ी संख्या मौजूद है। अगस्त 2026 तक राज्य में 40,554 सरकारी और 13,905 निजी स्कूल दर्ज हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में करीब 61,15,000 लड़के और 52,35,000 लड़कियां दर्ज हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। गुजरात के वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों की पहचान और उनके नामांकन के लिए घर घर सर्वे किया गया। इसी वर्ष 68,629 दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षाओं में नामांकन कराया गया। इनमें 2,770 बच्चे बाल वाटिका और 4,201 बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कूलों में नामांकन और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच, बुनियादी ढांचे, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और पात्र बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इसमें नामांकन और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए विशेष अभियान भी शामिल है। यानी शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की एक सामुदायिक कोशिश है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए स्कूल का पहला कदम उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम हो सकता है।
0: यही योजना आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तब्दील हुई और हमने देखा कि किस तरीके से लैंगिक अनुपात भी भारत में बेहतर होता नजर आया। सुशीला जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे सफर को आप?
3: आप जो कह रहे हैं कि जो गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से बहुत फर्क आया, ये अगर हम एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए आधुनिक भारत का, तो दो चीज कहूंगी मैं और फिर हमारी जो विशेष टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगी कि आधुनिक भारत जो हम पढ़ाते हैं जो पढ़ते हैं ये इसकी शुरुआत राजा राममोहन रॉय से हुआ था जब उनको फादर ऑफ मॉडर्न

0: इंडियन थॉट कहा जाता है, इंडियन रेनेसां, उस टाइम से ये शुरुआत हुई थी कि नारी की जो स्थिति है, जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उनके बाद जो राणा डे, फिर विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इतने सारे महारथी थे जो उन्होंने इस पे बहुत गहराई से सोच के कदम उठाए। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई थी, गांधी जी का जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अहिंसा का जो मार्ग चुना स्वतंत्रता के लिए, उससे जो है बहुत सारे परिवारों में एक तरह का कॉन्फिडेंस था कि अगर हमारी बेटियां, हमारी जो माएं हैं, अगर पब्लिक स्पेस जो कहते हैं वहां पे जाएंगे, गांधी जी हैं तो सुरक्षित है। और महिलाओं का बहुत योगदान था, और गांधी जी खुद कहते हैं उनकी माँ और साउथ अफ्रीका के जो नारी शक्ति थी उसके वजह से उनको वो समझ आई क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस, किस तरह जब एंगर और जो गुस्सा, कैसे एक नारी जो है बिना रिएक्ट करे उसको कैसे अब्सॉर्ब करके उसको कैसे चेंज करती है। तो ये सारे उन्होंने कहा, कैसे उन्होंने अपने सत्याग्रह पे इनकॉर्पोरेट किया। जब संविधान बनी, भारत ऐसा एक संविधान है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नारी को भी एक समान हक दिया गया था, हम लोगों को लड़ाई ज्यादा नहीं करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, सबको समान रूप से मिला। और खासकर एक चीज बताना चाहूंगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में उनको इक्वल पे इक्वल वर्क, जो हमें और जगह और कंट्रीज में भी नहीं मिलता। अभी भी आप अगर यूएन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतना फर्क है एक पुरुष की जो पे स्केल और एक औरत, ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिर मैं ये कहना चाहूंगी, 1970 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन का जो घोषणा किया, तब 1969 में एक कमिटी की स्थापना करने की कोशिश हुई थी जो वीना मजूमदार उन्होंने हेड करा, और उस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी। उसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे वो यही था कि हम नारी को कैसे, उनकी जो स्थिति है उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि नारी पीड़ित ही नहीं है पर उनके वजह से इतने सारे लोग भी पीड़ित है, उसमें पुरुष भी माने जाते हैं और अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग। तो ये जो ढांचा है जो बिल्कुल एक कहते हैं ना पेट्रियोकल, जो बड़ा ओप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने बताया, नारी के लिए शिक्षा, नारी के लिए एक आर्थिक सेफ्टी नेट जो बोलते हैं, ताकि वो जो कमा सकती है वो अपने हाथ में रखे डिसाइड कर सकती है। तो इस लेगेसी को एक बहुत अच्छा दिशा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये उनका एक विजन रहा है शुरू से कि हमें जो नया भारत का निर्माण करना है उसमें महिलाओं की इक्वल भागीदारी देना है। उन्होंने जब आई थिंक 2014 या 15 मुझे याद नहीं है, रेड फोर्ट से जब उन्होंने एक आजादी के पर्व में जो प्राइम मिनिस्टर की जो भाषण होती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम हर वक्त कहते हैं कि नारी की शिक्षा, नारी की स्थिति में कैसे फर्क लाए, ये तो हम ध्यान देते हैं पर हम अपने बेटों के बारे में सोचते नहीं है, उनकी जो सोच है, उनकी जो परवरिश है, उनको कैसे सिखाया जाए कि अपने घर में जो बहन है, माँ है, बाद में बीवी आएंगी, उनके प्रति कैसे समान रूप से उनको हक, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, ये जो सोच था ना, ये की थी। क्योंकि हम हर वक्त फोकस करते हैं विमेन के ऊपर और मेन जो है आदमी को सोचते हैं कि जैसे वो अपने आप सुधर जाएगा, तभी तो कहते हैं एक नारी को शिक्षा दो पूरा परिवार शिक्षित होती है, वो सही है पर सोच में जो फर्क लाना चाहिए वो बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ मोदी जी ने जब ये बात उठाई और फिर उनके जो जितने भी कार्यक्रम है और जितनी भी योजना है, ये इसी पे जो एक तरह का केंद्र बिंदु कह सकते ना, ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है उनके योगदान में।
1: जी, थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं आदि जी, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया, और तब हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वहाँ बेटियों को लेकर एक अलग सोच थी। अगर उस समय के लैंगिक अनुपात की बात करें तो 918 के आसपास पूरे राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात था, जो बाद में बढ़कर इस समय 937 पर पहुंच गया है, जो ये बताता है कि बेटियों को लेकर पिछले 25 वर्षों में उनकी दूरदर्शिता से सोच बदली है। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आप महसूस करती हैं?
2: देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है ना सिर्फ पत्रकार के तौर पर बट एक जनरल आम सिटीजन के तौर पर, वो ये आता है कि जो अप्रोच है महिलाओं को लेकर, कि जैसे पहले था कि एक वेलफेयरिस्ट अप्रोच थी कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, सशक्तिकरण का जो प्रकरण है वो हर सरकार के टाइम चला है, सबने कोशिश की है। इस सरकार में जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि एक

0: लेट डेवलपमेंट की तरफ पॉलिटिकल सोच का बदलाव, जैसा कि अभी सुशीला जी ने कहा कि एक पॉलिटिकल लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, वो सिंबोलिज्म से बदला जा सकता है। आप किस तरीके का मैसेज समाज को दे रहे हैं, महिलाओं के प्रति आप क्या सोच रख रहे हैं। गवर्नेंस का पूरा मॉडल जो है वो विमेन वेलफेयर से बदल कर विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और वो एक कॉन्टिन्यूम है। वो आप पॉलिसी में भी देख सकते हैं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, वो एक बहुत मेजरेबल आउटकम हमें अब नजर आने लगा है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो स्टैटिस्टिक्स अभी आया है और हमने देखा कि जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो पहली बार 1000 से ऊपर भी चला गया, 1020 भी हो गया, 1000 पुरुषों के प्रति 1020 महिलाएं हो गईं। तो इन इंडिकेटर्स में ये जो माइंडसेट अप्रोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बदलने की कोशिश की गई है, समाज को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी की, वो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ की, वो विकसित भारत की यात्रा में एक म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं है, वो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं। उसी तरफ हर स्कीम अगर आप उठा के देखें सरकार की, महिलाओं के प्रति जो भी स्कीम्स लागू की गई हैं उनका मोटा मोटा पर्पस ये है कि महिला को, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उनको डोल देना है कि हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग टेबल पर इक्वल भागीदारी देने का एक मकसद है। वही रिफ्लेक्ट हो रहा है सेक्स रेशो में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप स्कूली स्तर पर देखें, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट काफी कम हो गया है। जो नेशनल लेवल पर अगर आप ड्रॉप आउट रेट देखें इस वक्त शायद 1.9% है, जो काफी एनकरेजिंग है। इट्स नॉट इनफ, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ है। ये जो आपने पॉलिसीज का जिक्र किया, जैसे आपने कहा शाला प्रवेशोत्सव गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में लागू की थी मेरे ख्याल से 2003 में, और वो अब बढ़ बढ़कर उसका रिजल्ट यह हुआ है कि एक आम तौर पे पूरा का पूरा समाज ये मानने लगा है, गरीब समाज भी, कि लड़कियों को स्कूल भेजना एक रूटीन है, यू नो एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। जो पहले एक्सेप्शन था वो अब नॉर्म है, ये बदलाव है।
1: 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपने 11 वर्षों के अब तक के सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
2: किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ बेटियों को कितने अवसर मिलते हैं। बेटी का जन्म, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़े सवाल हैं। इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना, लिंग आधारित भ्रूण चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। समय के साथ यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर बेटियों के अधिकार और उनके भविष्य को लेकर जागरूकता का एक व्यापक प्रयास बना। इसमें परिवार, स्कूल, स्थानीय समुदाय और अलग अलग सरकारी विभागों की भागीदारी पर जोर दिया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के करीब 75% से बढ़कर 2025-26 में 83.4% हो गया। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बेटी का जन्म हो रहा है या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उसे पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का अवसर मिल रहा है। अब बात गुजरात की। गुजरात में बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसका एक उदाहरण है। जनवरी 2026 तक गुजरात डाक परिमंडल में बालिकाओं के नाम 16,35,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके थे। इन खातों में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा थी। उत्तर गुजरात में भी इस दिशा में विशेष अभियान चलाया गया। 2024 में क्षेत्र के 487 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया गया। इन गांवों में पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन किसी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ उसके नाम पर बचत खाता खोलना नहीं है, उसे स्कूल तक पहुंचाना, पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी चुनौतियों से बचाना और आगे चलकर कौशल तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। गुजरात में कन्या केलवड़ी और और शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियानों ने भी बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इन पहलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यापक सोच के साथ देखा जा सकता है, जहां बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर चरण को महत्व दिया जाता है। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। शिक्षा उसे अपने अधिकार समझने, बेहतर फैसले लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता देती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है, संदेश यह भी है कि बेटी को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अवसर देना है। और यही सोच आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की मजबूत नींव तैयार करती है।
1: सुशीला जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा से हम आगे बढ़े तो एक योजना जिसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी ने घरों में खाने बनाए और हमने अपने बचपन में देखा कि हमारी माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, धुआं बहुत निकलता था, आंखों से आंसू निकलने लगते थे। इस सोच को और इस समस्या को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और आज तकरीबन भारत में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना से रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनका सेहत बेहतर हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर बेहतरी देखने को मिली है और जिसे कहते हैं कि महिलाओं का समग्र विकास हुआ है। कितना बड़ा गेम चेंजर मानती हैं आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को?
3: देखिए, जो आपने कहा ना, हम सब ने देखा है अपनी माओं को, मेरे तो अपनी माँ को नहीं देखा, क्यों कहते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत
1: जी।
3: शुरू से था जो रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज में ये सब जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो जरूर था, अभी भी शायद होगा
1: जी।
3: पर परसेंटेज कम है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है एक तो बहुत विशाल देश है, समस्याएं बहुत थी, 300 साल का जो राज था अंग्रेजों सरकार का, जो कलोनियलिज्म, आप जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ लूटा गया इस देश से, तो उस सबको जो बदलने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और प्रयत्न भी होते हैं। और हिंदुस्तान में ना 10 सेंचुरी जो है 100,000 साल एक साथ जीता है, हमें ये भी मान के चलना पड़ता है। तो शहरी इलाकों में खासकर गैस चूल्हा ही देखा है हमने, मेरे परिवार, मेरे मित्रों के परिवार, हम लोगों ने। हाँ, टाइम लाइक जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश युद्ध हुआ, तब हम सब ने जैसे आप कह रहे हो चूल्हा में खाना बना के देखा हुआ है, बट रूरल इंडिया में ये नहीं था। जो फर्क जो आया है उसके वजह से वो डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। और इंक्रीजिंग एक और जो कॉन्शियसनेस देश में ही नहीं पूरा विश्व में, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कि ये जो कार्बन एमिशन है, ये चूल्हा जलाने की वजह से जो कार्बन एमिशन है उसका भी एक टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। सो यस, जो खाना बनाते हैं घरों में उसके वजह से उनका जो हेल्थ है, सुविधाएं हैं। और देखिए, घर का खाना हर वक्त कहा जाता है इट्स अ वेरी हेल्थी वन, सो द एम्फेसिस कि घर में खाना बना के टाइम जो है उसको एक अच्छी तरह यूज करिए। टाइम जो है 24 घंटा हर एक के पास होता है, उस टाइम का हम कैसे उपयोग करें? अगर चूल्हा में ही सारा टाइम निकल जाता है, कितनी सारी कहानियां पहले पढ़ते थे, एक औरत का जो टाइम है सिर्फ चूल्हा चौके में गुजरता है, अब तो वो टाइम भी बचत होती है और उस टाइम की जो सेविंग की वजह से लोग बहुत कुछ जो सीख सकते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ कि रूरल इंडिया का जो एक साइड है जो सोशल मीडिया में नजर आती है कि इनके पास टाइम की वजह से ये कितने अपने जो हुनर है, अपनी जो कला है, वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बना के फैलाती हैं। तो ये जो टाइम की बचत से ये सब जो कर पाते हैं, ये भी तो एक बहुत गेम चेंजर है कि खाना भी बन जाता है सुविधा के अनुसार, कार्बन एमिशन इन अ वे लेस, एंड एट द सेम टाइम इतना टाइम मिलता है फॉर देम टू लिव अ गुड लाइफ। बिकॉज आधुनिक समाज का जो एक बहुत खास बात है, हमारे पास जो है सुविधा है जो जिससे हम एक अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं, पर उस सुविधा को सबके लिए देना ये मोर चैलेंजिंग है। आई थिंक ये जो प्रयास रहा है इस सरकार का कि इतने सारे लोगों को जितने मैक्सिमम लोगों को दे सकते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। इट्स नॉट कन्फाइंड टू स्मॉल सेगमेंट्स, द प्रिविलेज्ड वन, इट इज फॉर एज लार्ज अ सेगमेंट। तो इसमें आप नॉट वेरी वेल ऑफ उनको भी जोड़ देते हैं, ये इन अ वे इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट।
1: जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अदिति जी, एक और योजना जिसने महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। जब भी हम बात स्टार्टअप की करते हैं, जब भी बात हम कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की, पुरुषों का जिक्र होता है, लेकिन लखपति दीदी जैसी जो योजनाएं हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं को प्रेरित किया कि आप भी हर महीने 1,00,000 रुपए तक कमा सकती हैं और इनका आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि महिलाओं को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की अब इस विकसित भारत की यात्रा में जरूरत नहीं है। लखपति दीदी को कैसे देखती हैं आप?
0: देखिए लखपति दीदी प्रोग्राम जो है वो एक बहुत सारे बाकी प्रोग्राम्स के नींव पर रखा गया है।

0: फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे जो जनधन अकाउंट्स खोले गए पहले, हम उसको जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं, जनधन अकाउंट्स, आधार आइडेंटिफिकेशन और मोबाइल एक्सेस। ये तीन चीजें जब महिलाओं के हाथ में दी गई, उसका पर्पस ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, वो होता है कि आपको बैंकिंग और क्रेडिट का एक्सेस मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में करीब 60 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं और जो बैंकिंग की सुविधा है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और इन 60 करोड़ में से, अगर आंकड़े मैं सही कह रही हूँ, मेरी याददाश्त यही बताती है कि करीब 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम पे हैं। आपने सबसे पहले उनके अकाउंट्स खोल दिए, उसके बाद आपने मुद्रा योजना लागू की। मुद्रा योजना के माध्यम से आपने इजी क्रेडिट महिलाओं को देना शुरू किया, उनके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, उसमें पैसे आने लगे, महिलाओं को क्रेडिट मिलने लगा छोटे छोटे कामों के लिए। तो महिलाएं अपनी अपनी जगह कोई रेडी लगा सकती है, कोई अपनी दुकान चला सकती है, कोई खाना बना सकती है, टिफिन की सर्विस शुरू कर सकती है, छोटा छोटा क्रेडिट उनके हाथ में आने लगा। सशक्तिकरण का ये जो सिलसिला है ये वहां से शुरू हुआ। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि जब महिलाएं एक लेवल पर आकर सेटल हो गई, तो आप उनको और फिलिप कैसे देंगे? उस फिलिप के लिए अब ये लखपति दीदी योजना का इम्पोर्टेंस है। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये संगठित तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है कि एक साल में हर महिला 1,00,000 रुपए कमाने का सामर्थ्य रखे। उसके लिए क्या किया गया है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स इवॉल्व किए गए हैं। पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूरा नेशनल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, एक पूरा मूवमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज तरीके से महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, आज की डेट में 95,00,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भारत में हैं और इन 95,00,000 ग्रुप्स में करीब 10 करोड़ महिलाएं मेंबर्स हैं। तो आप संगठित तरीके से SHGs के माध्यम से जुड़ चुके हैं। इन SHGs को अब लखपति दीदी प्रोग्राम में क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम ले लीजिए। वो प्रोग्राम क्या है? उस प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2023 से 2026 तक की ये स्कीम है जो बढ़ाई जाएगी। आई एम श्योर 1200 करोड़ इसका आउटले रखा गया। 15,000 SHGs को आप ड्रोन सप्लाई करेंगे। ड्रोन किस लिए सप्लाई करेंगे? कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे SHGs की महिलाओं को, कुछ चोजन महिलाओं को जिनका उस चीज में इंटरेस्ट होगा। हर कोई महिला का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो ड्रोन के माध्यम से आप उनको ये सिखाएंगे कि फार्मिंग की प्रैक्टिसेस, आप एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स पर पेस्टिसाइड्स कैसे स्प्रे कर सकते हैं, आप सीड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो ये एक माध्यम बन जाता है सशक्तिकरण का और इससे पैसा बनते बनते फिर वो लखपति दीदी के प्रोग्राम में ऐड होता रहता है। जैसे पहले लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत मुझे लगता है 3 करोड़ महिलाओं को रीच करने का टारगेट था, जो अब बढ़ा के शायद 6 करोड़ या 5 करोड़ कर दिया गया है। बहुत एम्बिशियस टारगेट है पर पुराने प्रोग्राम्स ने दिखाया है कि ये अचीवेबल है।
1: जी हाँ, अदिति जी, एक और योजना की बड़ी चर्चा रही वो नीतिगत सुधार देखने को हमें मिला। मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत 3 तलाक का जो सुधार हुआ उसमें एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। आंकड़े बताते हैं कि 80% तक तलाक की दर कम हो गई। एक सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो ये निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री की जो इसके पीछे की सोच थी, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आपको नजर आया?
0: देखिए, मुस्लिम महिलाओं की जो आम तौर की जिंदगी में इस लॉ का बहुत बड़ा महत्व है और ये बहुत ज्यादा, अगर ओपनली वो बोल भी नहीं पाती होंगी तो भी उनकी जिंदगी में जो इसका असर है वो आई एम श्योर हर लेवल पर नजर आता होगा। क्योंकि इस लॉ से ये हुआ है कि एक तो डिग्निटी मैरिज में बरकरार हुई है, एक एश्योरेंस मिला है मुस्लिम महिला को कि उसके साथ जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम में ये प्रैक्टिसेस मान्य हैं, और बहुत सारी डिस्टॉर्शंस रिलीजन के माध्यम से आ जाती हैं आमतौर के डिबेट्स में, जिसकी वजह से ये एक आम चर्चा में हो गया था कि ये चलता है। उस चलता है एटीट्यूड को तोड़ने के लिए जो ये 3 तलाक के कानून को लाया गया, क्रिमिनलाइज किया गया इस प्रैक्टिस को। हम सबको पता है कि शाह बानो का केस कितना फेमस हुआ था और फिर उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एलमनी का जो डिसीजन, इतने जंदोजहद के बाद शाह बानो ने एक एलमनी का डिसीजन जीता था सुप्रीम कोर्ट से और फिर उस वक्त की सरकार ने उसको ओवरटर्न कर दिया था लॉ लाकर। तो वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस

0: क्या होगी, उस वक्त की राजनीतिक इम्पेरेटिव्स क्या होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी और कहा था कि आने वाली सरकारें इस चीज को देखेंगी। तो ये जो मुस्लिम महिला की आपने बात की, ये एक तरीके से पर्सनल लॉ की ही रिफॉर्म की तरफ कवायद है कि आप किसी भी महिला को, वो किसी भी रिलीजन में हो, इस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते। और अगर कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट को अपनी साख दिखानी होगी। गवर्नमेंट इसीलिए है कि उसमें एक पावर है चीजों को बदलने की, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है जिससे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का एक मौका मिला है।
1: सुशीला जी, चर्चा को अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो घर की चार दीवारी में तो महिलाएं काफी समय से सक्रिय रहीं, लेकिन नेतृत्व के मेज तक उनको लाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लाना। हमने देखा कि जब भारत में G20 की अध्यक्षता की भारत में और नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ, वहां पर महिला नेतृत्व को प्रमुखता दी गई। साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरह फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान से देखें या अंतरिक्ष तक देखें या फिर खेल के मैदान में देखें, महिलाएं न सिर्फ आगे आ रही हैं बल्कि निर्णायक स्थिति में भी पहुंच रही हैं। ये परिवर्तन जो पिछले 25 वर्षों में हुए हैं और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की एक अहम सोच रही है, कैसे देखती हैं आप?
2: मैं इसको अगर एक रेफरेंस दूंगी, 1968 में गुरनल मुरल की एक किताब आई थी, एशियन ड्रामा। उसमें मुरल साहब लिखते हैं, इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि पूरा साउथ एशिया का एक सर्वे था, हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि इट इज अ कंट्री वेयर इट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, मिड 60s। बीच में कहीं गायब हो गई, तो शुरुआत जो था, कहीं जो गायब हो गई थी उसको पिकअप किया गया, और कि वुमेन शुड बी फाउंड इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन प्लेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पीछे रह गया, उसकी एनालिसिस करिए और उसको रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए। और खासकर हम जब नारीवाद पढ़ाते हैं, हर वक्त कहते हैं कि नारीवाद जो है ना, एक मिडिल क्लास मूवमेंट रह गया। ये सिमोन द बोअर का क्रिटिसिज्म है, सिर्फ मध्यम वर्ग के जो विमेन है उन्हीं के बारे में चर्चा है, उन्हीं की कंसर्न्स है, इसलिए आम महिला जो है उसके साथ जुड़ती नहीं है, क्योंकि विमेन एज अ कैटेगरी वो जो है ना ऐसा है ही नहीं। उसमें जेंडर आप देखोगे इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ आपको क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन ये सब भी देख के चलना पड़ता है। मेरा जो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रोग्राम्स, उसकी जो विजन ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना ये प्रोग्राम्स एक शिक्षित, हाईली वेल प्लेस्ड वुमेन अपील करती हैं, उसी तरह एक ऑर्डिनरी वुमेन को भी, जब तक आप उस तरह का एक ब्रॉड स्वीप नहीं रखोगे, कैच ऑल जो बोलते हैं, तब तक जो है ना सारे वुमेन जुड़ेंगे नहीं। जो मध्यम वर्ग की वुमेन के जो कंसर्न्स, स्त्री के जो कंसर्न है और आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके जो कंसर्न्स है, वो बहुत हटके होते हैं। कहने को दोनों महिला हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ, पर उनके जो कंसर्न्स है बहुत, उनकी जो फिक्र होती है वो बहुत अलग होती है। आपका जो लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप इन दोनों को ब्रिज कैसे करें। अगेन ये जो एम्फोसिस है, ऑर्डिनरी लोगों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनकी जो समस्याएं, उनको आप कैसे टैकल करें, और इससे जो है बाकी लोग भी जो फायदा उठा सकते हैं। ये जो बॉटम अप टू टॉप जा रहा है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप जो कह रहे हो ना कि इतने सारे महिलाएं देखे, और ये ऑर्डिनरी महिलाएं, ये दे आर नॉट फ्रॉम वेरी यू नो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, दीज आर ऑर्डिनरी पीपल हुम वी कैन सी इन द स्ट्रीट्स, राइट? आई मीन दे हैव कम अप फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स बट मेड इट टू द टॉप बिकॉज दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटीज। दिस इज व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ अ गुड सोसाइटी, अ इक्वल सोसाइटी।
1: अदिति जी, तो महिला नेतृत्व की जो बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को अब नेतृत्व क्षमता में आगे आना चाहिए, बतौर पत्रकार आप किस तरीके से बदलाव महसूस करती हैं?
0: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव का एक मैसेजिंग है वो यही है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्लास और ऑफ सिटीजन्स के लिए, चाहे वो पुरुष हो या कोई भी हो। तो अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% आरक्षण की बात हो रही है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ये एक मीनिंगफुल स्टेप फॉरवर्ड है महिलाओं को लीडरशिप रोल में एक इम्पॉर्टेंट स्थान देने के लिए। कहने में आसान लगता है लेकिन डिसीजन मेकिंग में जब एक्चुअल रोल देने की बात आती है वो बहुत अलग और एक बहुत डिफरेंट डिबेट हो जाती है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहता है कि हम इक्वल पार्टिसिपेशन महिलाओं को देना चाहते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जब पहली बार आरक्षण आया था तो ऐसे ही शुरू हुआ था, और आज की डेट में आप देखिए कितनी सारी महिला नेतृत्व

0: नेत्रियाँ हमारी लोकल बॉडीज में हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में हैं, पंचायत्स में हैं, तो लीडरशिप डेवलप होने में भी वक्त लगता है। आप आज लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे तो कल वो उभर के आएंगी, ये लॉजिक देना कि महिलाएं कहाँ से मिलेंगी, उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टीज कहाँ से ढूंढेंगी, ये बहुत लेम लॉजिक है। और ये हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी जब ये लॉ पास होगा, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना अपने आप में महिलाओं की सशक्तिकरण का एक सिग्नल था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के पतियों को वहाँ मारा गया था पहलगाम में। दूसरी बात, बहुत देर तक सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देश के बिहाफ पे ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट्स देने के लिए जो बुलाया गया, जो स्टेज दिया गया, वो महिलाओं के प्रति एक विश्वास का सिग्नल था, एक बहुत ही सेल्फ एश्योर्ड गवर्नमेंट का सिग्नल था कि हम तैयार हैं महिलाओं की नेतृत्व को एक्सेप्ट और स्वीकार करने के लिए।
1: जी हाँ, पिछले 25 वर्षों में अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बदला, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में अगर कहें तो महिलाओं को जो उन्होंने एक बदलाव दिया वो था उनके अंदर का आत्मविश्वास कि आप जो करना चाहती हैं आप कर सकती हैं और देश में उसके लिए माहौल है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, अगर आप खेल के मैदान में भारत का तिरंगा लहराना चाहती हैं, आप फाइटर जेट उड़ाना चाहती हैं, या फिर आप कुछ और भी करना चाहती हैं, तो आपके लिए आपकी जो सीमा है वो आकाश ही है। और इन 25 वर्षों में हमने बहुत सारे बदलाव देखे और वो बदलाव भारत को एक नया भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे लेकर जा रहा है। प्रोफेसर सुशीला जी और अदिति जी दोनों कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रही थी शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को ISINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऑनलाइन की जाएगी। यदि सुनवाई आवश्यक हो तो मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत

0: कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि एसआईआर के दौरान जिनका नाम छूट गया है वे अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो वे संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नामांकन के लिए तत्काल विशेष अभियान शुरू करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पर्याप्त संख्या में सहायता केंद्र स्थापित करेंगे और रात्रि आश्रयों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और घरों के लिए विशेष शिविर आयोजित करेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध के बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ATS वाहन फिटनेस जांच व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: बुराड़ी स्थित इस 5 लेन वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की प्रतिवर्ष 1,00,000 वाहनों की फिटनेस जांच करने की क्षमता है। बुराड़ी ATS में 40,000 भारी मोटर वाहनों और 60,000 हल्के मोटर वाहनों की वार्षिक जांच की जा सकेगी। यहां वाहनों के फिटनेस का परीक्षण पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें ब्रेक दक्षता, सस्पेंशन प्रदर्शन, हेडलाइट की स्थिति, साइड स्लिप, उत्सर्जन स्तर और वाहनों के निचले हिस्से की जांच सहित विभिन्न मानकों का परीक्षण किया जाएगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह 5 लेन वाला आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन वाहनों की फिटनेस जांच को वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही फिटनेस, सटीक जांच और बेहतर निगरानी से प्रदूषण के खिलाफ मजबूत प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन विधानसभा से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पंजाब डेयरी मुखर्जी पार्क से संत नगर एक्सटेंशन तक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सुभाष नगर नाले से होकर गुजरने वाली सड़क की स्थिति पिछले 10 से 15 सालों से बेहद बदहाल थी।
3: ये बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि हमें सड़कों के ऊपर से तारों को भी हटाना है। ये तारों का जंजाल इस इलाके में फंसा हुआ था जिसके कारण सुभाष नगर ड्रेन के साथ साथ लोगों को चलने में दिक्कत आती थी, जगह जगह ट्रांसफार्मर थे, सड़क इतनी छोटी हो चुकी थी। अभी सारी की सारी जो आप तारें देख रहे हैं ओवरहेड, इन सबको खत्म किया जा रहा है। 300 करोड़ के यहाँ पे आज काम चल रहे हैं जिनके कारण इस इलाके के लोगों के पास साफ पानी, नई सीवेज की लाइनें, नई सड़कें, नई लाइटें और सारे कूड़ेदान को हटाने का काम किया गया।
1: श्री सिरसा ने कहा है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को जाम से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में उद्यम संवाद 2026 का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में MSME, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, उद्योग संघों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर सरकारी सहायता और विकास, नवाचार तथा व्यवसाय विस्तार के अवसरों पर विचार विमर्श किया।
4: इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जहां उद्यमी को केवल बिजनेस आइडिया और मॉडल तय करना हो और सरकार हर चरण में उसका सहयोग करे।
3: हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम उनके लिए एक एसेट बने, हम उनकी सपोर्ट इस तरह से करें जैसे किसी प्राइवेट आदमी को उम्मीद होती है कि मैं अगर दरवाजा खड़काऊंगा मुझे सर्विस मिलेगी। दिल्ली सरकार अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रही है। दिल्ली के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, हम जगह जगह पे वहाँ पे बिजनेस सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स लोग अपने रख पाए सामने एग्जीबिशन में और बायर आकर देख पाए, ये कंसेप्ट ला रहे हैं।
4: एक दिवसीय उद्यम संवाद 2026 में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम तथा निर्यात संबंधी योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा स्टार्टअप योजनाओं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। सकलेन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: दिल्ली

0: नगर निगम MCD का खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान जारी है। निगम ने बताया कि आज चलाए गए अभियान में 15 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई, जबकि 6 संपत्तियों को भी सील किया गया। निगम के अनुसार भवन निर्माण संबंधी निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन मामले में 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। निगम ने कहा कि अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम के पूर्वी जोन ने आज राजधानी एनक्लेव पार्क क्षेत्र में मेगा स्वच्छता अभियान तथा गुजरात विहार से करकरी मोड़ तक विशेष रोड डस्ट क्लीनिंग ड्राइव चलाया। निगम ने बताया कि इस मेगा अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कचरे और मलबे के निस्तारण तथा सड़क किनारे जमा धूल को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। निगम के अनुसार अभियान के तहत लगभग 8 टन मलबा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और रोड डस्ट हटाया गया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समितियां संबंधित त्योहारों के लिए स्थानों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के साथ साथ आयोजन स्थलों पर आवश्यक नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, बिजली, चिकित्सा तथा अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी में इन प्रमुख धार्मिक पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं और आयोजन समितियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पर्वों से लाखों लोगों की श्रद्धा और भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता के साथ अपने पर्व मना सकें और उन्हें आयोजन पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है ताकि धार्मिक आयोजनों में सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सौहार्द का वातावरण बना रहे। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एशिया वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वस्थ और अधिक सक्रिय जीवन के निर्माण में फिजियोथेरेपी के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में फिजियोथेरेपी केवल एक पेशा मात्र नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण उपचारात्मक इलाजों में से एक है।
2: कोई भी इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन केयर के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो पाता है और फिटनेस सिर्फ सर्जरी नहीं मांगती, फिटनेस प्रिवेंटिव केयर मांगती। फिटनेस उन सभी थेरेपीज को चाहती है जिसके कारण से आप एक हेल्दी लाइफ जी सके। और आज की डेट में मैं मानती हूँ कि फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसकी जरूरत मुझे, आपको, हम सबको अपने इस पूरा डे केयर में जरूरत पड़ती है।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत और चिली भले ही दुनिया के दो अलग अलग छोर पर स्थित हों, लेकिन दोनों देशों की आत्मा, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं में गहरा जुड़ाव है। उन्होंने चिली की राजधानी सैंटियागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और चिली के बीच संबंधों की वास्तविक शक्ति दोनों देशों के लोगों के बीच बने विश्वास, आत्मीयता और मित्रता में निहित है। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय समुदाय केवल भारत से जुड़े लोगों का समूह नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in को लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम

0: प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तर्जिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वाश में जोशना चन्नप्पा और वेलावलन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शीमार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक के बाद लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ

0: नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केरलम कांग्रेस ने माना है कि एसआईआर उनकी जीत का एक कारण था, क्योंकि इस प्रक्रिया से उन फर्जी मतदाताओं के नाम हटा दिए गए जिन्होंने अवैध रूप से पंजीकरण कराया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स के बढ़ते योगदान का जिक्र किया और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों को सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि तक पहुंचाने का आह्वान किया। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ आज कच्छ जिले के दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ई मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से देश भर में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक वर्षों से समुद्री क्षेत्र में गुजरात की ऐतिहासिक भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The Election Commission today said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The BJP has condemned the allegations levelled by opposition parties, particularly the Congress, against the Election Commission on SIR as extremely unfortunate. Addressing a press conference in New Delhi today, senior BJP leader Ravishankar Prasad said, "The Election Commission has issued a press note stating that all decisions related to the Special Intensive Revision, SIR, were taken with the consent of the Chief Election Commissioner and both election commissioners." Mr. Prasad welcomed the statement issued by the Election Commission. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah inaugurated several developmental initiatives under the auspices of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundara near Kollam in Kerala, aimed at ensuring women's participation in the cooperative sector and strengthening women empowerment. The minister inaugurated the commercial distribution of quality Bharat Atta and Bharat Rice at subsidized rates, distributed free mini seed kits

0: to women farmers in connection with the International Year of Women Farmer and launched the sale of onions at subsidized price. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today inaugurated the country's first Victim Rights Centre in Patna. The first of its kind Victim Rights Centre in the country is established on the premises of the Bihar State Legal Services Authority. The centre will provide legal rights and essential assistance under one roof to victims of various crimes, including invisible victims.
1: Address is one important barrier by helping a person navigate entitlements that already exist. But there is another barrier that arises even earlier. A person may not even know where to run, where to turn, or the justice system may simply not reach them. The initiative we have launched today seek to address that wider gap. They take justice closer to people who too often struggle to access to it.
0: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister S. Jayashankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly, UNGA, in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation. A United Nations that delivers for all. The General Assembly brings together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states who will outline their priorities and positions on major international issues. The Char Dham Yatra in Uttarakhand has been suspended till tomorrow in view of adverse weather conditions. Disaster Management Secretary Vinod Kumar Suman said the decision has been taken in the interest of pilgrim safety. Pilgrims have been advised to keep track of the weather conditions and follow the guidelines issued by the administration. India has made a strong medal haul at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 in Japan today, adding 7 medals across kabaddi, squash, athletics and shooting. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals. The Indian men's kabaddi team clinched gold, beating Iran 40-34 in the final. The Indian women's team also edged out Iran in a tense final clash, winning the contest by a 37-34 margin. And that is the end of this news bulletin.
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूँ यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूँ?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: रात की खामोशी, इन्हीं सुरों से मिलकर बनते हैं राग, और राग सिर्फ शास्त्रीय संगीत की किताबों में बंद कुछ नाम नहीं है। इनकी झलक हम पाते हैं फिल्मी गीतों में, कभी प्रेम बनकर, कभी विरह, कभी भक्ति, तो कभी सिर्फ एक खूबसूरत एहसास बनकर। तो आज हम चलेंगे रागों की मधुर दुनिया में, जानेंगे उनके स्वरों की कहानी, उनका समय, भाव, खासियत और सुनेंगे रागों से सजे कुछ यादगार फिल्मी गीत। कभी भैरव की गंभीर

रिश्ता, कभी बाहर की मस्ती, कभी बिहार की मिठास, कभी बागेश्वरी की रात। हर राग की अपनी एक कहानी है और उन कहानियों को सुरों में सुनाने का नाम है मधुरिमा, जिसे लिए आपके साथ हूँ मैं नूपुर। तो आइए आज की रात पहचानते हैं एक राग को उसके सुरों से, उसके भाव से। पहुंच रहा है आप तक ये गीत, सुनिए। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से आवाजें सुमन कल्याणपुर और मुकेश की, संगीत एसटी परमन जी का।

0: ये गीत हमने छेड़ा और बात करेंगे राग कलावती की आज मधुरिमा में, मगर पहले कुछ जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा दे उसके बाद।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
8: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भर

0: देकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
0: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: आकाशवाणी FM गोल्ड प्रोग्राम मधुरिमा। राग कलावती हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत मधुर और लोकप्रिय आधुनिक राग है। थाट खमाज है इसका और जाती है औड़व औड़व। वर्जित स्वर ऋषभ यानी रे और मध्यम यानी म। स्वर गंधार, धैवत, शुद्ध तथा निषाद नी कोमल प्रयोग होता है और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। वादी स्वर है ग और संवादी स्वर ध। और इसे गाने बजाने का समय है रात का दूसरा प्रहर या कि कह लीजिए मध्य रात्रि। तो अब इतनी बात इस राग के बारे में हो गई तो बनता है कि एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनवाया जाए जिसका संगीत राग कलावती को आधार मानकर रचा गया। तो ऐसा ही गीत आप तक पहुंचा रही हूं फिल्म चित्रलेखा से। रोशन जी का संगीत साहिल उद्यानवी के लिखे बोल और गाया है आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने। फिल्म चित्रलेखा से आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

रात के पहर में कुछ राग ऐसे होते हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा स्वरों के मोहताज नहीं होते। राग कलावती भी ऐसा ही एक राग है जो बहुत ही कम स्वरों से अपनी एक पूरी दुनिया रच देता है। इसकी प्रकृति में खास सुकून है, ना बहुत गंभीर ना बहुत चंचल, बल्कि ऐसा एहसास जैसे शहर की रोशनियों के बीच ना थोड़ी देर के लिए रात जो है वो खामोश हो गई हो। इस राग की स्वर लहरियां मन में एक साफ उजला और मधुर भाव जगाती हैं और शायद इसीलिए कलावती को सुनते हुए लगता है रात जितनी गहरी होती जा रही है सुर उतने ही साफ होते जा रहे हैं। यही है राग कलावती। पहुंच रहा है आप तक फिल्म स्वदेश से ये गीत। राग कलावती को आधार मानकर इसका संगीत रचा संगीतकार A.R. रहमान जी ने। गीतकार जावेद अख्तर और गायक कलाकार उदित नारायण, मास्टर विघ्नेश, बेबी पूजा और कुछ और बच्चे। और आज मधुरिमा की आखिरी प्रस्तुति आप तक पहुंच रही है। नूपुर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं सिद्धार्थ सिंह अपने को होस्ट प्रशांत कुमार के साथ आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
1: नमस्कार सिद्धार्थ, एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
0: तो प्रशांत, शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
1: भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर जीता स्वर्ण पदक।
0: एथलेटिक्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने पुरुष मैराथन में रजत और प्राची ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक देश के नाम किया।
1: निशानेबाजी में महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्रीपी टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने जीता है रजत पदक।
0: स्क्वैश में जोशना सेंथिल कुमार की जोड़ी ने जीता कांस्य पदक। अनाहत सिंह और अभय सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई।
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
0: और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एकदिवसीय मुकाबला कल।

0: जी हाँ दोस्तों, खेल खबरों में सबसे पहले एशियाई खेलों की बात करते हैं, जहां आज का दिन भारत के लिए बहुत अहम रहा।
1: बिल्कुल अहम रहा सिद्धार्थ। भारतीय महिला और पुरुष टीम दोनों ने कबड्डी में परचम लहराए हैं। एशियाई खेलों में आज भारतीय

0: पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोनों ही टीम ने फाइनल में ईरान को हराया। सुनते हैं सर फिरोजी की ये रिपोर्ट।
1: There it is. India take gold and it's back-to-back goals for Team India in the women's kabaddi. India bagged the third gold of the games and in an unbelievable contest, in an exceptional match versus Iran, it is India's girls that deliver gold once again. India win gold at the Asian Games back to back. India have now won 6 of their 7 encounters versus them. They have won every gold medal match versus Iran. And India have added a 4th gold at Aichi Nagoya 2026, courtesy of the men's kabaddi team in a blockbuster clash.
2: सुनील कुमार की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले की शुरुआत के साथ ही भारत और ईरान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। भारतीय टीम ने मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए 10-8 की बढ़त हासिल की। अर्जुन देशवाल की एक के बाद एक शानदार रेड के चलते भारतीय टीम अपनी बढ़त को 12-19 करने में सफल रही। दूसरे हाफ में भी भारत और ईरान के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भारतीय टीम ने ईरान को बैकफुट पर ढकेलते हुए 34-27 की अहम बढ़त बना ली। भारत की ओर से राहुल ने मैच के अंतिम क्षणों में शानदार टैकल करते हुए बढ़त को 36-29 तक पहुंचाया। भारत ने अपना दबदबा जारी रखते हुए खिताबी मुकाबले को 40-34 से अपने नाम किया। इससे पहले महिला कबड्डी टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। फाइनल में देश की बेटियों ने ईरान को कड़े मुकाबले में 37-34 से शिकस्त दी। पूरे टूर्नामेंट में भारत की ओर से संजू देवी ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम में पूजा राजरानी, सोनाली विष्णु शिंगटे, पुष्पा भावना देवी, रितु संजू देवी, रितु नेगी, मनीषा कुमारी, पिंकी रॉय, ज्योति और निकिता शामिल थी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
3: जी हाँ, अगर टीम के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पुरुष कबड्डी की हम बात करें तो 1990 से 2026 तक खेले गए एशियाई खेलों के 10 इवेंट में भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने 9 बार गोल्ड जीता है। सिर्फ 2018 में भारतीय पुरुष टीम गोल्ड जीतने से चूक गई थी, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है। और आज तो प्रशांत, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने चूंकि हमारे लिए गोल्ड जीता है तो उनके लिए ये गीत तो बनता है।

0: और सिद्धार्थ हम श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में भी भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को ही हराकर चैंपियन बनी थी, और वहीं महिला टीम की अगर बात करें तो हांगझोउ 2023 एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। और अब बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं सिद्धार्थ।
1: जी हाँ बिल्कुल, दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के शॉट पुट फाइनल में रजत पदक अपने नाम किया। हालांकि तजिंदर पाल लगातार तीसरी बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक से चूक गए। 2018 जकार्ता और 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले तूर ने 20.06 मीटर के थ्रो के साथ मजबूत शुरुआत की और अपने दूसरे प्रयास में 20.26 मीटर का थ्रो कर मेडल की दौड़ में बने रहे।
0: इसके बाद अपने तीसरे प्रयास में 19.77 मीटर और चौथे प्रयास में 19.71 मीटर का थ्रो किया। तूर ने अपने पांचवें थ्रो में 20.64 मीटर का बेहतरीन प्रदर्शन किया। तूर का छठा और अंतिम प्रयास फॉल करा दिया गया, जिससे प्रतियोगिता में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20.64 मीटर ही रहा। इसके साथ ही उन्होंने एक और पदक देश के नाम कर दिया है सिद्धार्थ।
1: जी हाँ, आज का दिन तजिंदर पाल सिंह तूर के नाम रहा और हम सिर्फ यही कह सकते हैं उनके लिए

0: जी हाँ बिल्कुल, शाबाशी का काम तो किया ही है और अब हम नजर डालते हैं मैराथन पर।
1: मैराथन में भी आज कई पदक आए हैं सिद्धार्थ। भारत के सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में रजत पदक देश

0: बरवाल शुरुआती स्टेज में लीडिंग ग्रुप में मजबूती से बने रहे, फिर जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी उन्होंने सबसे आगे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आधे रास्ते तक बरवाल पहले ही दूसरे स्थान पर थे, इसके बाद जब रेस आगे बढ़ने लगी तो मेडल की दौड़ में बने रहे और पूरा जो अंतिम जो मुकाबला हुआ उसमें वो दूसरे स्थान पर नजर आए।
1: और उधर एथलेटिक्स में अगर हम बात करें तो प्राची चौधरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक देश के नाम किया है। उन्होंने 53.21 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: जी हाँ, महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में बहरीन की सालवा इन्नासेर ने स्वर्ण, वहीं ईरान की जहरा जारी मनुजान ने रजत पदक जीता। इसी स्पर्धा में भारत की किरण ने पांचवा स्थान हासिल किया। लेकिन जिस तरह से प्राची चौधरी ने आज जो हमें मेडल जिताया है, उनके लिए हम यही कहेंगे। चकरी।

0: जी हाँ प्रशांत, जो मेडल का सिलसिला है वो
1: रुक ही नहीं रहा है,
0: क्योंकि अगले जिस स्पर्धा पे हम नजर डालने वाले हैं, जिस खेल पर नजर डालने हैं वाले हैं, वो है शूटिंग यानी निशानेबाजी।
1: निशानेबाजी में भी सिद्धार्थ, भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, कोचुल मक्कल और आशी चौकसी ने एशियन गेम्स में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में रजत पदक जीत लिया है।

0: जी हाँ, तीनों ने क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 1763 अंक हासिल किए और जिस तरह से आज भारतीय तिकड़ी पूरे क्वालिफिकेशन में मेडल की दौड़ में बनी रही और जिस तरह से नीनिंग प्रोन और स्टैंडिंग पोजीशन में उनके स्कोर ने एक मजबूत टीम टोटल बनाया, वो वाकई में काबिले तारीफ है।
1: जी सिद्धार्थ, और हम आगे बढ़ते हैं और स्क्वाश पे भी बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2026 में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार ने स्क्वाश में कांस्य पदक जीत लिया। हालांकि भारतीय जोड़ी को सेमीफाइनल में हांगकांग चीन की जोड़ी ली काई और तांग मिंग होंग से हार का सामना करना पड़ा।
0: जी हाँ, एक बेहद रोमांचक और करीबी मुकाबले में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में 1-2 से हार गई। हार के साथ उनका फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। तीसरे निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी 10-8 से आगे थी और उसके पास मैच जीतने के 3 मौके थे। हालांकि वे इन मौकों का फायदा नहीं उठा सके। दबाव भरे क्षणों में जोशना का एक शॉट बाहर चला गया जिससे वे निर्णायक गेम से हार गए। उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन ये कोई कम बात नहीं है जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने मेडल्स जीता है। चिनप्पा का 6th एशियन गेम्स मेडल है
1: और इससे पहले ये अनुभवी खिलाड़ी 3 कांस्य और 2 रजत पदक जीत चुकी हैं। हालांकि उनके मेडल कलेक्शन में अभी भी इस इवेंट का गोल्ड मेडल शामिल नहीं हो पाया है। चिनप्पा और सेंथिल कुमार ने कल क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस की जेमिका अरिबाडो और डेविड पेलिनो को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और तभी भारत के लिए मेडल पक्का हो गया था।
0: और प्रशांत, एक अच्छी खबर और है। अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस जीत के साथ ही अनाहत ने एशियन गेम्स 2026 के महिला सिंगल्स स्क्वैश फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं।
1: उधर अगर पुरुषों की भी बात करें तो वहां से भी सिद्धार्थ अच्छी खबर आ रही है। अभय सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को 3-0 से हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है।
0: और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में जापान को 2-0 से हराया।
1: ये इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की लगातार सिद्धार्थ 4th जीत है। कावासाकी जुको हॉकी स्टेडियम में लगातार बारिश के बीच खेले गए इस मैच में जापान ने भारत को कड़ी टक्कर दी। हालांकि अभिषेक और कप्तान हरमनप्रीत सिंह के गोल मौजूदा चैंपियन को प्रतियोगिता के अंतिम 4 चरण में पहुंचाने के लिए काफी थे। भारतीय टीम पुल ए के अपने आखिरी मुकाबले में सोमवार को बांग्लादेश से भिड़ेगी।
0: जी हाँ, और यहाँ पे ये भी बता दें कि जापान के खिलाफ ये मैच भारतीय डिफेंडर संजय के लिए एक यादगार पल था जिन्होंने अपना 100वां सीनियर इंटरनेशनल मैच खेला।

0: मैच तेज गति से शुरू हुआ और दोनों टीम अटैक करने की कोशिश करती नजर आई। 15वें मिनट में अभिषेक ने गोलकीपर को छकाते हुए गेंद को गोल में डाला और पहले क्वार्टर के आखिर में भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। 40वें मिनट में हरमनप्रीत ने फ्लिक मारा जिससे गोलकीपर को कोई भी मौका नहीं मिला और भारत 2-0 से आगे हो गया।
1: बिल्कुल, तब सबकी नजरें सेमीफाइनल मुकाबले पर लगी रहेंगी। प्रिया घांगस ने आज महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में साउथ कोरिया की दो बार की विश्व चैंपियन ओह योनजी को 5-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। प्रिया का सामना अब सोमवार को क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान की मिजगेना समादोवा से होगा।
0: इससे पहले कपिल ने पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में ईरान के सैम अस्ताकी को 5-0 से हराया। अब कपिल सोमवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साउथ कोरिया के किम गिचे का सामना करेंगे।
1: और अगर बैडमिंटन की बात करें तो पीवी सिंधु ने आज महिला सिंगल्स के दूसरे राउंड में चीनी ताइपे की चिउ पिंचियन को 21-19, 21-14 से हराकर एशियन गेम्स 2026 के राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है।
0: एशियन गेम्स में दो बार मेडल जीत चुकी सिंधु ने पहले गेम में पिछड़ने के बावजूद पिंचियन को आसानी से हरा दिया। उधर भारत की पदक उम्मीद लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड में सिंगापुर के लोह किन यू से हार कर बाहर हो गए।
1: तो श्रोताओं, चलते चलते आपको यह भी बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच कल तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी में और अंतिम मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा।
0: उधर एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर को अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान से खेलेगी। और श्रोता, हम आपको यह भी बता दें कि भारत एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण, 12 रजत, 14 कांस्य के साथ टोटल 30 पदक हुए हैं और भारत 10वें स्थान पर है सिद्धार्थ।
1: और श्रोताओं, अब समय समाप्त हो रहा है, इसी के साथ सिद्धार्थ सिंह और प्रशांत को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
5: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
6: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
4: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
8: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
9: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
10: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक

0: रुककर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Suryakant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents.

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंटवार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंटवार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंटवार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से

0: आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं इन एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहा है।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, तो इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
3: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वॉज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन बाय आवर कलीग्स, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज बीइंग डेवलप्ड नाउ बाय इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो गवर्नमेंट फंडिंग फॉर नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। क्रिटिकल मिनरल्स एक नया इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करे, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF,

0: वाला है जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमोसफियर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो. मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स. So it's also called as carbon recycling. You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा, government में अभी nuclear policy relax कर दी है जिसमें private players भी आ सकते हैं. Nuclear energy, if you look at it, it's one of the cleanest energies. और इसमें अगर micro size reactors set कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा. दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है. बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जो सोलार हो, वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है. हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव. सी, जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज.
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, नॉट टू बी स्केर्ड ऑफ फेलियर्स. दूसरी चीज है कि हार्डवर्क के सिवा कुछ नहीं होता है. अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली, और दूसरा है हार्डवर्क करना चाहिए.
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है. इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है. ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत. भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम.
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं. टाइम भी उनमें से एक है. तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से. 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं. अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं. तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है. ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं. अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं. आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं. अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस सेंट्रल, एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था. कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है. तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है. इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है, कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा. उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को. आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं. हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं. फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं. तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हों. अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे. अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड्स कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे. तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी. तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है.
2: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास

0: बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
1: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान। लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन के प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है?
3: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
2: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
3: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडायवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था, वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे

0: लिन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट इन्वायरमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
1: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
2: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई, इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉड राइस पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
2: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदा नीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
3: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णपुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया ने

0: नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
1: जी,
0: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सू की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन है, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक ना ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान ना ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है, इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं। गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है। आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
2: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
3: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
2: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
3: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के

0: brought in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for greater adoption of technology and innovation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York tonight. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 in Japan. The Indian men's kabaddi team clinched gold, beating Iran 40-34. India has made a strong medal haul at the Asian Games today, adding 7 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का ईरान का 7 दिन का प्रस्ताव खारिज किया। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज, हमलों में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंद्र पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिस्टिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रो टेड्रोस अदानोम गेब्रियस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ आज कच्छ जिले के दीनदयाल पतन प्राधिकरण में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ई मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से देश भर में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।
3: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की जेएनपीए और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा की पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का स्टेटस मिला। इसका मतलब है एक पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा उपार्जन बढ़ेगा, उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
1: बांग्लादेश ने एक विशेष राष्ट्रव्यापी खसरा रूबेला एमआर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत 6 महीने से लेकर 5 साल से कम उम्र के लगभग 34 लाख ऐसे बच्चों को लक्षित किया गया है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या छूट गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंटेंसिफाइड एमआर कैचअप वैक्सीनेशन शीर्षक से ये अभियान आज ढाका के विभिन्न क्षेत्रों में टीएनडी खेल के मैदानों में चलाया जा रहा है। पुर्तगाल और मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का फिर समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 81वीं महासभा की चर्चा के दौरान दोनों देशों ने समर्थन किया। ये समर्थन वर्तमान क्षेत्रीय और राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार की व्यापक मांगों के बीच मिला है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मानचित्र जारी किया है जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ट्रंप जल डमरू मध्य के तौर पर दिखाया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने के लिए ईरान के 7 दिन के प्रस्ताव को ठुकराने वाली श्री ट्रंप की घोषणा के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की मांगों को मानने की ईरान की इच्छा पर भी संदेह जताया है। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि ईरान पर फिर से अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका बनी हुई है। ईरान ने 7 दिन की शांति प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया था जिसके अंतर्गत सभी 5 मोर्चों पर लड़ाई रुक जाती। इसके बदले अमेरिका से ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाने, ईरान के रोके गए फंड जारी करने और से जुड़े प्रतिबंधों में छूट देने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की बात भी कही गई थी। यह कदम इराकी हवाई अड्डों पर ईरानी उड़ानों के निलंबन के बाद उठाया गया है। विश्व दर्पण के लिए चाहत सिंह।
1: रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज होने के साथ यूक्रेन में 4 लोग मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, ग्लाइड बमों और जेट चालित ड्रोनों से हमला किया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले से एक डेटा सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया है। ये मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और स्टारलिंक उपग्रह संचार प्रणालियों को सहायता प्रदान करता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस हर दिन युद्ध को और बढ़ा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरियों और औद्योगिक सुविधाओं पर ड्रोन हमले जारी रखे हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले उसके कार्यकर्ताओं और सांसदों और नेताओं की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार निगरानी संस्था ने कहा कि महिलाओं से सहित पीटीआई समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ परिवारों ने कहा है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के ठिकानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयोग ने अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को बनाए रखने का आग्रह किया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों तथा आवाजाही की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों पर आपत्ति व्यक्त की। और एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत।

0: कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का ईरान का 7 दिन का प्रस्ताव खारिज किया। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज। हमलों में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण। तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम VC प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. US President Donald Trump rejects Iran's 7-day framework for reopening Strait of Hormuz. 4 killed in Ukraine as Russian and Ukrainian air attacks intensify. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tejinder Pal Singh Tur wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. External Affairs Minister S. Jayashankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly UNGA in New York tonight. A report.
3: The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Earlier, Dr. Jayashankar raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying such incidents were no longer isolated occurrences. He was speaking at the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers held on the sidelines of the UNGA session in New York.
4: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier, MV Cape Dow, was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
3: Dr. Jayashankar also held meetings with his counterparts from Iran and Russia, during which they discussed bilateral issues, cooperation within the BRICS grouping and the ongoing conflict in the Gulf region. Suparna Saikya for World News.
2: The General Assembly brings together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states to outline their priorities and positions on major international issues. According to the United Nations, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals and promoting collective action for peace, dignity and equality. India's campaign for a permanent seat in the United Nations Security Council has received fresh support at the UN General Assembly, with Portugal and Mauritius explicitly backing New Delhi's bid. The endorsements came during the 81st General Assembly debate at the UN headquarters in New York, amid broader calls for reforming the Security Council to better

0: Chen's short putt with a throw of 20.64 metres. Sawan Barwal bagged silver in the men's marathon, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilottama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Choksi secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1763 points. Prachi Chaudhary won bronze in the women's 400 meters and a timing of 53.21 seconds. In mixed double squash, Josh Nachinappa and Velavan Senthil Kumar bagged bronze. Prime Minister Narendra Modi has congratulated players for securing victory in the Asian Games 2026. And now before we close, here are the highlights of the bulletin. External Affairs Minister S. Jayashankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. U.S. President Donald Trump rejects Iran's 7-day framework for reopening Strait of Hormuz. 4 killed in Ukraine as Russian and Ukrainian air attacks intensify. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tejinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. Indian medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. And that concludes tonight's World News Bulletin. For more updates, stay tuned to Akashwani. Good night.
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

10:32 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप। प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ, मैं विकास, नमस्कार।

का नाम था आरजू और सुधा मल्होत्रा की आवाज थी और संगीत इस फिल्म में था अनिल बिस्वास साहब का। गीत लिखा था हमारे और आपके मशहूर पसंदीदा शायर मजरू सुल्तानपुरी ने। कहते हैं कि सुधा मल्होत्रा जब इस गीत को गा रही थी तो उनकी उम्र काफी छोटी थी, तकरीबन 12 या 14 साल के आसपास की। और देखिए ये गीत 1950 में रिकॉर्ड हुआ और हम आज भी इसे उसी शिद्दत के साथ सुन रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ इस सफर में मैं विकास, और हर सिंगार में मैं और आप खो जाते हैं उस दौर में जिसे हम और आप गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं, और कुछ गीत सुने और अनसुने लेकर आता हूं मैं।

10:42 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और रफी साहब और लता जी की आवाज थी और प्यारा सा ड्यूएट था ये फिल्म लैला मजनू से, और ये गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था एक बेहद ही सुलझे हुए लेकिन मुश्किल लेकिन मधुर धुने बनाने वाले जयदेव साहब ने। मदन मोहन साहब का इंतकाल हुआ था इस फिल्म को बनाने के दौरान और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर इस बीच जयदेव साहब की एंट्री हुई और उन्होंने ही इस फिल्म के बाकी के गीत पूरे किए। दिलचस्प सी बात यह भी रही कि काफी अरसे बाद यानी तकरीबन 10 साल के बाद जयदेव और साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के लिए एक साथ काम किया था।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार आपके साथ मैं विकास।

सुधा मल्होत्रा की आवाज पहुंची आप तक। फिल्म का नाम था बाबर और संगीत इस फिल्म में रोशन साहब का, गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने। जब आप इस गीत को सुन रहे थे तो सुनते सुनते मैं भी इस गीत को गुनगुनाने लगा और याद आया कि इस गीत से मिलता जुलता एक और गीत भी तो जहन के किसी ना किसी कोने में मेरे तो बज रहा है। और मुझे लगता है कि शायद संगीत को थोड़ा बहुत फॉलो करने वाले, जानने वाले, पसंद करने वाले बाकी हमारे साथियों के भी जहन में उस गीत की हल्की हल्की सी छवि तो दर्ज हो ही रही होगी। तो क्यों ना उस गीत को भी सुन ले जो कि आरती फिल्म से है और 1962 की ये फिल्म थी और इसमें संगीत एक बार फिर रोशन साहब का, लेकिन इस बार गीतकार रहे मजरू सुल्तानपुरी। प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास।

1959 में एक फिल्म आई, बांग्ला फिल्म रही और फिल्म का नाम था लालू भूलू। जी, यही फिल्म थी जिसका कि हिंदी रीमेक बनकर जब तैयार हुआ तो हमने उसे दोस्ती के नाम से जाना। यानी यही फिल्म पहले बांग्ला में बनकर तैयार रही। फिल्म की कामयाबी की बात करूं तो उसमें संगीत इसका बेहद मजबूत पक्ष रहा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शुरुआती फिल्मों में से एक गिनी जाती है और इसमें रफ़ी साहब और बाकी के सभी कलाकारों ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए। प्रोग्राम का आखिरी गीत अब पहुंचता है आप तक और प्यारा सा गीत है। फिल्म का नाम है लव मैरिज। 1959 की ये फिल्म है। रफी साहब और लता जी की आवाज। छोड़े जाता हूं आपके साथ और उसके बाद सुनिएगा आप समाचार, लेकिन हाँ, FM गोल्ड के साथ आप बने रहिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with markets, business or economy. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीटी कोड 011 भी डायल करें। चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन। शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
0: A warm welcome to both of you.
2: Thank you.
0: Thank you.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स इरान 7-डे प्रपोजल टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंडियन स्टॉक मार्केट रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक। And Wall Street wraps up week with notable gains.
1: अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खोले जाने वाले ईरान के 7-दिवसीय प्रस्ताव को खारिज किया। भारतीय शेयर बाजार पर लगातार 7वें सप्ताह मंदड़िये हावी और वॉल स्ट्रीट ने बढ़त दर्ज करते हुए सप्ताह का अंत किया।

0: tranche is released.
1: So Rajesh, in fact the PLI scheme which was launched, and it has really turned out very good results, has so far been focused on incentivizing the manufacturing sector, and the most visible benefits have really gone to the electronic sector, so smartphones and electronic goods. Mm-hmm. and those sectors, and then we had automobiles which also had a certain tranche of for the solar renewable energy automobiles and electronics. So mostly these sectors were targeted in the first, you can say, version of PLI scheme. However, now government has expanded that sector, that scheme, the scope of benefits, and the next target, the next sectors that are being targeted basically include pharmaceuticals, chemicals and semiconductor sector, because these are the areas where we believe that India will now have the edge, the technological edge and knowledge edge to forge ahead. And I think that is appropriate, because these are the areas where pharmaceuticals, for instance, chemicals, semiconductors, of course, we're trying to make a headway and try to create a place for ourselves. Very, very competitive sectors. I think it is very, very good, very farsighted on part of the government to incentivize these sectors, because these are the areas where we can really make a headway. So you look for benefits in pharmaceuticals, chemicals and semiconductors.
2: आइए श्रोताओं, अब जानें कि सप्ताह के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार सातवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और कमजोर वैश्विक संकेतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। पांच में से तीन कारोबारी सत्रों में बाजार बढ़त में रहे, लेकिन बृहस्पतिवार को भारी बिकवाली के चलते प्रमुख सूचकांक 1.6% से अधिक फिसले और बाजार नुकसान के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 399 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़क कर 73,896 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205 अंक यानी 0.9% की गिरावट के साथ 23,141 पर स्थिर हुआ। पिछले सप्ताह में दोनों प्रमुख सूचकांकों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.8% की गिरावट आई। बाजार में उतार चढ़ाव का संकेतक इंडिया विक्स सप्ताह के दौरान 6.7% बढ़कर 12.16 पर बंद पहुंच गया। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी लगभग 2.5%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.5% और निफ्टी एनर्जी में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी रियल्टी 3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और एफएमसीजी सूचकांकों में भी करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 6 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत, लगातार सातवें सप्ताह की गिरावट अगर हम देखें, किस दिशा में हमारा बाजार अब रुक करके बैठा है?
1: देखिए, जैसे शिशुर ने शुरुआती दौर में ही प्रोग्राम में बताया था कि चार फैक्टर्स हैं इस वक्त जो बाजार को दबाव में ला रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं, जो वॉर का माहौल है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है भारत के बाजारों पर। यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर चली गई हैं, उससे भी हमारे जो इनफ्लोज हैं, जो लिक्विडिटी है, वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चौथा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लगातार सेलिंग चल रही है। इस महीने भी करीब करीब 20,000 करोड़ का नेट सेलिंग एफआईआईज ने किया है। और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि घरेलू बाजारों को देखें तो एक तो महंगाई, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, और जो एक तांता लगा था आईपीओस का, उसने भी काफी लिक्विडिटी बाजार से करी है। जब तक ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, खासतौर से जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से क्रूड कच्चे तेल की कीमतों पर, उसी से इन्फ्लेशन पर, यूएस बॉन्ड यील्ड, ये सभी उससे अफेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब माहौल बदलेगा तभी कोई बड़ी हम यहाँ से बदलाव देख सकते हैं। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में लगातार 7 सप्ताह से बाजार गिरा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा यहाँ से पुल बैक हम देखेंगे और बाजार में शायद अगले सप्ताह हम थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू बाइंग होगी डेफिनेटली। पर मुझे कोई सस्टेन्ड बाइंग या सस्टेन्ड अपट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये फैक्टर्स में बदलाव नहीं आएगा।
2: फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार सर, सर मैं ये जानना चाहता था कि लगातार दो साल से ये निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे सर? ये तो बिल्कुल भी, हमें तो बैंक जो एफडी जो रिटर्न मिलता है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, नेगेटिव में जा रहे हैं जितने।
1: सुभाष जी नमस्कार, आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले दो वर्षों का हम आंकड़े देखें तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले दो वर्षों में बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली है। हालांकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर है वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट आए हैं, लेकिन जो लार्ज कैप्स हैं और इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ और वर्षों जाएं, यानी हम अगर आप पांच वर्ष से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स को वो काफी रहे हैं, 9-10% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिली है। तो इसका जो मैं कहूंगा कि मैसेज है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म में मत घबराइए, ऐसा रहता है, हमने बहुत बार देखा है पिछले कई वर्षों में, 2-3 दशकों में हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी रिटर्न नहीं आती है। लेकिन यदि आप यहाँ बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 4-5 वर्ष में या उससे ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न आएगी। और हमारे पिछले कई वर्षों के अगर 40-50 साल के हम डेटा देखते हैं तो ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अबव 5 ईयर्स उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी। आप इससे परेशान न हो, आप मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहें तो बेहतर है।
0: Moving on, US stock markets ended higher yesterday, supported by gains in AI-related technology stocks. However, elevated crude oil prices and a recent surge in US Treasury yields kept investors on edge. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, while the S&P 500 and NASDAQ Composite rose 0.5% each. For the week, Nasdaq rose over 2% after it notched a record high close on Tuesday. The S&P gained 1.2% and the Dow added 0.3% over the week. Meanwhile, US President Donald Trump said he had a very productive meeting with Chinese President Xi Jinping following a 3-day summit that showcased personal diplomacy rather than major breakthroughs in economic relations.
2: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: धन्यवाद।
2: जी अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, हेलो।
2: हाँ, बोलिए अपना सवाल पूछिए।
3: जैसे कि जीएसटी घटना के बाद कंपनियों ने अब क्या नई ट्रिक अजमाई है कि जो रेट थे वो कुछ उनके अपने एमआरपी बढ़ा दिए और वो रेट के रेट वैसे भी इनके वैसे ही चलते आ रहे हैं, ये कुछ चीजों में हमने चेक किया। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे कि हमने पहले एक व्हाइट सोना खरीदा हुआ है तो ये इसकी जानकारी चाहिए कि व्हाइट सोने का रेट मार्केट से, में सुना है कि येलो सोने से महंगा है।
4: मेरे ख्याल से जीएसटी के मामले में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, कंपनी के एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कच्चे सामान के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं, कच्चे माल के, और उसका असर आपकी कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर मैं गाड़ियों की बात करूं जिनके दाम जो है वो बढ़े हैं, लेकिन अगर फिर भी जो अध्ययन किए गए हैं उस अध्ययन में यह है कि जीएसटी की कटौती जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे उसके बाद दाम में जो कमी आई, अभी बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो कमी पूरी तरह से हम कहें कि खत्म हो गई है वो अभी उचित नहीं है, ये अध्ययन में सामने आया है, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है व्हाइट गोल्ड का, मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये चर्चा होती है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि अलग अलग गोल्ड की भी बात की जाती है, कहीं पिंक गोल्ड की बात की जाती है, ग्लो रेड गोल्ड की बात की जाती है। तो ये वो सोना है जो कि हम जिस गोल्ड मेटल की बात करते हैं, जिस सोना

0: धातु की बात करते हैं वो ये नहीं है, ये मिश्रित धातु है। और व्हाइट गोल्ड एक अलग तरीके का, आप जैसे प्लैटिनम का, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि वो उसके दाम अलग हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी मांग काफी ज्यादा है। और बाकी जो आप अलग अलग सोना देखते हैं वो सोना जो है वो मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखें।
1: Global crude oil prices displayed mixed trend this week. Brent crude November futures rose 0.4% to settle at $104.32 per barrel. West Texas intermediate crude November futures tanked 3.8% to end at $92.41 per barrel over the week. However, oil prices eased over the last few trading sessions as markets grew hopeful of a phased truce between the US and Iran, with both sides reportedly in touch through mediators on the sidelines of the UN General Assembly meeting. Now, we read in the headline story about US rejecting Iran's 7-day proposal to reopen Strait of Hormuz. In such a scenario, Puneet, how should India be navigating the growing crude oil prices, especially if they continue to persist on a northern side?
2: So Rajesh, clearly for India the challenge is enormous, because not only do we have to contend with rising crude oil prices in international market, we have limit because we are the world's second largest importer of crude oil. So clearly we need very large supplies also. However, what geopolitical tensions are dictating to us, and particularly the latest trade tariff threat by the US on imports from Russia, I think India has really its task cut out in a sense, because we need to import energy from Russia, because there is no other large supplier of energy like Russia. And therefore, I think while we have we are looking at Brent crude about $100-$105, we really need to be cautious and going forward need to maintain supplies also to see that they are economic in nature.
3: शिशिर, इस संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक दबाव पड़ता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो या और भी कोई अन्य आपूर्ति की जो चीजें हैं, जो हर देश को जिसकी जरूरत है, दबाव पड़ता है। ऐसे में किस तरह से हम आगे आने वाला भविष्य देख रहे हैं?
0: देखिए, दो बातें होती है। एक तो होता है कि आप विविधीकरण करते हैं कि आप चलो आप एक जगह से तेल ना लेकर के आप चार जगह से और तेल लेते हैं
3: जी।
0: और हमारे लिए ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए केवल ब्रेंट का प्राइस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं इंडियन बास्केट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो स्रोत हैं वो शामिल होते हैं। तो अभी की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो कुछ घटना चल रही है, जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसमें एक रूस का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टैरिफ ज्यादा देना पड़े। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि जब जयशंकर साहब की रवियो साहब से बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और यूएस की ओर से, अमेरिका की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि राष्ट्रपति के पास वो विशेषाधिकार है कि किसी एक देश के प्रति यदि वो कुछ कमी या रियायत दे सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बातचीत का सार्थक नतीजा निकलेगा और हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितनी हम आशंकित हैं।
3: नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो मैम, नमस्ते सर को। नमस्ते, मैं आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मैंने सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं 29 जनवरी और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है अभी, जैसे हमारी एफडी ब्रेक होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो हम किस कौन हमें गाइड करेगा, कैसे मतलब हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन बता पाएगा हमारे को अच्छे मतलब नॉलेज उसके लिए।
0: आकाश, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो शेयर बाजार ना जाएं। बाजार रातों रात आपको एक, जैसे कहते हैं ना, क्या एक आपको निवेशक नहीं बना सकता है। तो आपके लिए अभी बेहतर यह है कि अभी थोड़ा समय इंतजार करिए, पहले समझिए बाजार को। बहुत सारे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत हैं, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, वहां पे आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें। अभी के समय में मेरी सलाह है ना जाएं, बेहतर होगा।
3: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अंतर्गत ₹2000 तक के UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगेगा। हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रतिशत के बजाय एक समान यानी फ्लैट MDR लागू होगा।
1: Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for a greater adoption of technology and innovation.
3: बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, पुनीत जी।

0: hour repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

स्टूडियो की घड़ी में बता रही है कि 11:42 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत आपके साथ मैं विकास, स्वागत आप सबका।

शराफत तो दिल के साथ गई, लुट गई कायनात फूलों की। मखदूम मोहिउद्दीन का ये नगमा यानी ये गजल पहुंची आप तक। लता जी की आवाज थी और साथ में थे तलत अजीज। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनायाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का झूमने पर मजबूर करने वाला संगीत और आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत लता जी की आवाज और रफी साहब के साथ प्रोग्राम का ये आखिरी गीत पहुंचता है आप तक। विकास फिलहाल चाहता है आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े हर फैसले को पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की चीव

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है केदार का तिलक और ये कहानी आपके लिए लिखी है जया आनंद ने। केदारनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिमालय पर्वत की छाओं में ये मंदिर है। रास्ता बहुत ही दुर्गम है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। ये कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, यानी स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई है और ये कत्यूरी शैली में मंदिर बना है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आसपास का जो दृश्य है वो मनोहारी दृश्य है। आपको याद होगा जून 2013 इस दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक बहुत बाढ़ आई थी और बहुत लैंडस्लाइड्स हुए थे। उस समय केदारनाथ मंदिर का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ था उस बाढ़ और भूस्खलन से। कई यात्री उस समय इस तीर्थ के दर्शन को आए हुए थे। ऐसे ही समय पर एक और यात्री जब वहां दर्शन के लिए पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ और वहां पर बसे लोगों के साथ क्या हुआ था, इसी की कहानी है हमारी आज की पानी पर लिखी कहानी, जिसे शब्दों में पिरोया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर जया आनंद ने। आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: अदिति प्रतीक्षारत थी कि कोई घोड़ा कोई खाली कंडिया मिल जाए तो वो भी जल्दी से ऊपर पहुंचे पहाड़ की चोटी पर जहां बैठे हैं केदारनाथ। बारिश बहुत थी और भीड़ भी। इतनी भीड़ देखकर लगा कि क्या आध्यात्मिक मनन चिंतन यहाँ हो सकता है। ईश्वर तो एकांत का स्वरूप है, बुद्धि का विलास वैभव अलग है, पर श्रद्धा भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, वो अनुभव नितांत अलग है। बौद्धिक विलास से अलग भक्ति विश्वास को जन्म देती है, जीवन के प्रति आस्था को उपजाती है। केदारनाथ उसी श्रद्धा उसी विश्वास की उपज है। तेज बारिश की बरसती बूंदें कहीं अपने थिरकन से मन को लय पर नाचने के लिए मजबूर कर देती हैं, तो कहीं

0: व्यस्तता बता देती है। यहाँ दूसरी परिस्थिति पर ज्यादा जोर था।
1: कितनी बारिश हो रही है, ये सब आज ही होना था। अब कैसे जाना होगा, कैसे दर्शन होंगे बाबा केदारनाथ के? और देखो ना, यहाँ कोई साधन भी नहीं दिखाई दे रहा।
2: हाँ, लगता है केदारनाथ हमारी परीक्षा दे रहे हैं।
1: अगर ये बात है तो मुझे विश्वास है हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। अब चाहे बारिश हो या कुछ भी, हम दर्शन करके रहेंगे।
2: देखो अदिति, बारिश बहुत है और हेलीकॉप्टर बंद होने की वजह से भीड़ भी बहुत बढ़ गई है। अम्मा, पिताजी, बच्चे कंडिया में जा चुके हैं और मैं तो घोड़े पर भी जा सकता हूँ। ऐसा करो, तुम भी घोड़े पर मेरे साथ चलो।
1: नहीं नहीं, घोड़े पर तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो?
2: घोड़े पर नहीं तो कंडिया में बैठ जाओ।
0: तभी एक गोरा लंबा मुस्कुराता हुआ पहाड़ी चेहरा सामने आकर खड़ा हो गया।
2: अरे बेटा, चलोगे कंडिया में लेकर?
3: हाँ भैया, ले चलूंगा। दीदी, कंडिया में बैठोगी? बैठो ना दीदी, साहब ये देखो हमारी कंडिया भी मजबूत है।
2: अरे बेटा, वो तो ठीक है, पर तुम्हारी दीदी माने तब ना। देखो अदिति, जिद मत करो, बैठ जाओ कंडिया में।
1: हाँ, कंडिया पर नहिल, क्या मैं बैठ पाऊंगी?
2: क्यों नहीं, आओ।
3: हाँ दीदी, मैं संभाल के ले जाऊंगा आपको।
1: तो ठीक है,
2: हाथ देना तो।
1: हाँ,
2: ठीक है ना, कंफर्टेबल?
1: अभी ठीक है।
3: देखो दीदी, आप भीगोगी भी नहीं।
1: ये अंदर पानी आ रहा है, इसका क्या करोगे?
3: ऐसे देखो, मैं पॉलिथीन लगा देता हूँ दीदी।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
3: ठीक है ना दीदी?
1: अब ठीक है। और देखो, जरा संभल कर चलना, कहीं गिरा विरा मत देना मुझे।
3: ठीक है,
2: चलो तो फिर, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे।

0: अदिति कंडिया में बैठ तो गई, पर प्रकृति का आनंद उस कंडिया के अंदर सिमट कर रह गया। कंडिया में बैठे बैठे अदिति सोचने लगी,
1: हे भगवान, इतना कष्ट उठाकर दर्शन, भगवान आप भी कहां कहां डेरा जमा कर बैठ जाते हैं और हम भी तो दर्शन के लिए थोड़े थोड़े चले आते हैं, मानो सारा का सारा पुण्य इसी में मिलेगा।
0: अदिति के मन में विचारों की लहरें उठा पटक कर रही थी। 20 साल पहले भी अदिति केदारनाथ आई थी, 12वीं में रही होगी, जोश था तब, इसलिए पैदल की ही चढ़ाई की थी। रामबाड़ा तक रास्ता तो पता ही नहीं चला, लेकिन उसके बाद यात्रा अत्यंत कठिन हो चली थी। और तब भी यही प्रश्न उभरा था, भगवान इतना ऊपर जाकर क्यों बैठ गए? उस समय भी वो बारिश में गिर गई थी, अपनों से बिछड़ गई थी, और तब हाथों की उंगलियों में सूजन भी आ गई थी। केदारनाथ के एक दो चाय वाले लड़कों ने हाथ में तेल लगाते हुए कहा भी था, केदार बाबा सब ठीक करेंगे। उनकी सेवा परायणता निश्चलता देखकर अदिति की आंखें छलछला गई थी। उनकी केदारनाथ के प्रति आस्था अदिति को भी विश्वास से भर रही थी।
2: दीदी एक बात कहूँ?
1: हाँ बोलो ना।
2: आप बहुत भारी हो।
1: तो तुम क्या चाहते हो, मैं नीचे उतर जाऊँ?
2: थोड़ी देर के लिए।
1: लगता है तुम थक गए हो, चलो मुझे नीचे उतार दो थोड़ी देर के लिए।
2: गाओ दीदी, अपना पर्स दे दो।
1: नहीं नहीं, चल सकती हूँ।
2: नहीं नहीं दीदी, हमें तो आदत है पर सामान के साथ लोगों को कन्या में बिठा कर चलने, पर आपको थोड़ी परेशानी होगी।
1: नहीं नहीं मैं ठीक हूँ।
2: दीदी जानती हो मैं तो यहाँ हर साल आता हूँ, केदार बाबा का दर्शन भी होता है और खूब कमाई।
1: अच्छा ये बताओ तुम रहने वाले कहाँ के हो?
2: जी दीदी मैं यही गढ़वाल का ही रहने वाला हूँ।
1: और तुम्हारे घर में कौन कौन है?
2: दादी माँ पापा और एक बहन।
1: पढ़ाई नहीं करते तुम?
2: दीदी 12वीं की परीक्षा दी है पर कमाई भी करनी है, पिछले साल 50,000 की कमाई की थी। दीदी अब की ना मैं कमाई करके घर जाऊंगा तो पुलिस में भर्ती होऊंगा।
1: क्या बात है,

0: सुनो, मैं थोड़ा थक गई हूँ। एक काम करते हैं, देखो वो चाय की दुकान है ना, चलो वहीं थोड़ा रुककर चाय पीते हैं।
1: ठीक है।
0: हाँ। अदिति थक गई थी, एक चाय वाले के पास बैठकर सुस्ताने लगी। वहीं बच्चे भी मिल गए जो आगे की कंडिया में थे, और परिवार के अन्य सदस्य भी। बारिश अभी भी मध्यम मध्यम हो रही थी, ऐसे में गरम चाय ने मानो जान डाल दी। अदिति ने बाकी कंडिया वालों को भी चाय पिला दी। चाय पीते पीते अदिति ने अपनी कंडिया वाले लड़के का चेहरा देखा। गोरा, छोटी छोटी आंखें, सौम्य सहज मुस्कान और कद काठी वो लंबी। चाय पीते पीते अदिति ने पूछा,
2: अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है?
1: तिलक है दीदी।
2: बहुत सुंदर नाम, केदार का तिलक।
0: अपनी सौम्य निश्चल मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा। केदार की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के उत्तुंग शिखर के माथे पर लगा हुआ मानो कोई तिलक, अपनी दिव्यता और पवित्रता के साथ, जहाँ अकेले चलने भर से पैर थकने लगते हैं, हम हांफने लगते हैं, वहीं तिलक जैसे लोगों को पीठ पर बिठाकर, लाद कर सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के साथ केदारनाथ के दर्शन करवाते हैं। सच पूछो तो असली पुण्य के अधिकारी तो यही है। चाय पीने के बाद अदिति, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य कंडिया पर सवार होकर चल पड़े।
2: अच्छा तिलक, ये बताओ, मैं अब भारी तो नहीं लग रही ना तुम्हें?
1: दीदी आप भारी तो
2: अच्छा तो आसपास में जितनी भी कंडिया जा रही है उनमें क्या पतले पतले लोग बैठे हैं? कितनी कितनी जबरदस्त ठंड है ना, और केदारनाथ में रहने के लिए कितनी सारी धर्मशालाएं बन गई हैं, और अब तो जहाँ देखो वहाँ दुकानें भी दिखाई देती है।
1: हाँ दीदी,
2: पहले से बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। बहुत पहले आई थी मैं यहाँ पर, लगभग 12 साल पहले।
1: जी दीदी।
2: और मुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। विश्वास मनुष्य को हर कष्ट से लड़ने की क्षमता देता है।
1: दीदी देखो केदारनाथ आ गया। दीदी केदार बाबा के दर्शन अच्छे से करना। मैं तो लगभग रोज आता हूँ।
2: अरे वाह, तुम रोज आते हो?

रात को ही नेहिल, बच्चे, उसके माता पिता, सास आदि सबके साथ उसने केदारनाथ के दर्शन किए। मन अभिभूत हो गया। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा केदारनाथ का मंदिर अलौकिकता का निदर्शन कर रहा था। सच, ईश्वर साधारण आंखों से नहीं दिखता,

0: केदारनाथ मंदिर को चढ़ती सीढ़ियाँ, ऊपर विशाल नंदी की प्रतिमा, फिर अंदर गर्भगृह से केदारनाथ का लिंग। रात्रि में केदारनाथ पूर्णतः सुसज्जित थे। अदिति ने सपरिवार दर्शन किया और फिर वापस धर्मशाला के पंडों और सेवकों ने गर्मा गर्म खाना खिलाया। कच्चे खाने में संभव था उनका अपार स्नेह मिश्रित था, इसलिए खाना सबको बहुत स्वादिष्ट लगा। तिलक भी वहां रुका था।
1: ओहो, आज अचानक तेज बारिश कैसे शुरू हो गई?
2: भैया, पल मुंबई के फैशन और केदारनाथ के मौसम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता।
0: रात भर सांस लेने में सभी को कठिनाई होती रही। कपूर सूंघ सूंघ कर सभी रात में सोने की कोशिश करते रहे। सुबह आसमान साफ था, बर्फ से ढकी श्वेत उज्जवल पहाड़ियां, ऊपर झांकता हुआ नीला आसमान और सबके बीच केदारनाथ का मंदिर। आंखों के आगे दृश्य मानो अदिति भर लेना चाहती थी। पिछली बार केदारनाथ के पीछे की बर्फ से आच्छादित पहाड़ियां सूर्य की किरणों से सुनहरी सी दिख रही थी। उसने उस दृश्य को भी अपनी आंखों में कैद कर लिया और आज ये दृश्य, तिलक की बात भी याद आ गई कि मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम कुछ कहा नहीं जा सकता। चाय पीकर और पवन स्नान करके, क्योंकि पानी से नहाने की हिम्मत तो किसी में थी नहीं, सब अपनी अपनी कंडिया में बैठकर सवार होकर चल पड़े। सूर्य की किरणों ने थोड़ी राहत दी। नेहिल और अदिति के पिता घोड़े पर थे, उसके बच्चे माँ सासू माँ धूप के कारण थोड़ा अच्छा अनुभव कर रहे थे।
2: दीदी आओ बैठो।
3: भारी तो नहीं लगूंगी ना तुम्हें?
2: दीदी आप भारी तो।
0: अदिति का चेहरा हल्के गुस्से से भर गया। आखिर वो एक स्त्री है और उसके सामने कोई बेखौफ उसकी बुराई करे है। वो कंडिया में बैठ गई। ऊपर स्वच्छ भरपूर नीला आकाश, बीच बीच में धवल बादल, पहाड़, ऊपर हरे भरे पेड़ और उनके बीच में हिमाच्छादित एक चोटी और उस पर पड़ती सूर्य की किरणें, अद्भुत अद्भुत अवर्णनीय दृश्य। प्रकृति की छटा अदिति को मंत्रमुग्ध किए हुए थी। थोड़ा ही चले चल हुए थे कि उसको लगा कि वो तिलक को भारी लग रही होगी और वो पहाड़ के पैदल तो बिना किसी कठिनाई के उतर ही सकती है।
3: तिलक, अच्छा सुनो तुम।
2: हाँ दीदी।
3: तुम मुझे उतार दो, मैं पैदल ही चलूंगी।
2: अरे नहीं दीदी, मैं आराम से आपको लिए हूँ।
3: अरे नहीं नहीं, उतार दो मुझे। हाँ अभी ठीक है।
2: अच्छा दीदी अपना बैग दे दो मुझे।
3: ये लो, संभाल के रखना है ना।
2: जी दीदी।
0: तिलक ने अपनी सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अदिति ने इस बार बेझिझक अपना बैग तिलक को दे दिया, क्योंकि इस बार विश्वास के बंधन ने उसे बांध दिया था।
2: दीदी यहाँ केदार बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
3: अच्छा,
2: सबका घर परिवार केदार बाबा के आशीर्वाद से ही चलता है दीदी। मैं तो यहाँ हर बार आता हूँ।
3: अच्छा तिलक,

0: पढ़ाई भी करा करो। क्या
1: पढ़ता हूँ ना दीदी, यहाँ से 1-1.5 महीने काम करता हूँ फिर जाके पढ़ता हूँ। अब बैठ जाओ दीदी, मैं जल्दी से आपको पहुँचा दूंगा।
2: कंडिया में बैठते ही अदिति की पलकें झुकने लगी। आगे पीछे उसके प्यारे प्यारे बच्चे और माँ और सासू माँ भी थे। उसको नींद आ गई। जब आँख खुली तो नीचे गौरीकुंड में थी।
1: दीदी उतरो, आ गया गौरीकुंड।
0: अरे हम पहुँच गए तिलक
1: जी। दीदी
0: मुझे नीचे उतार दो।
1: जी दीदी।
2: अदिति कसमसाते हुए कंडिया से उतरी और तिलक को पैसे पकड़ाए।
1: दीदी फिर से आना।
0: हाँ तिलक जरूर आऊंगी, और तुम पढ़ाई करना ठीक है ना?
1: जी दीदी।
2: अदिति का मन किया तिलक की फोटो खींच ले, पर सोचती ही रह गई। लेकिन तिलक की जो छवि उसकी आंखों में बस गई थी वो किसी भी फोटो से अधिक सजीव और जीवंत थी। तिलक अपनी कंडिया पीठ पर लाद कर हंसता मुस्कुराता अपनी धुन में मस्त अपनी राह हो चला। अदिति के मन में आया जोर से चिल्लाए,
0: ए तिलक,
2: पर वो आवाज उसके भीतर ही सिमट कर रह गई। अदिति और उसका परिवार अब बद्रीनाथ का दर्शन कर कृतार्थ हो गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान कर चले। रास्ते में ही उनको पता चला कि केदारनाथ में भयंकर तबाही हो गई है। अभी वो घर पहुंचे ही नहीं थे कि रास्ते में चाय की दुकान पर टीवी पर केदारनाथ रास्ते की भयंकर तस्वीरें देखकर वो दोनों हिल से गए।
0: ओ नीहिर, सहेजा हुआ सब बिखर गया। एक स्तब्धता शून्यता से मेरा दिलो दिमाग भर गया है नीहिर।
3: हे भगवान, ये केदारनाथ में तो भयंकर तबाही मची हुई है। केदारनाथ जी के मंदिर को छोड़कर सब आसपास के घर मकान पानी में गिरते जा रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो गया है। अभी एक दिन पहले तो हम वहीं थे, केदारनाथ जी का दर्शन, वो धर्मशाला, रामबाड़ा की चाय, गौरीकुंड का स्नान
0: और वो केदारनाथ की चप्पल की दुकान जहाँ से हमने बेटी के लिए चप्पल खरीदी थी,
3: और अदिति वो मिठाई वाला जहाँ सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबियाँ खाई थी। ओह, सब ध्वस्त, कुछ भी नहीं बचा।
0: ये कैसा मंजर है, हजारों लोग मर गए, कोई पानी के बहाव के साथ बह गया तो कोई बिना माँ का, तो किसी का बच्चा नहीं।
3: कितने ही लोग आपदा में फंसकर भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं।
0: नीहिर, अगर हम वहाँ होते तो?
3: हे ईश्वर, ऐसा तांडव क्यों? हम पर तो कृपा की, पर जो इस त्रासदी में फंस गए मर गए उन्हें बढ़कर तुमने क्यों नहीं बचाया? वे भी तो तुम्हारे दर्शन को गए थे। हे प्रभु केदारनाथ, तुम वहाँ बैठे बैठे ये दर्दनाक नजारा कैसे देखते रह गए?
0: वो देखो नहीं, केदारनाथ के आगे जो विशाल नंदी की प्रतिमा थी, देखो देखो नहीं, वो धसकर आधी रह गई है।
3: और वो गौरीकुंड का रास्ता, अदिति इसी रास्ते से हम पहुंचे थे गौरीकुंड, जहाँ घोड़े और कंडिया वाले रहते थे, वहाँ तो केवल एक गड्ढा बचा हुआ है।
0: आखिर इतनी कठिनाई से सब ऊपर चढ़कर आपके दर्शन के लिए गए और आप उन्हें बचा भी ना सके, बढ़कर आपने हाथों से उन्हें थाम क्यों नहीं लिया? हे भगवान, सुनो, तिलक बचा होगा ना? वो तो हर साल केदारनाथ जाता है।
3: अदिति, केदारनाथ का आशीर्वाद और सैकड़ों लोगों की दुआएं उसके साथ है। केदारनाथ की इस भयंकर त्रासदी में लोगों को बचाने के लिए सेना के अनेक जवान भी तो हैं। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वो जरूर बच गया होगा।
0: नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे ईश्वर, क्यों किया तुमने, क्यों किया, आखिर क्यों भगवान? हे भगवान, तिलक जहाँ भी हो ठीक हो।

0: एक साल बीत गया। अदिति ने केदारनाथ की यात्रा को सहेजते हुए बिखरे घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। नेहिल अपने ऑफिस के चक्कर में घिर गए और अदिति का कॉलेज भी खुल गया। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए। सब कुछ नियमित दिनचर्या में सिमट गया। इस बीच कभी कभी उसके दिमाग में केदारनाथ की कठोर यात्रा और तिलक का चेहरा यादों के झरोखों से झांक जाते। दीदी आप बहुत भारी हो।
1: अदिति अदिति देखो जल्दी आओ, केदारनाथ की न्यूज है टीवी पर।
2: क्या हुआ? अभी आ रही हूँ। अरे हुआ क्या है?
1: देखो केदारनाथ की खबर है। केदारनाथ पूरी तरह से सज धज के तैयार है। कितना सुंदर फूलों से सजाया है मंदिर को।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: उस त्रासदी में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था और शेष रहा था आस्था का प्रतीक केदारनाथ। हजारों तीर्थ यात्री अब तैयार हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए। इस बार उन्हें एक साथ हजार हजार के ग्रुप में भेजा जा रहा है।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन न बिगड़े, नहीं तो यूं ही प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है।
2: बिल्कुल सही कहा नहीं। आध्यात्मिकता जीवन में बहुत जरूरी है, पर उसमें विज्ञान का समन्वय होना भी तो चाहिए ना।
1: हाँ, इन दोनों के समन्वय से ही आस्था का जन्म होता है और आस्था से जीवन का।
2: जी,
1: इसलिए पिछले वर्ष मृत्यु का तांडव देखने के बाद भी हजारों लोग केदार बाबा के दर्शन के लिए तत्पर हैं, अपार जीवन शक्ति और ऊर्जा के साथ।
2: ये सब देखकर मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है। नहीं, तिलक भी जरूर कहीं ना कहीं ठीक होगा। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है।
3: दीदी आप बहुत भारी हो, केदारनाथ के दर्शन अच्छे से करना।
0: भागती दौड़ती जिंदगी में समय अबाध गति से आगे बढ़ता है। केदारनाथ की त्रासदी को लगभग 5 साल बीत गए हैं। नेहिल को ऑफिस के काम के सिलसिले में जम्मू जाना था।
1: सुनो अदिति, ऑफिशियल टूर है, जम्मू जाना होगा।
2: नेहिल मैं भी चलूंगी, इसी बहाने वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लूंगी।
1: ठीक है।
2: और सुनो, बच्चों को यही दादी के पास रहने देते हैं। उनके स्कूल खुले हैं, तो बस हम दोनों चलेंगे।
1: ओके, तो सामान पैक कर लो, इसी संडे निकलना है जम्मू के लिए।
2: ये ठीक रहेगा, मैं अभी तैयारी करती हूँ।
0: फ्लाइट समय से थी। नेहिल और अदिति कुछ ही घंटों में जम्मू पहुँच गए। अगली सुबह वो कटरा जाने की बस में सवार हो गए। कुछ घंटों में कटरा आ गया। सभी यात्री उतरने लगे। नेहिल अदिति को सामान के साथ वहीं कटरा चौराहे पर एक चाय की दुकान के पास खड़ा करके होटल बुक कराने चले गए। अदिति वहीं खड़े होकर सारा नजारा देख ही रही थी कि उसे कुछ दूरी पर एक बेंच दिखाई पड़ा। वो भी थक गई थी। उसने अपना एक बैग उठाया। अदिति ने दूसरा बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था तो किसी ने पहले से ही वो बैग अपने हाथों में ले लिया। अदिति चौंकी तो देखा सामने एक लंबा मुस्कुराता हुआ फौजी खड़ा था।
4: रुकिए, मैं सामान लेता हूँ।
2: अरे अरे आप रहने दीजिए, मैं अपना बैग उठा लूंगी।
4: अरे दीदी मैं हूँ ना, उठाने के लिए सामान कहाँ रखना है मुझे बताइए।
2: आप मत उठाइए, मैंने कहा ना आपसे मैं अपना बैग उठा लूंगी। और भला आप क्यों उठाएंगे मेरा सामान?
4: दीदी पहचाना?
2: अरे अरे तिलक, अरे तिलक।
4: हाँ दीदी मैं तिलक।
2: तिलक तुम्हें नहीं पता, तिलक तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तिलक तुम जिंदा हो? तिलक तुम?
4: जी दीदी।
2: तुम यहाँ पर कैसे आए तिलक?
4: जिस दिन केदारनाथ में तबाही मची उस दिन मैं गौरी कुंड में ही था। सब कुछ तबाह हो गया दीदी, कितना लोग मारा गया कुछ पता नहीं चला, कितना आदमी इधर उधर हो गया वो भी कुछ पता नहीं चला।
2: तिलक केदारनाथ से आते समय हमने रास्ते में टीवी पर देखा, कितना भयंकर दिन था वो। तुम्हें डर नहीं लगा तिलक?
4: बहुत डर लगा दीदी, ऐसा लगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। दीदी मैं सेना की मदद से किसी तरह देहरादून आ गया, वही प्रेमनगर के एक कर्नल के यहाँ नौकरी करने लगा।

0: दीदी आप बोलते थे ना पढ़ाई करो, तो मैं वहाँ पढ़ाई भी करता रहा। फिर केदार बाबा, कर्नल साहब और आप सब के आशीर्वाद से फौज में भर्ती हो गया।
1: सच तिलक, केदार बाबा की तुम पर असीम कृपा है तिलक। मुझे बहुत खुशी है तिलक, तुमने मुझे इतने सालों के बाद कैसे पहचाना तिलक?
0: दीदी आपकी वो बड़ी बड़ी आंखें, और आप ज्यादा बदली भी नहीं, जैसी हो वैसी ही हो। हाँ थोड़ा भारी हो गए हो ज्यादा।
1: तिलक तुम बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा तुम यहाँ पर आए कैसे? जम्मू में तुम क्या कर रहे हो?
0: दीदी जम्मू में मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, तो सोचा कि ट्रेनिंग के बाद वैष्णो माता के दर्शन कर लूँ। मैं तो कर आया दर्शन, और आज ही दोपहर को वापस जा रहा हूँ अमरनाथ।
1: अच्छा
0: मेरी पोस्टिंग वही हो गई है।
1: अरे वाह,
0: आप आइएगा दोनों।
1: हाँ हाँ तिलक हम जरूर आएंगे। अच्छा तिलक ये बताओ तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं दीदी, अभी सगाई हुई है। मेरे गांव की ही लड़की है।
1: ओह अच्छा, फोटो वोटो है तुम्हारे पास? है तो दिखाओ ना, अपनी दीदी को दिखाओ।
0: हाँ ये देखो दीदी, अच्छी है पर थोड़ी भारी है।
1: तुम्हें तो हर कोई लड़की भारी लगती है, अब क्या उसे खंडिया में बिठाया था तुमने?
0: नहीं दीदी अभी कैसे, वो तो देखने से ही लगता है।
1: वो देखो निहिल आ गए। निहिल पहचाना इसे? तिलक, केदार का तिलक।
2: अरे वाह तिलक कंडिया वाला। फौज में भर्ती हो गए। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, वाह वाह।
0: हाँ भैया अब मेरी पोस्टिंग अमरनाथ में होने वाली है, आप सब आइए।
2: हाँ हाँ जरूर वहाँ पर। अरे भाई केदारनाथ जैसी त्रासदी तो नहीं होगी वहाँ?
0: नहीं भैया, सरकार ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, थोड़े थोड़े लोगों को भेजते हैं, और अमरनाथ में पेड़ पौधों को संभाल कर रखा गया है, सेना भी तैयार है मदद के लिए।
2: वाह भाई वाह, जरूर आएंगे हम तो।
1: और निहिल अब तो हमारा तिलक फौजी बन गया है।
3: तिलक यूं ही सहज भाव से बोलता जा रहा था। अदिति तिलक की इस सौम्यता और सहजता की प्रशंसक थी, जहाँ ना कोई बनावटीपन था ना ही कोई कृत्रिमता। पहाड़ों से गिरते हुए स्वच्छ धवल निर्मल झरने की तरह था तिलक। मन के तार किस तरह से जुड़े होते हैं, इसकी अनुभूति को अदिति साक्षात अनुभव कर रही थी। अदिति का विश्वास रंग लाया था, केदार का तिलक था और रहेगा।

तो अभी आपने सुनी ये कहानी केदार का तिलक, जिसे आपके लिए लिखा था लेखिका जया आनंद ने। ये कहानी जैसा कि आपने सुनी उस समय की घटना पर आधारित थी, जबकि केदारनाथ मंदिर के आसपास का इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ और बहुत भूस्खलन हुआ। उस समय की ये घटना थी दोस्तों, जो कि वाकई हमारे भी दिल को छू गई। इस कहानी से हमें ये जो संदेश मिलता है वो ये है कि प्रकृति अपने निर्णय स्वयं लेती है, हम खुद इस प्रकृति के एक अंग मात्र हैं। जब हम खुद अपने आप को नियंता मान बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जरूर प्रभावित होता है। हमें ये मानकर चलना है कि जीना है तो साक्षी भाव से। ये पर्यावरण, ये प्रकृति सभी के लिए है। जीव जंतु जितने भी तत्व हैं इसी के साए तले जीते हैं। जितना भी कोशिश हो, पहाड़ों को बचाना है, नदियों को बचाना है, प्लास्टिक से उचित दूरी बनानी है ताकि प्रकृति का संतुलन हमेशा बना रहे और हमारी ये खूबसूरत प्रकृति हमेशा और भी खूबसूरत बनी रहे। यही संदेश था आज की कहानी का। और हाँ, एक संदेश और भी था, हम सब से ऊपर भी एक ऐसी शक्ति है, प्रकृति की शक्ति, जो कि हमें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। मनुष्य तो इसका एक अंग मात्र है। बस इसी को अंगीकार करते हुए ये कहानी थी। इसी संदेश के साथ हम समेटते हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ

0: के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से संघर्ष विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग से जुड़े क्षेत्रीय समझौते की शर्तों को खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने गुरुवार को कहा था कि ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए 7 दिन की योजना पेश की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की च्यू पिनचियान को 21-19, 21-14 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program, Mann Ki Baat on Akashwani at 11.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम सुनते हैं ऐसे सदाबहार गीत जो हमारी स्मृतियों में, हमारे यादों में अब भी जिंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ के साथ।

इस मधुर चांदनी में और इस सदाबहार मौसम में मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ ही, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अगर गाने की हम बात करें तो अभी जो गीत आप सुन रहे थे वो था फिल्म चोरी चोरी से, आवाज़ थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1956 में और ये एक लव स्टोरी थी जिसका निर्देशन किया था अनंत ठाकुर ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर और नरगिस ने। चरित्र अभिनेता का अभिनय किया था भगवान दादा, प्राण, डेविड और जॉनी वॉकर ने। ऐसा कहा जाता है कि 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं इसी फिल्म की कहानी पर आधारित थी। और अब हम सुनवाते हैं आपको अगला गीत रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जब मधुर चांदनी हो तो सितारों का जमीन पर मिलन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गीत आप सुन रहे थे, ये सदाबहार गीत आपने सुना फिल्म कोहिनूर से, और आवाजें थी लता मंगेशकर और रफी साहब की, संगीत नौशाद का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म आई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वीएन सिन्हा ने और निर्देशन किया था एसयू सनी ने। फिल्म में दिलीप कुमार, मीना कुमारी, लीला चिटनिस और कुमकुम ने अभिनय किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और 1960 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। गीत अगला आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

जब मोहब्बत का ऐलान सरेआम हो ही चुका है तो फिर डर कैसा, पर्दा कैसा। अब बारी है मोहब्बत को इस महफिल में अंजाम देने की, आजमाने की। गीत की अगर बात करें तो आप सुन रहे थे ये गीत दिल तेरा दीवाना फिल्म से, और आवाजें थी लता मंगेशकर और रफी साहब की, संगीत शंकर जयकिशन का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शम्मी कपूर, माला सिन्हा, महमूद, प्राण और ओम प्रकाश ने। गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म मुगले आजम से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता

0: अमृतानंद मई के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में मदद की है और आपदा तथा संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता भी पहुंचाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल शेयर हिज थॉट्स विद द पीपल ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड इन हिज मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। इट विल बी द 138th एपिसोड। The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, TD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that India would exercise its right to defend itself against terrorism, accusing an unnamed country of misrepresenting facts at the UN General Assembly a day earlier. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jayashankar called state-sponsored terrorism with a cross-border purpose a direct challenge to the global order. He said governments engaged in such practices must be held accountable and the financing of terrorism must be exposed and countered.
2: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
1: The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on 24th of June last year for all the states and UTs starting with Bihar was issued with the unanimous approval of the commission. The Election Commission has said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECINET platform. The commission clarified that such persons will not be called for hearing by electoral

तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम, तुम्हारे सिवा कौन कर सकेगा मुझे तुम सा प्रेम। आता भी किसको है ऐसा जादू वादू करना, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है मेरा तन, सिर्फ तुम्हारे आने से खिलता है मेरा तन और महक उठती है मेरे मन की मौलश्री। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंचू। वक्त हुआ है 2:12:03। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और आशा जी की आवाज़ के साथ।

प्यार की गलियों में अकेले अच्छा नहीं लगता है ना, क्या फायदा मैं निकलूं और आप ना हो। जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, फिर चलेंगे साथ साथ प्यार की गलियों में, रात के परों पर बैठकर, और मिलेंगे चांद से।

मुझे तो इन भीगी भीगी रातों में ऐसा लगता है कि हम सभी बातों की लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं, जहां पर हमारे साथ चांद हो, तारे हो, रात हो और हो बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। पर फिर याद आता है कि मैं तो स्टूडियो में हूँ और समय से और गानों से और चीज़ों से बंधी हुई हूँ, तो क्यों ना आपको बातों की लॉन्ग ड्राइव पर यहाँ स्टूडियो से सीधे एक लंबी यात्रा करवाई जाए। अगला गीत आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने कहा है ना कि वादा जब हम करते हैं तो उसे निभाते ज़रूर है। अगला गीत आप ही के लिए।

देखिए, ये दुनिया वाले तो ज़रूर कहते हैं कि वादे तो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन हम यानी आपके जो रेडियो साथी हैं, ये कोई वादा नहीं तोड़ते, बल्कि हर पल आपका साथ निभाते हैं। वादा हर रोज़ आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का, वादा आपको खूबसूरत गीत सुनवाने का। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भी किसी ख़ास इंसान से कोई ना कोई वादा ज़रूर किया होगा, या किसी ने आपसे किया होगा। जो भी हो, आज का मौसम ये गवाही ज़रूर दे रहा है कि दिल के रिश्तों में वादों की मिठास रहनी चाहिए, चाहे रिश्ता रहे या ना रहे। अगला गीत अभी के लिए।

फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, फना होने के और भी सबब मौजूद थे बहुत, हमने फिर भी उनसे एक मुलाकात जरूरी समझी।

0: 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 23 सेकेंड। आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: मेरी, ओ मेरी शर्मिली

वैसे प्यार का ये वाला रंग कितना खूबसूरत होता है ना, जहाँ लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, निगाह उठती है, आंखें शर्माती हैं और प्यार का इजहार हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये इजहार ज़्यादा जबान से ज़्यादा दिल तक सफ़र तय करता है, ये दिल पर ज़्यादा असर करता है। और अगर इस वक्त आपका दिल भी किसी के लिए तेज़ी से धड़क रहा है और आंखों के सामने कोई हसीन चेहरा घूम रहा है, तो फिर ये अगला गीत आप ही के लिए।

ये सच बात है कि वक्त बीत जाता है, जमाने बदल जाते हैं, लेकिन साहिर साहब के लिखे हुए ये लफ्ज़ आज भी दिल और दिमाग पर उतना ही असर डालते हैं जितना जब डालते थे जब ये लिखे गए थे। इसलिए ही कहीं ना कहीं कहा जाता है कि शायर जो है वो समय को लांघ जाता है, शायर शब्दों को लांघ जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

राज सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब से 3 बजे होंगे समाचार और 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर

0: सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्रीमार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी में AI को भी शामिल करेगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:11 और 21 सेकंड। ये समय और इस वक्त आपके साथ हूं मैं, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आपका पसंदीदा हमराही। हमराही में आज हम सुनेंगे कुछ ऐसे युगल गीतों को जो हमें फिर से उस मोहब्बत की दुनिया में ले जाएंगे, जहां हम और आप एक बार फिर से खो जाने को तैयार हैं। दिल और सांसों पर अधिकार जब तुम्हारा हो गया, दिल और सांसों पर अधिकार जब तुम्हारा हो गया, सोना पड़ा ये जीवन फिर से हमारा हो गया। तुम मिले तो थम गई धड़कन की सारी उलझने, बेफिक्र बहती कश्ती को किनारा हो गया।

जब हमारे दिल पर किसी का अधिकार हो जाता है तो हम अपने दिल को चाहे जितनी मर्जी जोर लगा दें, हम अपने आप को उनकी यादों से कभी भी दूर नहीं जा सकते।

वैसे दोस्तों, दिल और मोहब्बत, सच्चे प्रेम का समर्पण, गहरा विश्वास और सुरक्षा का एहसास है। जब जीवन में सही जीवन साथी का साथ मिलता है तो इंसान की भावनाएं बिल्कुल बदल जाती हैं। जीने का नजरिया बेहद ही

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां आप है हमराही में मेरे साथ यानी अपनी दोस्त रूपा के साथ। और वक्त बता दें आपको, जी हाँ, हमारे स्टूडियो की घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि वक्त हो चला है 3:34 और 47 सेकेंड। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं दिल और मोहब्बत की। मोहब्बत को अलग अलग रंगों से देखा जा सकता है। जी हाँ, प्यार में मीठी नोक झोंक, तड़प की चुलबुलाहट तो होती ही है, और वहीं से प्यार की शुरुआत का बेहद खूबसूरत दौर शुरू होता है।

मुलाकात के वक्त जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब नजरें और खामोशी बातें करती हैं। दिल की दास्तान का सबसे हसीन पल वही होता है जब बिना कहे सब समझ में आ जाता है। ना जाने कौन सी अनकही दास्तान छुपाए बैठा है हर दिल, ना जाने कौन सी अनकही दास्तान छुपाए बैठा है हर दिल। बाहर से खामोश सही, अंदर एक पूरा शहर बसाए बैठा है।

मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे बयां करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं। ये महज दो लोगों का जुड़ाव नहीं बल्कि रूह का रूह से रिश्ता है। वैसे मोहब्बत को अलग अलग रंगों में देखा जा सकता है, पर हम अभी फिलहाल इसके इस रूप में देखते हैं।

जीवन मिलता है, कितना मिलता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन दिल में जो बातें हैं उन्हें बिना किसी देरी के इसी वक्त कह देना चाहिए जब आपके साथ मुलाकात होती है आपके अपनों की। जी हाँ, ये गीत जो अभी आप सुनेंगे ये प्यार में आगे बढ़ने का ही ऐसा एक संदेश दे

दोस्तों, मोहब्बत के दौरान जब एक दूसरे को चाहने वाले दिल लगी करने लगते हैं तो ऐसा तब होता है जब प्यार को महज खेल या मजाक समझा जाता है, जबकि सच्ची मोहब्बत एक गंभीर एहसास है। किसी के लिए इश्क बंदगी है तो किसी के लिए जिंदगी।

फिलहाल रूपा विदा लेती है हमराही कार्यक्रम से। आप जुड़े रहिए इसी तरह, आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री

0: शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, ओडिशा और तेलंगाना में आज बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की आशंका है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News On Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that India would exercise its right to defend itself against terrorism, accusing an unnamed country of misrepresenting facts at the UN General Assembly a day earlier. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jayashankar called state-sponsored terrorism with a cross-border purpose a direct challenge to the global order. He said, governments engaged in such practices must be held accountable and the financing of terrorism must be exposed and countered.
2: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
1: Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said, the ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities. On West Asia, he reiterated India's support for a two-state solution with Israel and Palestine living side by side in peace as sovereign states. The Election Commission has

थोड़ी सी देर की जुदाई भी बहुत लंबी लगने लगती है ना, जब अपनों का साथ थोड़ी देर के लिए भी छूट जाता है। तो ठीक इसी तरह हमारा भी हाल ऐसा ही है। उम्मीद है आप भी हमारे बिना उदास तो महसूस कर ही रहे होंगे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। समय हुआ है 4:11:34। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। रूपा धवन आपके लिए लेकर आई है कार्यक्रम अरुणिमा। रुख बदल देती है हवाएं भी अक्सर अपना, रुख बदल देती हैं हवाएं भी अक्सर अपना, जब किसी के दिल में वफा का चिराग जलता है।

अभी आपने सुना पॉकेट मार फिल्म का ये गीत स्वर साम्राज्ञी लता जी की आवाज में। और दोस्तों अरुणिमा में हम बातें कर रहे हैं आपसे कुछ ऐसी जो हमें दिल में प्रेरणा दे आगे बढ़ने की। जी हाँ अरुणिमा, अंधकार दुख भरा और उसको पार करने के लिए जो जिंदगी के पड़ावों को चीरती हुई जिंदगी को जीने की एक नई आस जगाने की रोशनी जो पहल करती है, उस अरुणिमा को हम अपना अभिवादन करते हैं। तेज हवाओं में भी जो मुस्कुराते हैं वही अपनी मंजिल को खूबसूरत बनाते हैं। ऐसा ही स्वभाव पतंग का होता है, वो कभी भी हवा के साथ बहकर ऊंचाई पर नहीं जाती बल्कि वो हवा के विपरीत टकराकर ऊपर उठती है। हवा का झोंका जितना तेज होता है पतंग उतनी ही मजबूती से आसमान छूती है। कितनी गहराई सिखाती है हमें एक छोटी सी कागज की बनी हुई पतंग जिसे हम पल भर में नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये पतंग जिंदगी का जीने का एक अलग ही नजरिया, एक अलग ही संदेश हमें देती है।

जीवन की मुश्किलें हमें काटने या गिराने की कोशिश करती हैं, पर जो इंसान अपने सिद्धांतों और साहस की डोर को मजबूत रखता है और विपरीत समय में भी सकारात्मक रहता है, मुस्कुराता रहता है, वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। क्योंकि देखिए ना, सुख और दुख हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इनसे हम चाहकर भी नहीं बच सकते। आज अगर सुख है तो दुख किसी ना किसी रूप में हमारे सामने जरूर आएगा, और अगर आज दुख है तो सुख भी जल्दी ही आएगा। इसीलिए जब भी कोई ऐसा हालात आए या कोई ऐसी मुश्किलात आए तो हंसना कभी मत छोड़िए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 4:32 और 16 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। दोस्तों, जिस तरह से पतंग का अस्तित्व और खूबसूरती तभी दिखती है जब वो हवा से जूझती है,

ठीक इसी तरह हमें भी अपनी मंजिल पर पहुंचने की खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक रास्ते में चुनौतियों का सामना ना हो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन की उड़ान को एक नई गति और खूबसूरती देता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत किशोर साहब की आवाज में और आशा जी की आवाज में, झुमरू फिल्म से।

वास्तव में ये गीत सिर्फ गीत नहीं अनुभव हैं, जो उस सुनहरे दौर में हमें वापस ले जाते हैं। साथियों कहते हैं कि सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, चुनौतियों से हारना ये नहीं हमारी पहचान। जी हाँ, माना कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अक्सर चुनौतियों का सामना करके ही हम आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।

जी दोस्तों, जिंदगी को परिभाषित करना बेहद कठिन है, बेहद मुश्किल है, जिसे हम किताबी बातों से नहीं बल्कि जब हम वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ बेहतर समझ सकते हैं। जिंदगी के हर पहलू, सुख दुख, संघर्ष और आनंद को खुद जीकर अनुभव करना ही जिंदगी को समझना है। और इस जिंदगी के सफर में जब हमारे दुख सुख को बांटने वाला कोई अपना हो, कोई साझा करने वाला कोई अपना दोस्त हो, तो ये दुख बहुत ही कम लगने लगते हैं और इन समय के पड़ाव को हम आसानी से पार कह जाते हैं। खैर, निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है इस समय। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, अपनी दोस्त रूपा के साथ हैं और रूपा आपके साथ है अरुणिमा कार्यक्रम में।

जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि जीवन के जब मोड़ होते हैं ना, उस पर हमें किसी ना किसी ऐसे अपने की तलाश होती है जो हमारा दूर तक साथ दे। तो आपका साथ तो हम बनाए हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जो हमेशा जुड़ा हुआ है आपके साथ और आपका साथ हमेशा देता रहेगा आपके हर पल में हर क्षण में। समय बहुत अमूल्य है, कभी कभी हम आने वाले कल की चिंता में आज के समय को भी खो देते हैं। तो भाई इसे बेकार ही अपने हाथों से क्यों जाने दे भला, हर क्षण हर पल को भरपूर उत्साह और खुशी से जिए। किसी ने सच ही कहा है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, और पैरों तले रौंदी गई मिट्टी एक ना एक दिन मीनार बनती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इसी के साथ अरुणिमा से विदा लेती है रूपा। 5:10 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी कार्यक्रम में। तब तक के लिए विदा दीजिए। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर बल दिया। एआई के क्षेत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। युद्ध और संघर्ष पर वैश्विक समुदाय से संयम, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूरदराज के देशों को भी इसका नुकसान होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

0: जेंस। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए कल तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा भी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि अनुकूल मौसम होने पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, उड़ीसा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच शुरू होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी। एक दिवसीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। वहीं T20 श्रृंखला में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News On Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held yesterday where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on 24th of June last year for all the states and UTs starting with Bihar was issued with unanimous approval of the commission. The Election Commission has said that booth level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECINET platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India would exercise its right to defend itself against terrorism, accusing an unnamed country of misrepresenting facts at the UN General Assembly a day earlier. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jaishankar called state-sponsored terrorism with a cross-border purpose a direct challenge to the global order. He said, governments engaged in such practices must be held accountable and the financing of terrorism must be exposed and countered.
2: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
1: The finance ministry has announced that all public sector banks and regional rural banks will remain open today for the convenience of customers.

अंधियारे का आंचल छूटा, अंधियारे का आंचल छूटा, आसमान में सूरज रूठा। पूरब से एक लाली आई, नव पर स्वर्णिम किरण सुहाई। पंछी गाए मीठे तराने, उड़ने को पंखों को ताने। आलस छोड़ा सब जग जाग, उठ बैठा सोया अनुराग। भोर सिखाती एक ही बात, फिर बीतेगी हर काली रात। नया उजाला नई उमंग, भर लो जीवन में नए रंग। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये समय है भोर सुहानी का। समय हुआ है 5:11 और लीजिए हो गए 12 सेकंड, 12 मिनट और 3 सेकंड। आप हैं अपनी ही दोस्त रूपा धवन के साथ भोर सुहानी में। आइए स्वागत करें इस भोर सुहानी का और नमन करें, आराधना करें उस ईश्वर की जिसके नाम जपने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जिसके कई नाम हैं। पुकारा तो कई नामों से जाता है उसे, लेकिन वो सुनता सबकी है।

विवेक का प्रतीक है, ज्ञान और अच्छाई का प्रतीक है ज्योति। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने का अर्थ है अपने अंदर के ज्ञान और अच्छाई को दूसरों तक पहुंचाना, जिससे पूरे समाज में अज्ञानता और बुराई का अंधकार मिट सके। आइए एक ऐसी ज्योत ईश्वर के आशीर्वाद से संसार को प्रकाशित करें, उस ज्योत से, ताकि सभी का ज्ञान अंधकार को मिटाकर, अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की एक अलग सी ज्योति प्रज्वलित हो जाए।

दोस्तों, जिस तरह से गंगा नदी जिस प्रकार बिना किसी भेदभाव के सभी को तृप्त करती है और अविरल बहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मन में बिना किसी पक्षपात के सभी के लिए प्रेम और करुणा का प्रवाह बनाए रखना चाहिए। ऊंच नीच, जात पात और अहंकार को त्याग कर सभी जीवों में एक ही ईश्वर के रूप को देखना चाहिए। किसी के बहते आंसुओं को पोंछना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दिल्ली वक्त का इशारा है, हमारी स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है 5:23। तो जनाब उठ जाओ, लेकिन दिल कह रहा है कि 5 मिनट और सो लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप अभी अभी आंखें मलते हुए उठे हैं, तो सीधे मोबाइल की नीली स्क्रीन की नीली लाइट देखने की बजाय अपनी खिड़की का पर्दा हटाइए। बाहर आसमान का रंग बदल रहा है और हवा में एक अलग और नई ताजगी बह रही है। जी हाँ, महसूस कीजिए इस ताजगी को और तरोताजा हो जाइए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। भोर सुहानी लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

मिट्टी का पुतला है फिर भी आसमान छूने का ख्वाब रखता है। इंसान भी अजीब है, खुद में ही एक पूरी किताब रखता है। जी हाँ, भले ही हम इंसानों का अस्तित्व कुछ समय को है, लेकिन उसकी सोच, सपने और अनुभव विशाल हैं। वो अपने विचारों और कर्मों से अनंत ऊंचाइयों को छूने का हुनर रखता है। मुश्किल है पर मुमकिन है। इन शब्दों को अपने

दोस्तों, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम इंसान हैं और हमसे भूल हो सकती है, तो हम दूसरों की गलतियों को भी आसानी से क्षमा कर देते हैं। ये भाव समाज में एक दूसरे के प्रति दया और समझ को बढ़ाता है। वैसे वास्तव में हम सबको ही अहंकार छोड़कर अपनी सीमाओं और वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक सच्चा और सहज इंसान बनकर इस समाज को एक नया रूप देना चाहिए। तो जनाब, अगर आज की बात करें तो आज की सबसे अच्छी खबर तो ये है कि आप सभी के लिए कि आपको इस पूरे हफ्ते का सबसे बेहतरीन आप आज खुद बनाने वाले हैं। आपका आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो जनाब ये तय करना तो आपके हाथ में है। तो आज सुबह की पहली चाय हमारे साथ आप पी रहे हैं, भोर सुहा।